सुप्रभात। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई ईस्वी सन 2026। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। आज का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुबह के 6 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनिएगा हिंदी में

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। आइए सुनते हैं खेती की बातें कार्यक्रम में प्रतिमा वर्मा की पूर्व प्रसारित आलेख। विषय है जैव उर्वरक के प्रकार और उनके फायदे।
3: किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें जैव उर्वरक की। जी हाँ किसान भाइयों, मिट्टी में लगातार रसायनों के छिड़काव और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती मांग ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी घटाया है। इन रसायनों के प्रभाव से मिट्टी को उर्वरता प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी हो गई है। जी हाँ किसान भाइयों, इस कमी की पूर्ति के लिए जैव उर्वरक का फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। जैव उर्वरक हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन में स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, इसलिए मिट्टी में इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए इनके कल्चर का उपयोग जैविक खादों के साथ मिलाकर किया जाता है, जिसे जैव उर्वरक भी कहते हैं। जैव उर्वरक मुख्यतः राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरम, फास्फेट और पोटाश, घुलनशील जीवाणु वगैरह होते हैं। ग्रामीण भाइयों, जैव उर्वरक अनेक प्रकार की मिट्टी यानी रोगों के नियंत्रण में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरकों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है और इसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता है, ना ही इसका प्रयोग करने वालों पर इनका कोई दुष्प्रभाव देखा गया है। जैव उर्वरकों के उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी आती है। जीवाणु कल्चर को बीज या जैविक खादों के साथ मिलाकर मिट्टी में मिलाने पर खेत में इन जीवाणुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन के लिए राइजोबियम, एजोबैक्टर, एसिटोबैक्टर और फास्फोरस के लिए फास्फेट, घुलनशील जीवाणु कल्चर का प्रयोग करते हैं। सभी प्रकार के पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मुख्यतः 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अति आवश्यक तत्व है। यह पौधों को 3 प्रकार से उपलब्ध होती है, रासायनिक खाद द्वारा, गोबर की खाद द्वारा और नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फास्फोरस घुलनशील जीवाणुओं द्वारा। ग्रामीण भाइयों, प्राकृतिक रूप से मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में और स्थिर फास्फोरस को उपलब्ध अवस्था में बदल देते हैं। जीवाणु खाद ऐसे ही जीवाणुओं का उत्पाद है जो पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस आदि की उपलब्धता बढ़ाता है। जैव उर्वरकों में अगर हम राइजोबियम कल्चर की बात करें तो यह एक नमी धारक पदार्थ और जीवाणु का मिश्रण है। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग दलहनी फसलों में करते हैं। राइजोबियम एक गतिशील जीवाणु होता है। किसान भाइयों, राइजोबियम कल्चर का उपयोग दलहनी फसलों में 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से किया जाता है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग मिट्टी और बीज के उपचार के लिए भी करते हैं। राइजोबियम कल्चर से चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ढैंचा, सनई, सेम और अन्य सभी दलहनी फसलों को लाभ होता है। राइजोबियम जीवाणु के प्रयोग से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। इसके प्रयोग से फसल की उपज 15-20% की वृद्धि होती है। राइजोबियम के प्रयोग से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। इन फसलों के बाद बोई जाने वाली फसलों में भी भूमि की उर्वरा शक्ति अधिक होने से पैदावार अधिक मिलती है। किसान भाइयों, अब बातें एजिटोबैक्टर की। एजिटोबैक्टर मृदा में पाया जाने वाला एक मृत जीवी जीवाणु है जो कि अदलनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। इसका उपयोग मुख्यतः धान एवं गेहूं की फसलों में करते हैं। इसके प्रयोग से मिट्टी में 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर हो जाती है। एजिटोबैक्टर का प्रयोग मिट्टी के उपचार, रोपाई और बीजों के उपचार के लिए भी किया जाता है। किसान भाइयों, अब बातें एसिटोबैक्टर की। एसिटोबैक्टर यह जीवाणु गन्ने की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। एसिटोबैक्टर फसलों और पौधों की जड़ों के आसपास विखंडित होकर भूमि की नाइट्रोजन को नाइट्रेट बदलकर पौधों तक पहुंचाते हैं। एसिटोबैक्टर का प्रयोग मिट्टी एवं बीज उपचार के लिए किया जाता है। यह गन्ने और चुकंदर की फसल में उत्पादन वृद्धि के साथ साथ उसमें शर्करा की मात्रा को भी बढ़ाता है। जी हाँ किसान भाइयों, जैव उर्वरकों का भंडारण हमेशा ठंडे स्थान पर करें और इसे सूर्य की रोशनी से बचाकर रखें। इसे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से अलग रखें। इसका प्रयोग पैकेट पर अंकित तिथि से पहले करें। जैव उर्वरकों का प्रयोग विशिष्ट फसल के लिए होता है, इसलिए फसल के हिसाब से ही जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, कार्यक्रम में ये हुई बातें जैव उर्वरक की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रतिमा वर्मा की आलेख, विषय था जैव उर्वरक के फायदे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, सुनते हैं श्री राम चरित मानस गान।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए भरत जी के साथ गुरुजन तथा पुरवासियों का एक बड़ा समूह चित्रकूट पहुंचा था। पिता के स्वर्गारोहण का समाचार सुन श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण शोक सागर में डूब जाते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम एक बार फिर पिता की क्रिया आदि करके अयोध्या वासियों से वापस नगर लौट जाने का अनुरोध करते हैं। पुरवासियों का दुख गुरु वशिष्ठ भली भांति समझते हैं और श्री राम के निकट वहां दो दिन रहकर शांति प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। वन के निवासी कोल, भील, किरात आदि यथा सामर्थ्य अयोध्या वासियों का आदर सत्कार करते हैं। उनसे अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, कंदमूल और फल प्राप्त करके नगर निवासी उन वस्तुओं का मोल चुकाना चाहते हैं, किंतु वनवासी राम की दुहाई देते हुए दाम वापस कर देते हैं। प्रेम सनी वाणी में कहते हैं, साधुजन प्रेम पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप साधुजन हैं, अतः हमारे प्रेम का मूल्य चुकाकर उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान FM 103 MHz पर, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं हमारा आज का चिंतन, शीर्षक है काल करे सो आज कर। आलेख और वाचन स्वर है निर्मला तिवारी का।

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। संत कबीर ने इस दोहे के माध्यम से समय के महत्व पर प्रकाश डाला है। वो कहते हैं, भविष्य का क्या भरोसा, ये कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, इसलिए कल के लिए किसी काम को छोड़ना उचित नहीं है। जो करना है अभी कर लो, क्योंकि पल भर में यदि प्रलय आ गया तो फिर क्या करोगे। इसका सार यही है कि समय के हर एक पल का सदुपयोग कर लेना चाहिए। जो कल करना है

में काफी भाग दौड़ होती है, कई काम होते हैं और यदि समय अनुसार काम ना किया जाए तो जीवन दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है और इंसान परेशान रहता है। जो लोग व्यवस्थित समय अनुसार हर काम को समय रहते पूरा कर लेते हैं, उन्हें दिक्कतें कम आती हैं और ऐसे लोग हर कार्य समय रहते पूरा कर पाते हैं। यदि हम विद्यार्थियों की बातें करें तो जो बच्चे समय का सही प्रबंधन करके पढ़ाई करते हैं, वो शांतिपूर्वक अपना इम्तिहान दे पाते हैं और परेशान नहीं होते हैं। इसके विपरीत कई बच्चे समय का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और जब समय बीत जाता है तब अफरा तफरी में पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण मानसिक शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं और फिर वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितनी उनकी क्षमता होती है। इसी संदर्भ में संत कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो लोग वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की वो चिंता नहीं करते, उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करते, ऐसे लोग तनाव रहित रहकर अपना काम करते जाते हैं। कुछ लोग जो बीत गया उसके बारे में सोच सोच कर अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं, पछताते रहते हैं। ऐसे लोग भी तनाव से भरे रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कुछ मनुष्य त्वरित काम करने के लिए बहुत सारे काम एक साथ ले लेते हैं, तो यह भी सही नहीं है। अपनी क्षमता अनुसार, समय अनुसार सभी कार्य किए जाने चाहिए और ऐसा करने से परेशानी नहीं होती है। कछुआ और खरगोश की कहानी तो जग जाहिर है। कछुआ धीरे धीरे गति से चलता रहा और गंतव्य तक पहले पहुंच गया। खरगोश, जो तेज दौड़ने वाला है, तेज दौड़ा लेकिन आराम के चक्कर में वह पिछड़ गया और कछुआ से हार गया। इसी तरह तेज भागना भी सही नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहने से सफलता भी मिलेगी और तन मन में किसी पर प्रकार का बोझ भी नहीं होगा। संत कबीर के दोहे के गूढ़ रहस्य को समझते हुए जीवन में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना ही समझदारी है और यही जीवन सार भी।

आप सुन रहे थे हमारा आज का चिंतन एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, और इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना।

0: श्री हरि में विश्वास ना करें, श्री हरि से प्रेम ना करें, ये जीव का दुर्भाग्य ही है। भगवान तभी बसते हैं जब हृदय निर्मल होता है। हृदय हरि के भजन कीर्तन से निर्मल होता है।
1: हम हरि भजन

0: आराधना कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर, हरिहरन, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में भक्ति गीत। तो इसी के साथ ही हमारा आज का आराधना कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है। सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर पी के राव से ली गई पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता। विषय है सड़क दुर्घटना।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज बात करेंगे रोड दुर्घटना पे। सड़क दुर्घटना में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है, शायद आपको भी इस बात का एहसास है। आप अखबार पढ़ें या टीवी देखें या रेडियो का न्यूज़ सुने, आपको प्रतिदिन कहीं ना कहीं आपको सुनने में आता है कि फला जगह रोड एक्सीडेंट में और इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये खबर कितनी बड़ी खबर है, खासकर उसके लिए जिनके घर परिवार के लोगों के साथ ऐसी घटना होती है। लेकिन हमारे विशेषज्ञ कहते हैं थोड़ी सी सावधानी, थोड़े से एहतियात बरत के इस बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता है। इस पर आज ढेर सारी बातें करेंगे, इसके चिकित्सा की बात करेंगे, फर्स्ट एड की बात करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा जिसे कहते हैं आप, और कैसे इस घटना को, दुर्घटना को टालें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं गढ़वा जिला अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर पी के राव। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्ते मिश्रा जी और हमारे श्रोताओं को।
1: डॉक्टर साहब, आजकल आए दिन सड़कें भी बड़ी अच्छी बन रही हैं, हमारे यहाँ गाड़ियाँ एक से एक आ गई हैं, तो सड़क दुर्घटना में अचानक बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है, तो इस सड़क दुर्घटना की वजह क्या मानते हैं आप, क्यों इतनी सड़क दुर्घटना हो रही है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप।
2: जी, आए दिन तो बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं बढ़ते जा रही हैं दिन पे दिन, और दुर्घटना को हम लोग अपने इसमें देखा जाए और हमारे घर जो गार्जियन है उन्हें भी थोड़ा सा इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे लोग, हमारे गार्जियन लोग कैसे कर रहे हैं, और हमारे माता पिता जो भी हैं गार्जियन, उनके बच्चों को प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि आजकल के आए दिन बच्चे कुछ ना कुछ इस हाई स्पीड हो गया या कुछ और, कुछ नशा हो गया, कुछ करते आ रहे हैं, ताकि सड़क दुर्घटना के कारण उन्होंने वियर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कोई चीज़ सेफ्टी गियर नहीं ले पा रहे हैं अपने में। सेफ्टी गियर का मतलब है जैसे कि हाथ हेलमेट हो गए और ये हो गया, बहुत सारे चीज़ हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि हेलमेट का नहीं पहनना भी एक दुर्घटना का शिकार होने के बाद का जो परिणाम होता है बहुत बुरा होता है, तो डॉक्टर साहब क्या अगर सिर्फ हेलमेट पहनना ज़रूरी है, या हेलमेट पहनने के साथ साथ और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, हाई स्पीड हो गया, नशे की लत हो गई, उनकी आदत हो गई, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, उसके बाद भी बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं। तो आप अब हम मुख्य बात पर, मुख्य मुद्दे पर आएँ कि सड़क दुर्घटना के बाद जो स्थिति बनती है, जैसे चोट लगने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है अस्पताल में, आप देखते हैं आए दिन आप इलाज करते हैं इमरजेंसी में इस तरह के लोगों का, तो क्या क्या देखने को मिलती है, कितनी बड़ी घटना के बाद कितना बुरा परिणाम आपने देखा अभी?
2: बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जो कि छोटे से चीज़ों के चलते, जैसे हेलमेट नहीं पहने और ज़्यादा स्पीड के चलते, बहुत सारे छोटे छोटे गलतियों के चलते बहुत बड़ी गंभीर रूप से बीमारियां का कारण बन रहे हैं बच्चे लोग, छोटे वो भी कम उम्र के किशोर, 18 से नीचे, जिनकी लाइसेंस भी नहीं है हमारे, और बहुत सारे हॉस्पिटल में भी आके बेचारे बच्चे छोटे, बड़ा तकलीफ़ होता है हमें भी। और हाँ, हमने हेड इंजरी बहुत कॉमन माना है, हर एक एक्सीडेंट में हेड इंजरी का बहुत कॉमन आ गया है, जिसमें कि इंटरनल ब्लीडिंग के साथ साथ एक्सटर्नल ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होने का चांसेस बहुत पाया गया है, और बहुत से एक्सीडेंट ऐसे हैं कि इंटरनल एब्डोमिन में भी चोट लगती है, जिसमें कि फेफड़े भी डैमेज हो जाते हैं, पेट में एब्डोमिन भी डैमेज हो जाती है, और ये चीज़ बहुत प्ररूप रूप ले लेती है, जिसमें कारण कि कभी कभी बच्चे लोग रात में भी आते हैं एक्सीडेंट होकर, जो कि उस टाइम पे हम लोग को वहाँ पे सीटी स्कैन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है रात के दौरान, तो हमें हीमाटोमा अगर कुछ जम गया है कुछ इसमें तो पता नहीं चलती है, तो उसके कारण हम लोगों ने बहुत सारे कम किशोरा बच्चों को भी हमने खोया है। और ये है कि
1: तो डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि हेड इंजरी एक बड़ी माने बात होती है कि हेड इंजरी होने के बाद थोड़ा मुश्किल होता है आपको इलाज कर पाना भी, और शायद मरीज का ठीक होना भी थोड़ा लंबा समय भी लगता है और ठीक होने में परेशानी भी आती है, कभी कभी तो ठीक नहीं भी होता हो पाता है लंबे इलाज के बाद भी। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने सही कहा कि अगर हाथ पैर टूट जाएँ तो शायद उनका इलाज हो जाए, जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन हेड इंजरी क्या मौत का कारण भी बन सकती है कभी कभी?
2: ज़रूर बन सकती है, समय पे अगर इसे इलाज नहीं कर पाए तो हेड इंजरी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं मौत की। और सबसे पहली कारण है कि खून का जाति बहना, अंदर थक्का जमना खून को, और इन्फ्लामेशन होना, सूजन होना, बहुत सारे कारण हैं। और सबसे बड़ी कारण है हीमोग्लोबिन का कमी होने, जो कि खून की हमेशा बेहतर रहना।
1: तो जैसे एक्सीडेंट के बाद अगर आप ये कहें कि प्राथमिक चिकित्सा अगर तुरंत अस्पताल मान लीजिए बहुत नज़दीक नहीं है, किसी चिकित्सक से मिल पाना संभव नहीं है, तो तुरंत क्या करना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें बताएं आप।
2: जी मिश्रा जी, इसमें एक हम ये कह सकते हैं अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाती किसी को भी, अगर कोई सामने वाले कहीं भी कोई भी हो, कोई मदद करने वाले हो, सहपाठी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, जितना जल्दी हो सके उनको हमेशा हॉस्पिटल जो भी नज़दीक रहे, जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुछ भी है, कोई भी हॉस्पिटल हो, उन्हें तुरंत अत्यंत शीघ्र उनको लेके आए। हाँ, अगर उन्हें ज़्यादा चोट है, कहीं ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उन्हें कुछ नहीं करना, आराम से खून को रोकते हुए, अब तो हर जगह कॉटन बैंडेज हर जगह, हर ग्रोसरी स्टोर में हर जगह मिलने उपलब्ध हो गई हैं। ब्लीडिंग रोकने से आधा जान तो एकदम वो बचा ही रहा है स्वयं, और ये जो बचाने वाले हैं वो कभी डरे नहीं, उन्होंने उनके लिए तो बहुत अच्छी उपलब्धि है कि उन्होंने एक अपना इंसानियत दिखाते हुए जान बचा लिया जो सामने वाले को, और डरे नहीं कि कोई केस होता है, कुछ हो, कुछ नहीं हो सकता, आप एकदम बहुत एक को आप जान बचा रहे हैं, और ये आपका फ़र्ज है कि बहुत अच्छी फ़र्ज आप निभाइएगा, और आप इस चीज़ का कोई टेंशन ना लें कि वो हमें हॉस्पिटल में लाया तो हम पे केस होगा या कुछ मुकदमे होंगे, ऐसा कुछ सोचे ना, और जितना जल्दी हो सके उनको नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र या कोई भी हॉस्पिटल में पहुँचा दें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रोड दुर्घटना होने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करता है, अस्पताल पहुंचाता है, उसकी मदद करता है, तो उसको पुलिस के से की परेशानी से बचने के लिए लोग चाहते हैं कि इसमें क्यों आगे आएं, तो ये चीज़ अब नहीं होगी। उस तरह के लोगों को जो मरीज़ को अस्पताल पहुंचाएंगे उनको इनाम दिया जाएगा, उनकी शाबाशी होगी और उनको उनकी तारीफ़ करेंगे सब लोग, पुलिस कभी परेशान नहीं करेगी, कोई सवाल जवाब नहीं करेगी, बिल्कुल उनको इत्मीनान से सिर्फ उठाकर मरीज को चिकित्सक के पास अस्पताल के नज़दीक पहुंचा करके उनको फ्री हो सकते हैं वो। तो डॉक्टर साहब जो आपने कहा कि अस्पताल पहुंचाने की जो जवाबदेही वो लें, अगर तुरंत अगर बैंडेज बांध दिया तो बैंडेज बांध करके, या फिर अगर कभी कभी हाथ पैर भी टूट जाते हैं, बुरी तरह टूट जाते हैं, तो खून का बहना रुकने के साथ साथ हाथ पैर टूटे वाली स्थिति में उनको कैसे संभाल के कैसे डॉक्टर पास पहुँचाया जाए?
2: जी, बहुत अच्छी सवाल आपने बोली है। हाँ, अगर कहीं ज़्यादा इंजुरी है, कहीं हाथ पैर टूट जाती है, तो उसे उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ बस जिस पोजीशन में है, सीधे हैं, अगर सीधा है तो सीधा एकदम स्ट्रेच करके उनको धीरे धीरे सपोर्ट दीजिए, बांस कोई लकड़ी देख लीजिए आसपास के, कोई बांस हो, कुछ भी, कोई भी छोटी मोटी लकड़ियाँ उसमें डाल के उस बैंडेज को बांधें, ताकि वो टेढ़ा ना रहे, सीधा रहे, और ब्लीडिंग भी कम होती है, और बहुत हमने गढ़वा में बहुत सारे देखे हैं ऐसे आदमी को बचाते हुए, और बहुत अच्छा लगा। हाथ हो, पैर हो, बस इसका सपोर्ट जरूरी है, छोटी छोटी लकड़ियाँ, लकड़ी का सपोर्ट रखते हुए उसे बांध के सीधा करके, और जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल आइए, हम लोग सब व्यवस्था यहाँ पे है ही।
1: डॉक्टर पी के राव, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी बहुत ढेर सारी धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गढ़वा के चिकित्सक पी के राव से ली गई पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता, विषय था सड़क दुर्घटना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसंग सेवा में, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनिएगा क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्ष नेतारं राहुल गांधिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अन्य दल सदस्या नीट विषयक चर्चा आधृत्य प्रदर्शनम अकुर्वन्। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह तथा केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ। तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्य एव जाते नीट परीक्षायाः प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान् विरुध्य दृढ निग्रहं कर्तुम् अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षणं च पुनः उद्घाटितवान्। असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति। प्रधानमंत्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नामना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्। वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमंत्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां संबंधित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकतां विशेषतया प्रतिपादितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा भारत उत्तर मेसिडोनिया देशयोः आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती। उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम् आग्रहम् अकरोत्। स्कोप्जे इत्यत्र भारत उत्तर मेसिडोनिया व्यापार मंचं संबोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मेसिडोनिया देशस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति या उभयदेशयोः संबंध सुदृढीकरणे भारतस्य दृढ प्रतिबद्धताम् द्योतयति। सा अवोचत् यत् वर्तमान व्यापारस्य परिमाणं तस्याः संभावनायाः अंशमात्रमेव प्रतिनिधित्वं करोति। अस्य दशकस्य अन्तपर्यन्तं द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणं भवितुं शक्यते इति विश्वासः अस्ति। भाजपेति दलं ह्यः लोकसभायाः विपक्षनेतुः राहुलगान्धिनः लोककल्याणमार्गे विरोधप्रदर्शनस्य निन्दामकरोत्। तेन प्रदर्शिताचरणं पूर्णतया अशोभनीयं निन्दनीयं चेति वर्णितवान्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् भाजपेति दलस्य अध्यक्षः नितिननवीनः उक्तवान् यत् एषा घटना दुर्भाग्यपूर्णा अस्ति, भारतस्य राजनैतिक इतिहासे कृष्ण दिवसेति वर्णितवान्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य द्विदिवसीय फिलीपींस देशस्य यात्रायै मनीला इत्यत्र गमिष्यति। तत्र असौ आसियान इत्येतस्य अन्तर्गतम् आयोजितेषु विदेशमंत्री स्तरीयोपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी

0: कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औषधि और स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अमरीका हर उस स्थल पर जोरदार हमले करता रहेगा जहां ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करने का प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ फाउन की उपस्थिति में श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान तनाव जारी रखने के बावजूद बातचीत की कोशिश में है। ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा होने पर अमरीका 10 गुना अधिक हमले करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रण किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं और 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यों वाली पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। श्रोताओं, अब डालते हैं एक नजर इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:15 पर हम आपको सुनाएंगे लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। कलाकार होंगे भर सिंह भारती और उनके साथी। गोलाम अली की गई हुई गजलें हम आपको सुनाएंगे स्वर सहिता कार्यक्रम में 7:45 से।

सुबह के 8 बजे हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। प्रादेशिक समाचार का समय रहता है 8:30, जिसे हम रिले करते हैं अपने आकाशवाणी के रांची।

लौटेंगे स्टूडियो 8:45 में पर और सुनाएंगे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन। खेल विज्ञान स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम आप सुनते हैं जोहार पलामू सुबह के 9 बजे। इस कार्यक्रम के संयोजनकर्ता होंगे प्रशांत गौरव और प्रस्तुति स्वर होगा संजय सिन्हा का। नौ बजकर 30 मिनट पर हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के ठीक 10 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 10:05 से 10:10 पर हम आपको शामिल करेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर में 1 बजे हिंदी में समाचार और 1:05 पर आप सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर हम आपको सुनाएंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। समाचारों के बाद पुनः हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। लौटेंगे स्टूडियो 5:30 पर कार्यक्रम विवरण के साथ।

5:35 पर हम आपको सुनवाएंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। प्रादेशिक मुख्य समाचार रिले किए जाते हैं शाम 6:00। 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी। 6:30 से शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से ठीक 7:00 आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल 7:10 से।

7:45 पर हम आपको सुनवाएंगे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम कल्याणी। इस कार्यक्रम में आप सुनिएगा डॉक्टर अब्दुल जफर से लेके बातचीत। विषय होगा दांतों की आम समस्या और उनका देखभाल। बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। रात्रि 8 बजे हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा संसद में हुई कार्रवाई की समीक्षा। चित्रपट से फिल्मी गीतों का यह प्रोग्राम हम पेश करेंगे रात्रि 8:15 पर। समाचार संध्या 8:45 पर, News@9 रात्रि 9 बजे और उर्दू में खबरें 9:15 से 9:30 पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में। रात्रि 10 बजे आप सुनिएगा संसद में हुई कार्रवाई की प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। हर रोज की तरह हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम विवरण। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुनते हैं लोक गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम पलाश। कलाकार हैं भरत सिंह भारती और उनके साथी।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं लोक गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम पलाश। कलाकार हैं भरत सिंह भारती और उनके साथी।

भरत सिंह भारती और साथियों से आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनिएगा हमारा अगला कार्यक्रम।

प्रस्तुत है सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुलाम अली की गाई हुई गजलें।

0: आप सुन रहे थे सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता। FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का सामना उन्नति हुटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
5: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
7: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
8: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीओ 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉरपेडोस की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहेक श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
9: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
10: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुंचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमरीका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमरीका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे

0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting

0: Lakshya Sen will get his men's singles campaign underway today. Ayush Shetty will take on Alvi Farhan in the singles opening round today. Men's doubles pair M.R. Arjun and Hariharan Amsa Karunam. Mixed doubles pair Rohan Kapoor, Rutvika Shivani Gadde and Tanisha Krasto Dhruv Kapila will also be in action today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Anuja. The dailies have covered the Prime Minister's call to the NDA MPs to reach out to youth and dispel their fears of any future occurrence of an exam paper leak. The Indian Express, quoting the Prime Minister, says, "Future of youth is beyond politics, calls for foolproof and timely exams." Quoting the Home Ministry, the Times of India states, 50% quota for ex-Agnivis in Central Armed Police Forces, Assam Rifles posts. India soon to get first dengue vaccine for people aged 4 to 60 years, informs the Statesman. An op-ed in the Tribune writes on how India's private sector has entered an exciting phase with Skyroots Aerospace launching Vikram 1 rocket. Condemning the attack on commercial vessel, Russian envoys summoned over killing of four Indians, writes the Economic Times. A headline in Hindustan Times writes, AI to drive planning, audits, fraud detection under Viksit Bharat Ji Ramji, humans to take final call. And finally, Financial Express mentions about a QS survey declaring Delhi the most affordable for students in the world, doing well on employer demand as well. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow watercraft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva. And PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
4: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
5: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
4: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। परीक्षाओं में कथित अनियमितता और प्रशासनिक दबाव के बीच जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते ने दिया इस्तीफा। सीआईटी ने कई महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड कब्जे में लिए। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 6 से 12 अगस्त तक। गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए कैबिनेट ने एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को भी दी स्वीकृति। वोटर लिस्ट को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आज राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर तीसरी और अंतिम चुनाव पाठशाला का आयोजन। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय तंत्र के असर से राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। अगले 5 दिनों तक लगातार होगी वर्षा। और सुब्रतो कप फुटबॉल के अंडर 17 बालक और बालिका दोनों वर्गों में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल बना चैंपियन। अंडर 15 बालक वर्ग में कोल्हान ने जमाया खिताब पर कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं के आरोपों के बीच आयोग के अध्यक्ष एल खियांगते ने कल रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य सरकार के कड़े रुख के बाद सीआईडी की टीम ने जेपीएससी कार्यालय और संबंधित परीक्षा एजेंसी पर छापेमारी की थी। सीआईडी ने जांच के सिलसिले में आयोग के कार्यालय से परीक्षाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण डिजिटल और कागजी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 6 से 12 अगस्त तक विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाने सहित 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षा के लिए 75% उपस्थिति से छूट दे देने का निर्णय लिया है। सुदूर क्षेत्र के मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने को भी हरी झंडी मिली है।
7: हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर भाड़े पे लिया जाएगा। इसका वार्षिक जो लागत आ रहा है 9,45,00,000 रुपये। इसमें जैसे बहुत दूरस्थ एरिया में जहां सड़क नहीं पहुंच सकता, जहां एम्बुलेंस नहीं जा सकता, तो वहां के पेशेंट को हॉस्पिटल लाने के लिए होगा, और दूसरा मान लीजिए एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना, उसके लिए भी यूज होगा।
6: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न छात्र संगठनों और अन्य समूहों द्वारा किए जा रहे सतत आंदोलन पर अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने वर्तमान देशव्यापी परिस्थिति को गंभीर और चिंताजनक बताते हुए कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों को हर घटनाक्रम पर संवेदनशील सोच के साथ ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम जनमानस से इस दौर में सूझबूझ और संवेदनशीलता बनाए रखने की अपील की है।
8: काफी गंभीर और चिंताजनक दौर से हम सब गुजर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई हैं, कुछ ताकत ऐसे मजबूत हो गई हैं, कुछ हो रहे हैं जिसके साथ चंद दिनों में, चंद घंटों में वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अलग अलग स्तरों पर अलग अलग संघर्ष आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के अलग अलग घटनाएं भी देखने को मिलेंगी।
6: राज्य में सिनेमाई कौशल को बढ़ावा देने के लिए आज झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में होने वाले इस समझौते से राज्य के पहले फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। एसआईआर अभियान के तहत आज राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के निर्देशानुसार आज बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट की यह तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण बैठक है। इसके माध्यम से मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाने का लक्ष्य है। रांची के अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने बहुचर्चित एक्सट्रीम बार के डीजे संदीप प्रमाणिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ विक्की सहित सभी 10 दोषियों को 9-9 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के साथ साथ सभी दोषियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने रांची में लोकभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि छात्रों, युवाओं और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।
9: पूरा एजुकेशन सिस्टम्स को बर्बाद किया और यूनिवर्सिटीज में आरएसएस लोगों को वाइस चांसलर लाया, इसीलिए राहुल गांधी जी एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए बहुत लड़ाई लड़ रहे। और आज राहुल गांधी जी ने हॉस्पिटल जाके छात्रों को लीडर्स को परामर्श किया, उसके बाद पार्लियामेंट में ये इशू रेज किया, प्राइम मिनिस्टर के पास जाके इशू पर वो प्रोटेस्ट कर रहे, मगर राहुल गांधी जी को और सही एमपीस और एक्स चीफ मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट किया।
6: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने लोकभवन के समक्ष कांग्रेस द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन

0: की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के नाम पर भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। उन्होंने कांग्रेस से मांग की कि वह राज्य में परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों पर प्रदेश के युवाओं के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करें।
1: जो सरकार ने बार बार जो जेपीएससी जेएससी सीजीएल और उत्पाद सिपाही बच्चों की युवाओं की जो बहाली इस सरकार द्वारा की जा रही थी जिसमें 19 बच्चों की मौत हो गई, कांग्रेस क्यों उस मुद्दे पर मौन रही? लोक भवन के सामने इन लोगों ने धरना देने का काम किया है। उस धरना में भी ये भी बात स्पष्ट करने का काम करे कि झारखंड के युवाओं के साथ उनके भविष्य की हत्या करने का काम किया है।
0: राज्य में अगले 5 दिनों तक लगातार भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हो रहा है। इस मॉनसूनी बारिश से राज्य में जारी 30% पानी की कमी में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।
2: सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, साथ साथ में जो मध्य दक्षिणी से सटा हुआ जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पे आपको एक आध जगह पे भारी बारिश देखने को मिलेगा। तो अभी बारिश की स्थिति ठीक है और जिनके भी खेत में पानी हो गया है तो अच्छा टाइम है, अगर आपका बिहन तैयार है तो रुपये आप कर सकते हैं।
0: रांची के खेलगांव और बीआईटी मेसरा मैदान में 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। अंडर 15 बालक वर्ग में संथाल परगना ने कोल्हान को 6-1 से हराया। वहीं अंडर 17 बालिका और बालक दोनों वर्गों में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल चैंपियन बना। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल ने बालिका वर्ग में उत्तरी छोटानागपुर को 2-1 से और बालक वर्ग में कोल्हान को 4-0 से शिकस्त दी। ओमान में खेली जा रही यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 16-0 से करारी शिकस्त देकर धमाकेदार जीत दर्ज की है। झारखंड की उभरती स्टार संदीपा कुमारी ने मैच के दूसरे, छठे और 20वें मिनट में शानदार फील्ड गोल दागकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। उनके साथ राज्य की पुष्पा मांझी और नीलम टोपनो ने भी बेहतरीन गोल किए। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी छापेमारी और आयोग अध्यक्ष के इस्तीफे की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है जेएसएससी में ब्लैकलिस्टेड एजेंसी ले रही थी जेपीएससी की परीक्षाएं, सीआईडी ने मारा छापा, देर रात अध्यक्ष का इस्तीफा। दैनिक भास्कर ने लिखा है राज्य के 1000 स्कूलों में एआई से होगी पढ़ाई, 7 स्टूडियो से चलेगी वर्चुअल क्लासेस। हिंदुस्तान के शब्द हैं चतरा एसपी आवास के सामने विधायक पुत्र के बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या। दैनिक जागरण लिखता है सुदूर क्षेत्रों से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बहाल होगी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। परीक्षाओं में कथित अनियमितता और प्रशासनिक दबाव के बीच जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते ने दिया इस्तीफा, सीआईडी ने कई महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड कब्जे में लिए। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 6 से 12 अगस्त तक, गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए कैबिनेट ने एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की भी दी स्वीकृति। वोटर लिस्ट को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण के साथ आज राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर तीसरी और अंतिम चुनाव पाठशाला का आयोजन। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय तंत्र के असर से राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट, अगले 5 दिनों तक लगातार होगी वर्षा। और सुब्रतो कप फुटबॉल के अंडर 17 बालक और बालिका दोनों वर्गों में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल बना चैंपियन, अंडर 15 बालक वर्ग में कोल्हान ने जमाया खिताब पर कब्जा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र का प्रसारण। FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं वाणी जयराम की आवाज़ से। फिल्म का नाम है गुड डे।

वाणी जयराम की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे गुड्डी फिल्म का गीत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और साथियों की आवाज़ों में बाहर आने तक। फिल्म का गीत बोल हैं मोहन शर्मा की और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

बाहर आने तक। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ों में। सुनते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनिधि चौहान और जावेद अली की आवाज़। फिल्म है चमेली।

0: चमेली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान और जावेद अली की आवाज़ों में। श्रोताओं, इसी गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन समाप्त होता है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने जा रहे हैं। प्रस्तुत है खेल विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार पलामू कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजय सिन्हा। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और जोहार। सबसे पहले आज का सुविचार, खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, परंतु ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। अच्छे लोगों की संगत बहुत कीमती होती है क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। तो इस सुविचार के बाद अब आइए सुनते हैं एक भक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ज्वार पलामू। डालते हैं एक नज़र स्थानीय खबरों पर। पलामू जिले में राशन कार्डों की जांच के दौरान बड़े पैमाने पर अपात्र लाभुकों की पहचान कर चुके

के किया गया है और उनके नाम हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम चरण में कुल 61,739 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए गए हैं। यह कार्रवाई केंद्र सरकार से प्राप्त सूची के आधार पर की गई है। आपूर्ति विभाग के अनुसार हटाए गए नामों में 12,869 संदिग्ध आधार कार्डधारी जबकि 1,992 ऐसे सदस्य शामिल हैं जो एक से अधिक स्थानों पर राशन का लाभ ले रहे थे। इसके अलावा 23,554 ऐसे सदस्य जिन्होंने राशन कार्ड तो बनवा लिया था लेकिन लंबे समय से राशन नहीं ले पा रहे थे तथा 3,886 डुप्लीकेट लाभुकों के नाम भी सूची से हटा दिए गए हैं। अब दूसरे चरण में 2,45,931 लोगों की जांच की जा रही है। इसमें 2,20,397 ऐसे लोग शामिल हैं जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है। इसके अलावा 6,782 आयकरदाता, 96 GST पंजीकृत व्यक्ति और 1,525 फोर व्हीलर वाहन रखने वाले इसमें शामिल हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर DC दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत चल रहे गणना प्रपत्र वितरण एवं डिजिटल कार्य की समीक्षा की गई। इस दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति, BLO BLA 2 की भूमिका सहित अन्य गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। DC ने बताया कि SIR को लेकर भारत निर्वाचन आयोग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 जून से 29 जुलाई तक BLO के द्वारा घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। जिले में अब तक करीब 99.9% गणना प्रपत्रों का वितरण किया गया है जबकि 78.25% प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन हुआ है। DC ने SIR को लेकर संचालित गतिविधियों में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता एवं SIR का कार्य में पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों का अहम भूमिका है। उन्होंने राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों की इस कार्य में विशेष रुचि लेने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को जिले के सभी मतदाता केंद्रों पर BLO एवं BLA 2 की अंतिम बैठक होनी है। इसी दिन चुनाव पाठशाला का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें BLO BLA 2 की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। DC ने राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष को सुझाव दिया कि BLA 2 को सक्रिय करें ताकि SIR के काम में सहूलियत हो सके। बताया गया है कि BLA 2 के साथ प्रारूप मतदाता सूची ASDDF सूची का सत्यापन किया जाएगा। ASDDF सूची में डुप्लीकेट प्रविष्ट मृत मतदाता, अस्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, अनुपस्थित लापता मतदाता एवं गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले मतदाताओं से जुड़े प्रविष्टियों का परीक्षण भी किया जाएगा। इस कार्य में BLO A राजनीतिक दलों द्वारा चिन्हित BLO 2 आपसी समन्वय बनाकर सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं प्यारा सा फिल्मी गीत।

अब बातें करेंगे खेल संबंधी। 4 साल के इंतजार के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का रोमांच एक बार फिर लौट आया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। 12 साल बाद ग्लासगो दूसरी बार इस बहु खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को OVO हाइड्रो एरिना में होगा, जबकि प्रतियोगिताएं 24 जुलाई से शुरू होंगी। इस बार 74 देश और क्षेत्रों के करीब 3000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत ने 126 सदस्यीय मजबूत दल भेजा है, जिसमें ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, विश्व चैंपियन मुक्केबाज लवलीना मोरगोहेन, ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू समेत कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल रहेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ नए भारत की पहली परीक्षा कल से। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम गुरुवार से जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज की शुरुआत करेगी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होने वाले पहले मुकाबले में युवा खिलाड़ियों पर ही सबकी नज़र रहेगी। भारतीय चयनकर्ताओं ने इस दौरे के लिए अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देकर युवा चेहरों को मौका दिया है। पारी की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के जिम्मे रहने की संभावना है। 15 वर्षीय वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में अपनी प्रतिभा की झलक तो दिखाई है, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके। उन्होंने 3 मैचों में 14, 13 और 15 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 1 अर्धशतक लगाए लेकिन निरंतरता नहीं दिखा सके। संथाल परगना और दक्षिण छोटा नागपुर बने राज्य सुब्रतो मुख्य का फुटबॉल के चैंपियन। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हो गया।

खेल गांव में प्रैक्टिस मैदान में बीआईटी मिश्रा मैदान में खेले गए फाइनल मुकाबले में अंडर 15 बालक वर्ग के खिताब संथाल परगना ने, जबकि अंडर 70 बालक और अंडर 70 बालिका वर्ग का खिताब दक्षिण छोटानागपुर ने अपने नाम किया है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों में अपार प्रतिभा और अनुशासन एवं मेहनत के दम पर वे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। अब तीनों वर्गों की विजेता टीमें राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल में हिस्सा लेगी। विश्व कप के लिए भारतीय सीनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत ने अगले महीने होने वाले FIAH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें प्रो लीग का यूरोप चरण खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। प्रो लीग में 24 सदस्यीय टीम चुनी गई थी, लेकिन विश्व कप के लिए 20 सदस्यों की टीम ही चुनी जानी है। डिफेंडर अमनदीप लकड़ा, मिडफील्डर राजकुमार पाल और रविचंद्र सिंह मुराथांगन और फॉरवर्ड सेल्वन कार्तिक टीम में जगह नहीं बना सके। भारत पिछले महीने प्रो लीग के यूरोप चरण के बाद 4 जीत 5 ड्रॉ और 7 हार के बाद 9 टीमों में पाकिस्तान से ऊपर 8वें स्थान पर पहुंच गया था। 8 बार की ओलंपिक चैंपियन भारतीय टीम अब तक सिर्फ एक बार 1975 में विश्व कप जीत सकी थी। पिछली बार भुवनेश्वर में हुए 2023 विश्व कप में मेजबान भारत 9वें स्थान पर शामिल रहा था। यह तो हो गई खोल की बातें, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं प्यारा सा फिल्मी गीत।

बातें करेंगे इतिहास की, पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं क्या कहता है आज का दिन, यानी 22 जुलाई का क्या इतिहास रहा है, इस पर हम नज़र डालते हैं। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा

मैसेज को मार गिराया था। 2008 की बातें करें तो पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने एक अदालत में अपने खिलाफ लगे प्रतिबंधों हेतु पूर्ण विचार याचिका दायर की थी। 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। 2009 में 22 जुलाई 2009 का सूर्य ग्रहण 29वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण था। हम उन्हें याद कर रहे हैं जिनका जन्म आज हुआ था, यानी 22 जुलाई को। 1923 में आज के दिन मुकेश प्रसिद्ध पार्श्व गायक, इनका जन्म आज ही हुआ था, 22 जुलाई को क्षमा करेंगे। संदीप पांडे रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। विनायक राव पटवर्धन प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक, इनका भी जन्म आज ही हुआ था। और उन्हें याद कर लें जो आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। 1933 में आज के दिन यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक हैं। मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता थी, इनका भी निधन आज ही हुआ था।

0: मुकेश के गए इसी गाने के साथ ही हमारा आज का जोहार प्रणाम कार्यक्रम समाप्त होता है। आगे दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।
1: पलामू।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पनामू, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्म भूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
1: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
1: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
1: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
2: जी,
1: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
2: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।

0: जी।
1: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
0: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
1: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
0: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं
1: जी,
0: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य
1: जी।
0: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है
1: जी।
0: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है
1: जी,
0: जिसे मोरुंग कहते हैं। ये मोरुंग होता क्या है?
1: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था
0: जी। प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे
1: जी। यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
0: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है
1: जी।
0: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की
1: जी।
0: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें
1: जी।
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800044559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
1: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
4: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
3: जी मालिक, ये बात तो है।
4: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
3: जी मालिक, कोशिश करता हूं। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
4: अच्छा,
3: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 शेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
4: भाई इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
3: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
3: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
4: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
2: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
3: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूं तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
4: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 शेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 शेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
3: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 शेर दूध दुहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
4: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
3: जी सेठ जी।
2: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
4: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
3: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
4: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
2: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
3: सुंदरिया, तुम? मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
3: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम गांव चलेंगे।

0: मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया। लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
1: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
0: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
1: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
0: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
2: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
0: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
2: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
1: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे, तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
0: जी सेठ जी।
1: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
0: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओं, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
5: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
4: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
5: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
6: यहीं कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ, वो रही।
5: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, पपीज फॉर सेल।
4: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके।

0: सके और उसके साथ खेल सके।
1: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
0: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
2: हाँ, यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।
1: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
0: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है, इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
1: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
2: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
2: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
2: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
2: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
2: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो
2: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही, मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
2: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
2: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
2: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ अभी लाता है, बस एक मिनट।
0: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
1: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था, उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
3: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
4: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है। अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापिस चलो।
2: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा, इधर आ।
3: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
2: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
3: हैं? अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
2: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
3: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
2: क्या?
3: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
2: मैडम मैं खरीदूंगा इसे, मैं ऐसे ही खरीदूंगा।
3: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
2: मुझे यही चाहिए।
3: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
2: नहीं।
3: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
2: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
3: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
2: यूं ही?
3: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
2: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
3: अच्छा, समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
2: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना, इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
3: पर बेटा ये तो
2: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
3: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
2: तो यही इसकी कीमत भी है, अब ये रहे 1500 रुपए। और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त, है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
3: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
2: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
0: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
3: अरे बेटा ये तुम्हारा?
2: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
3: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस
2: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
3: बेटा।
2: इसलिए मुझे लगता है कि ये पापी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ, आजा मेरा दोस्त, आजा।
3: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
6: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिया में भारतीय उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि उथल पुथल और व्यवधानों के इस दौर में सबसे अधिक असर आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा है। फिलीपींस के मनीला में आज आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन में श्री जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक समय तक हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान देश अपने भविष्य के प्रति आशावादी हैं और इसीलिए चुनौतियों का सामना करते हुए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष है। विदेश मंत्री आसियान भारत पूर्वी एशिया सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठक सहित आसियान फ्रेमवर्क के तहत विदेश मंत्री स्तर की बैठक के लिए 2 दिन की यात्रा पर फिलीपींस के मनीला में है। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
7: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव सहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदारवादी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवाड़ में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने आतंकवादियों को शह और सहायता देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी छतरु इलाके में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों की मदद कर रहा था। इसकी पहचान सिंहपुर के डवाथर निवासी मोहम्मद रफीक नाइक के तौर पर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में एक आदर्श और उत्कृष्ट नागरिक के गुणों को रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। आज राष्ट्रीय आम दिवस है। ये दिन फलों के राजा आम और भारत की समृद्ध आम परंपरा के सम्मान में मनाया जाता है। गोवा का प्रसिद्ध मनकुराद आम अपनी खास खुशबू, मिठास और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर संभाग और जम्मू के ठंडे इलाकों के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 26 जुलाई तक बढ़ा दी हैं। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बताया कि अब स्कूल 27 जुलाई को खुलेंगे। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक तेज वर्षा और अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश हो सकती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 371 अंक गिरकर 77,097, जबकि निफ्टी 106 अंक फिसलकर 24,081 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एचएस प्रणॉय कल प्रतियोगिता के शुरुआती राउंड में मलेशिया के खिलाड़ी से हारकर बाहर हो गए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
8: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। President Draupadi Murmu has called for expanding Indian-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the Indian-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
9: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
8: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that in this era of volatility and disruption, the most visible stress is on supply chains. In his opening remarks at ASEAN Post-Ministerial Conference with India 2026 in Philippines today, Dr. Jaishankar said that energy, food and health security can no longer be taken for granted. He said that both India and ASEAN are optimistic about their prospects and therefore the focus should be on opportunities even while addressing challenges. Dr. Jaishankar noted that this year is the ASEAN-India Year of Maritime.

0: श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में मैं कुसुम पवार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हम ढेर
1: ये गांव वाले लिख सकते हैं। और एक रावलपिंडी की मिट्टी, पिंडी की मिट्टी, उसका
2: पिंडी कहते थे जी, रावलपिंडी नहीं कहते थे।
1: उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका जिक्र कीजिए।
2: उन्होंने वो कविता लिखी थी क्योंकि उनको क्या होता है, वो भले वो विभाजन हो गया और एक दूसरा देश बन गया
1: जी,
2: लेकिन जन्म तो वही हुआ था ना,
1: बिल्कुल।
2: तो उनके लिए वो जन्मभूमि है। जब इंसान अपनी माँ से बिछड़ जाए 5 साल की उम्र में, तो वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो एक भूमि क्या होती है, वो भी तो पैदा करती है ना। भूमि गर्भ होती है, गर्भ में से ही सब निकलता है ना, अनाज निकलता है, पानी आता है। तो वैसे ही जब माँ भी गुजर गई 5 साल की उम्र में और मिट्टी भी रह गई पीछे 17 साल की उम्र में, तो एक जो दर्द महसूस होता है कि वो जो एक मातृभूमि है वो चली गई, दोनों माँ चली गई, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसकी कोख से जन्म लिया। तो इसलिए वो ऐसी उन्होंने ये कविता लिखी थी, कविता का नाम है
1: पिंडी की मिट्टी। तो मेरा सौभाग्य है कि वो कविता मैंने पढ़ी है, एक किताब है बख्शी साहब की कविताओं की जिसमें वो संग्रहित,
2: मैं जादू हूं चल जाऊंगा
1: जी,
2: उसमें लिखी है, मेंशन की हुई है।
1: बख्शी साहब के बचपन की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटी है, जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, वो सिनेमा, साइकिल, गाना, ये सारी चीज।
2: क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे।
1: अरे ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई,
2: सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ एंटायर पंजाब, ऑल द जेल्स,
1: पंजाब प्रांत,
2: पूरा प्रांत अनडिवाइडेड पंजाब का जो जो जेल्स थे वो जेलर थे, उसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेरी बिग, वेरी पावरफुल मैन। उनका उनका जो घर है अभी कुछ 3-4 साल पहले ही वो डिमोलिश हुआ है, 3 मंजिल का घर था वो। और ही वॉज द ओनली चाइल्ड फैमिली जिनके पास साइकिल थी। तो वो साइकिल भी इतनी खास चीज थी तब कि जब वो कहीं भी जाते थे साइकिल छोड़ आते थे, कोई ना कोई घर में साइकिल छोड़ जाता था वापस,
1: सब पहचानते थे
2: कि दरोगा जी के पोते की साइकिल है ये।
1: क्या कहलाती है, मोहियाल,
2: मोहियाल, मोहियाल। हाँ, पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है मोहियाल्स
1: जी।
2: तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मोर देन 50% रिलेटिव्स हमारे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में है, बिकॉज वी आर अ मार्शल क्लैन
1: जी जी।
2: हाँ, वी वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय ऑफ सोसाइटी। और उनको शौक था फिल्मों का, और फिल्म देखने के लिए पैसा नहीं मिलता था क्योंकि उस टाइम पे फिल्म का काम करना या फिल्म देखना कंजरों का काम होता था,
1: खराब माना जाता।
2: हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहां पे पास में, तो वहां पे वो टेम्पररी नौकरी ले लेते थे कभी हफ्ते में 2-3 दिन। क्यों, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में।
1: अरे गजब।
2: हाँ, क्योंकि अगर आप सिनेमा में काम करोगे और लोगों को सीट बताओगे सीट कहाँ बैठना है, या डोरमैन का काम करोगे स्कूल के बाद, तो फिल्म पूरी देखने को मिलती है फ्री में। तो फिर दादाजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने को मिलने में नहीं वाले। तो ये उनका टाइम पास होता था कि चलो मैं इसी बहाने फिल्में देखूंगा। तो जिस दिन पिताजी को पता चला कि इसने ऐसी नौकरी पकड़ी हुई है टाइम पास,
1: और जबकि वो बच्चे थे उस वक्त,
2: बच्चे थे और स्कूल की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे थे, और जाके इधर नौकरी कर रहे थे सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म देखने के लिए, तो जो उनके दादाजी की जो छड़ी थी, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी कि तुमने ये ऐसा क्यों किया जब हमारे को पैसों की जरूरत ही नहीं है, और तुम भी ये काम कर रहे हो, गलत काम है ये फिल्में देखना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है। इतना शौक था उनको
1: जी जी।
2: और वो करीब कुछ 12-13 साल की उम्र से ही नज़्में लिख भी रहे थे, उसकी धुन भी बनाते थे, उसको गाते भी थे और उसपे एक्टिंग भी करते थे।
1: वाह वाह।
2: क्योंकि जब मोहल्ले में रामलीला होती थी
1: जी,
2: तो उनको भी पकड़ा जाता था डायलॉग, मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए रामायण का। तो जितने भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे हिंदू के, तो उसमें सारे में बख्शी साहब टीनेजर को बुलाया जाता था, अरे वो बख्शी को बुलाओ, अरे वो दरोगा जी के पोते को बुलाओ, वो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है। तो सब कर लेते थे, लिख भी लेते थे, उसको धुन भी बना देते थे, गा भी लेते थे, उसकी एक्टिंग भी कर लेते थे।
1: और उनका ख्वाब बंबई जाने का था।
2: हाँ, फिल्में देखते हैं तो पता चलता है ये कहाँ बनी है, बंबई से बंबई में बनती है। अच्छा, बंबई किधर है,
1: समुद्र के पार है।
2: समुद्र के पार है। तो उनको ये था कि मैं बंबई जाऊं, लेकिन उनको पता नहीं था बंबई क्या है, ये कि बंबई में फिल्में बनती हैं।
1: हाँ।
2: तो अगर गाना गाना है या गाना लिखना है या एक्टिंग करनी है या धुन बनानी है तो बंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो गांव में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं।
1: एक छोटे से बच्चे को ये समझ में आ गया कि उसकी मंजिल बंबई है।
2: हाँ। तो जब वो 14 साल के थे उनको नेवी में भर्ती किया गया, क्योंकि हमारी सारी एंसेस्ट्री नेवी में थी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस, बिकॉज देवर अ मार्शल क्लैन।
1: तो 14 साल की उम्र तो बहुत कम होती है, तो कैडेट बन गए वो।
2: कैडेट, यू वर द नेवल कैडेट। और उनकी भर्ती हुई दो शिफ्ट थी, INS हिंदुस्तान और INS दिलावर, इन दो शिफ्ट में पढ़ाई जाती थी नेवल की जो पढ़ाई है।
1: और ये तो अंग्रेजों का जमाना था।
2: हाँ, 1942 तो जो पहला साल उनका नेवी में था कराची पोर्ट में, तो वहां म्यूटिनी शुरू हो गई। तो जो म्यूटिनी हुई वो बम्बई में हुई, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, मद्रास पोर्ट और कराची पोर्ट।
1: ये जो बगावत थी नेवी
2: बगावत
1: की, ये बहुत मशहूर है,
2: बहुत मशहूर
1: है, इसका
2: बहुत
1: इतिहास में दर्ज है।
2: पहली बगावत, सेकंड बगावत थी जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि हम इस देश पर राज नहीं कर सकेंगे।
1: जी,
2: क्योंकि देखिए आम आदमी प्रोटेस्ट करे तो वो तो करेगा प्रोटेस्ट, लेकिन अगर आपकी नेवल फोर्स आपके अगेंस्ट चले जाए, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपकी पुलिस आपके, वो कू बन जाता है, लेकिन भी कू।
1: बिल्कुल,
2: तो दैट इज व्हेन दे रियलाइज यार ये तो इन पे राज करना मुश्किल होगा।
1: जी,
2: तो उन्होंने उसमें भाग लिया था। और उनका जो ये जो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी ना, नेवी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि वो पेट्रियोटिक थे। उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी कि कराची में बोट में पढ़ाई होती है, शिप में पढ़ाई होती है, और वो शिप में घुमाते हैं, तो जब मेरी शिप बंबई जाएगी मैं शिप से जंप मार के भाग जाऊंगा, नेवी छोड़ के भाग जाऊंगा और जाके फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा।
1: अरे,
2: तो
1: अरे,
2: उनका
1: अरे।
2: जो गोल था वो देश के लिए नहीं था।
1: हाँ।
2: नेवी ज्वाइन करना, वो जो देश के लिए गोल था वो जब म्यूटिनी हुई तब पैदा हुआ। वहां उनको एहसास हुआ, क्योंकि जब वो पकड़े गए सब और जेल हुई, तो तब उनको उनमें ये एक एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। तब तक उनको वो गुलामी का एहसास नहीं था
1: क्योंकि उम्र भी बहुत कम थी,
2: बहुत कम थी।
1: जी,
2: और क्या होता है कि दादाजी भी पुलिस में है, सबसे पावरफुल पोस्ट, तो आपको कोई गुलाम की तरह रखेगा नहीं ना, तो आपको गुलामी का एहसास नहीं होता। तो जब भी इनको कराची में अरेस्ट किया गया, जब म्यूटिनी को स्मैश किया गया, डिमोलिश किया गया बाय द ब्रिटिश, उनके जो ऑफिसर थे वो अंग्रेज था, तो उन्होंने पकड़ा इनको, सबको पकड़ा, जेल में गए। तो जेल में जब गए और बख्शी साहब को देखा, तो उसने बोला ये बच्चा कौन है, ये तो अंडर एज है। तो बख्शी साहब को उन्होंने बोला कि तुम तो बच्चे हो, यू आर नॉट 18 एज येट, तो अगर तुम्हें जेल होती है, अगर मैं तुम्हें जेल में भेजता हूं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जेल की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है।
1: हाँ बिल्कुल,
2: तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं।
1: जी,
2: लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूं ब्रिटिश नेवी का, तो मैं तुम्हें रेस्टिकेट करूंगा नेवी से। तो उनको रेस्टिकेट किया गया, यू हैव टू लीव। फिर लीव करके फिर उनके बाद वो गए, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ, इंडिया आए, दिल्ली आए, तो वहां उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन की। सिग्नल्स,
1: इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो फौजी अफसर थे उनके प्रति बहुत सम्मान था बख्शी साहब के जहन में, क्योंकि अगर वो जेल भेज देते तो पूरी जिंदगी बदल जाती।
2: हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक तो माँ होती है जो जन्म देती है, और एक जो माँ होती है जो

0: आगे जिंदगी बढ़ाती है,
1: जी
0: तो ही ऑलवेज थॉट कि इट इज अ वेरी मदर लाइक एक्ट,
1: जी
0: एक माँ की तरह एक उन्होंने उस बच्चे को एक सेकेंड लाइफ दे के तू जा,
1: जी
0: देखो मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में,
1: और छोड़ दिया, सबसे
0: छोड़ दिया।
1: इंपॉर्टेंट
0: हाँ,
1: बात।
0: यू आर रस्टिकेटेड विद डिसऑनर।
1: अब जब घर आए तो क्या हाल हुआ?
0: घर आए तो फिर नेचुरली तो फिर तो इमीजिएटली अपना एक साल में पार्टीशन हो गया ना देश का, अपना भारत का। तो फिर उससे पहले उनको उधर भेजा गया गुरुकुल, जम्मू के
1: जी
0: पास में गुरुकुल था, तो वहां गुरुकुल में भेजा गया पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में वो सिनेमा हॉल में ये चले जाते थे छोटा मोटा काम करने के लिए, पैसे नहीं मिलते थे लेकिन फिल्म देखने को मिलती थी। तो ये सब पकड़ी गई, सब उनकी सब चोरी पकड़ी गई था ये तो। और दूसरी एक बात थी कि एक बार उनके स्कूल में दो दोस्त बने थे उनके, तीन, ये तीन दोस्त थे स्कूल में, और तीनों का ये सपना था कि हम बंबई जाएंगे कुछ काम करेंगे। बख्शी साहब का था कि मैं फिल्म ज्वाइन करूंगा,
1: और
0: बाकी
1: दो बंदे
0: का कुछ था उनका कुछ सपना था। तो इन्होंने तीनों ने स्कूल की सारी किताबें बेच दी,
1: अरे बाप रे,
0: बैग वैग सब बेच दिया, पानी की बोतल सब बेच, सब कुछ जो भी स्कूल का सामान था सारा बेच दिया। और उस जैसे पैसे मिले वो जाके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए कि सुबह हम मिलेंगे इतने बजे और हम ये ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहाँ जाएगी, यहाँ से वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, वहां से बम्बई पहुंच जाएगी, और हम घर में नहीं बताएंगे। अभी वो चले गए, पहुंच गए, अपना सामान वामान बेच के सब पैसे वैसे जेब में, जो भी 5, 10, 6 रुपया, 1 रुपया जो भी मिला होगा उसका जेब में डाल के, अपने दो तीन एक जोड़ी कपड़ा वपड़ा कपड़े की थैली में लटका के, पानी वानी, पहुंच गए स्टेशन। 5, 6, 8, 12 घंटे निकल के वो आए नहीं दोनों दोस्त, घर चले गए वापस। घर चले गए वापस तो फिर मालूम पड़ा कि तो सारे किताबें बेच दी इसने, कल स्कूल है,
1: फिर
0: स्कूल जाने के लिए सब जबरदस्त पिटाई हुई।
1: अरे अरे,
0: तो उसका इलाज उन्होंने क्या ढूंढा कि यहाँ से निकालो, ये यहाँ खराब हो गया है गाँव में,
1: यहाँ गलत संगत,
0: गलत संगत होगी इसकी। हाँ। इसके बेकार बेकार से सपने हैं इसके बंबई जाने के, फिल्म लाइन ज्वाइन करने के, तो इसको गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में खूब पिटाई होगी, इसकी पढ़ाई भी होगी और साथ में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होता ना, बिकॉज एवरीथिंग इज धार्मिक, तो वहां ये सुधर जाएगा। तो भेजा।

0: गुरुकुल ज्वाइन किया तो गुरुकुल में एक ऑफिसर आया था, ही वाज अ ब्रिटिश बॉक्सर, ब्रिटिश था वो, अंग्रेज था और वो बॉक्सर था और टीचर था, बॉक्सिंग सिखाता था वो।
1: अच्छा, मतलब गुरुकुल में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कि बच्चे हट्टे कट्टे बने, हाँ, तंदुरुस्त बने, वो
0: ब्रिटिश राज था ना,
1: करें।
0: ब्रिटिश को था कि हम हर जगह हमारा पैर दबा के रखें, तो जो दो गुरुकुल में पढ़ाई इंग्लिश नहीं होती थी लेकिन उनको अपना दबदबा सब जगह रखना था, तो उन्होंने वहां भी अंग्रेज को भेजते थे वो, कि ताकि वो नजर रखे सब बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे कि हो क्या रखे, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट तो नहीं हो रहा गुरुकुल में। बॉक्सर था तो वो बॉक्सिंग सिखाता था सबको, पीटीवीटी कराता था, तो बॉक्सिंग सिखाने के लिए कोई सीखने को रेडी नहीं था, किसी को शौक नहीं था, क्योंकि हमारी जो एंसेस्ट्रल है अपना, हमारी जो कल्चर है उसमें वो है ना कुश्ती,
1: बिल्कुल
0: बॉक्सिंग तो है ही नहीं हमारे इसमें, तो उसको अभी कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर बॉक्सिंग सीखोगे तो बड़ा ग्लास दूध का मिलता था, उसमें मलाई ऊपर रहती थी।
1: अच्छा,
0: तो वो दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली, कि यार साला इधर मलाई और दूध मिलेगा,
1: दूध मिलेगा।
0: फॉर एवरी क्लास एवरी स्टूडेंट गेट्स वन ग्लास ऑफ मिल्क विद मलाई ऑन टॉप। वो जमाने के ग्लास इतना बड़े बड़े रहते थे,
1: बिल्कुल। और वो पंजाबी व्यक्ति,
0: हाँ,
1: दूध का
0: शौक,
1: हाँ, मलाई,
0: गांव में पैदा हुए हैं
1: जी,
0: तो ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पर वो जो ऑफिसर था ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, वो सिखाने के लिए नहीं आया था, वो अपना गुस्सा निकालता था सब पे, वो रोज एक स्टूडेंट को पकड़ के इतनी पिटाई करता था कि वो बच्चे बेहोश हो जाते थे। तो बख्श साहब ने देखा यार ये तो खूब पिटाई हो रही है लेकिन यार धूप भी मिल रहा है, तो वो क्या करते थे, रोज जब क्लास होता था ना, हफ्ते में एक दिन क्लास होता था, वो किसी ना किसी के पीछे छुप जाते थे
1: ताकि रिंग में ना आना,
0: हाँ, वो रेंज में नहीं आया, आंखों से आंखें नहीं मिल सके। तो तीन चार महीने तो बड़ा दूध पिया, मलाई खाई, मजे के ले लिए, लेकिन एक दिन वो अंग्रेज ने देख लिया इनको, बोला यार तुम कौन हो, हैव यू ज्वाइन न्यू, तुम क्या नया आए हो इधर, इसे नहीं, कब आए तुम इधर क्लास में, वो सर चार पांच महीने हो गए, चार पांच महीने हो गए
1: अभी तक मेरे हाथ नहीं लगाए।
0: उनकी तो डबल पिटाई की उन्होंने,
1: अरे बाप,
0: अरे जबरदस्त खूब पीटा बख्शी साहब को।
1: बख्शी
0: साहब अगले दिन भाग गए वहां से,
1: अरे अरे,
0: सुबह उठे सीधा ट्रेन पकड़ी। क्या वो जमाने के जो बच्चे थे ना
1: जी,
0: वो आज के जमाने के जो हमारे मेट्रो बच्चे हैं या टायर टू सिटी के बच्चे, वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं थे वो, तो सीधा अगले दिन ट्रेन पकड़ी जम्मू से और घर वापस आ गए कि बाबा बहुत हो गया।

0: मैन ऑफ पावर कि भाई इसका घर तोड़ेंगे आज उस हिसाब से। तो इनको रातों रात निकलना पड़ा वहां से। तो जो भी हाथ लगा, बर्तन बर्तन
1: जेवर
0: गहने वहने, हाँ, दादाजी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे ऑफ पंजाब जेल। तो उनको दिल्ली आने के लिए एक डकोटा प्लेन में आए। देवर टू थ्री फैमिलीज, देवर वेरी प्रिविलेज पीपल, और वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आए फ्रॉम रावलपिंडी। पता नहीं बीच में रुके होंगे फॉर रिफ्यूलिंग, आई डो नॉट नो, बट आई नो दैट दे केम टू दिल्ली टू रेफ्यूजी कैंप। और बहुत लकी थे क्योंकि लाखों कहानियां जो लोगों का लूटा गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो उनकी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे के सारे सेफ। तो जो भी वो उनका हाथ लगा, और घर की चाबी बाजू वाले को देके आए थे कि बाबा हम आ रहे हैं वापस, दो तीन महीने में वापस आ जाएंगे, क्योंकि किसी को ये नहीं था कि वापस कभी नहीं आ सकेंगे। तो इस विश्वास से कि हम एक दिन वापस आ जाएंगे, सब चीजें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे, तो पड़ोसी को घर की चाबी देके आ गए। तो यहाँ कुछ चार पांच दिन निकले और सब सेटल हो गए, खाना पीना, और रेफ्यूजी कैंप में जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि दरोगा जी थे वो, रिटायर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज इन पावर स्टिल बट ही वॉज दिल्ली। तो रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह वगैरह मिल गई, सब ठीक हो गया। तो सबको पूछा कि भाई क्या क्या लाए हो, कि उस जमाने में चांदी के बर्तन वॉज वेरी कॉमन, तो बर्तन चांदी के, ज्वेलरी जो लेडीज होती है तो ज्वेलरी लगती है, हमारे कल्चर में तो यही ज्वेलरी, गोल्ड लेना, क्योंकि पांच बहन है, और ही वॉज ओनली सन फ्रॉम द फर्स्ट मदर एंड टू ब्रदर्स फ्रॉम द सेकेंड मदर।
1: सौतेली माँ भी उनकी एक थी,
0: हाँ, सौतेली माँ। तो ये सब पूरी दादा दादी साथ में, पूरे सब ज्वाइंट फैमिली। तो सब ने बताया कि किसी के पास ज्वेलरी, किसी के पास ये वो कपड़े वपड़े। तो जब बख्शी साहब का पूछा कि तू क्या लाया घर से, क्योंकि उनको रातों रात भाग के निकला ना वहां से, सुबह होने से पहले हमें यहां से निकल जाना है। तो जब उन्होंने बताया सामान जो लाए हैं, तो उनको खूब डांट पड़ी दादाजी से, बाबूजी से और दादाजी दोनों से, कि बेवकूफ क्या उठा के लाया, ये क्या काम आएगा किसी के, ये सब क्या लाए थे वो 17 साल की उम्र में रातों रात वहां से जब निकले। अपनी गुजरी हुई माँ की फोटोज, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में गुजर गई माँ, तो उनकी मेमोरीज बहुत कम है माँ के साथ,
1: तो वो तस्वीर उनके लिए,
0: वो तस्वीर ही उनकी मेमोरी थी कि ये। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो माँ बहुत जल्दी गुजर गई, तो मेरे पास तो ज्यादा यादें नहीं है माँ के साथ, तो ये तस्वीरें ही हैं जिनको मैं देख देख के वक्त गुजारता हूँ। इन्होंने जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि क्या है, उनके पिताजी ने भी शादी कर ली सेकंड, तो नेचुरली एक कोई भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता ना, तो बच्चे को थोड़ा प्यार नहीं मिलता, ये नहीं कि कम मिलता है, वो हर एक बच्चा अलग होता है। कोई बच्चे को लगता है मुझे ज्यादा सेंसिटिव होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो फिर वो माँ की तस्वीर देख के रोते थे वो। तो उनको ये था कि उन्होंने बाबूजी को बोला था कि पैसे तो हम काम करके कमा लेंगे, कोई भी काम करके आप आदमी इंसान पैसे कमा लेता है, लेकिन माँ की तस्वीर अगर रह जाती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा।
1: गजब, क्या गजब की बात।
0: तो मैं लोगों को हमेशा ये जो किस्सा सुनाता हूँ, उसका मकसद ये है सुनाने का, जो इंसान 17 साल की उम्र में रातों रात कपड़े नहीं उठाए, पानी नहीं उठाया, खाना नहीं उठाया, ज्वेलरी नहीं उठाई, जो चांदी का ग्लास था वो नहीं उठाया, माँ की तस्वीर उठा के लाया, वो ही इंसान आगे जाके गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ।

0: और कोई नहीं लिख सकता ऐसा गाना। मुझे याद है जब हम मम्मी के साथ लड़ते थे, क्योंकि हम हर बच्चा मम्मी के साथ लड़ता है, क्योंकि मम्मी एक है जो हमारे नॉनसेंस ले लेती है ना, बाकी तो बाप तो सीधा उठा के दो चांटे लगा देगा। तो मम्मी के साथ वो लड़ते थे, लड़के लड़ नहीं सकते क्योंकि एक जनरेशन गैप है। ऊपर से एक पिताजी का एक होता है ना रोब होता है, बाबूजी दादाजी पिताजी इनका एक रोब होता है बहुत हमारे घर में।
1: बिल्कुल
0: मम्मी फ्रेंड होती है ना,
1: यस, बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: हम दोस्ती ज्यादा मम्मी से करते हैं, तो मम्मी से बहुत लड़ते थे। तो हमेशा डैडी हमें बोलते थे कि तुम जो बदतमीजी से बात करते हो अपने मम्मी के साथ, तुम बुरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी माँ जिंदा है, इसलिए तुम्हें पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है।
1: क्या
0: हमसे
1: बात है।
0: पूछो जिनकी माँ नहीं है, माँ से कैसे बात की जाती है। तुम्हारी माँ है इसलिए तुम्हें माँ की कीमत नहीं पता।
1: माँ का मोल समझो।
0: हाँ,
1: दूसरी चीज वो जो लेके आए थे अपने घर से, वो थी पिंडी की मिट्टी।
0: वो मिसप्लेस हो गई, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो वेयर इट वेंट। मैंने बहुत उसको खोजा, और उनके जाने के बाद जब मैंने उनका वॉलेट खोला, मुझे उनकी कृष्ण जी की फोटो मिली, एक गीता का एक वर्स मिला मुझे उसमें, एक बॉटल नहीं मुझे वापस
1: कि
0: मिली।
1: उन्होंने अपने गांव की मिट्टी एक बोतल में भरी कि अब ये छूट रही है मेरी मातृभूमि। ये कितनी बड़ी बात है
0: हाँ, इसलिए उन्होंने कितने खूबसूरत गाने लिखे हैं मिट्टी पे,
1: जी।
0: कितने खूबसूरत, मतलब एक से नंबर एक गाना है उनका मिट्टी पे। और मिट्टी खो देने का, माँ खो देने का, और मिट्टी खो देने का, इंसान खो देने का। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, जाने कहाँ चले जाते हैं वो लोग,
1: दुनिया से जाने
0: दुनिया से
1: वाले
0: जाने वाले। आप देखो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि जिया है उसे।
1: वो उनकी जिंदगी की

0: रावलपिंडी से जुड़ी यादें वो शेयर करते थे, और वो कौन कौन सी यादें, अभी तक हमने बहुत सारी यादें वहां की बांटी हैं, तो कुछ और बात है जो रह गई जो उन्होंने आपको सुनाई हो रावलपिंडी से जुड़ी हुई कहानी?
1: जब रावलपिंडी में थे तब उनको पता चला था कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: हाँ, क्यों स्टूडियोज होते थे बड़े बड़े,
1: तो वो लाहौर गए थे काम ढूंढने के लिए। नहीं, उनकी एक कविता एक उर्दू मैगजीन में छपी थी, क्योंकि पढ़ाई उर्दू में होती थी वहां पर रावलपिंडी में, तो उनका जो लिखाई है वो भले ही हिंदी है, हिंदी गाने हैं, लेकिन वो उर्दू में लिखते थे हिंदी गानों को हमेशा, क्योंकि उन्होंने हिंदी सीखी नहीं थी। जो उनकी हिंदी थी वो बोलचाल में थी
0: जी जी,
1: हाँ, लेकिन लिखने में वो हिंदी गाने उर्दू में लिखते थे।
0: ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बख्शी साहब अपने गाने उर्दू में लिखा करते थे।
1: हाँ, मैट्रिक पास ना, 8th स्टैंडर्ड तक, तो वो पब्लिश हुई थी उनकी एक नज़म लाहौर में, तो वहां इंडस्ट्री भी थी, तो वहां भी वो गए थे कि चलो इसी बारे में थोड़ा काम भी ढूंढूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो वो फिर वापस आ गए थे
0: जी। पार्टीशन के बाद जब पूरा परिवार दिल्ली आया, दिल्ली में किस तरह के हालात हुए और वहां से कहां गया पूरा परिवार?
1: बिकॉज देवर रेफ्यूजी कैंप में थे ना वो, तो दिल्ली से फिर उनको पुनः शिफ्ट किया गया रेफ्यूजी कैंप,
0: सरकार ने भेजा,
1: सरकार ने, फिर वहां से वापस वो दिल्ली आए, क्योंकि पंजाबी थे वो, तो उनको महाराष्ट्र सूट नहीं किया, दे वांटेड समबडी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव वही है पंजाब में ही है, पंजाब हरियाणा, तो उन्होंने बोला कोई ये हमारा इधर तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई पहचान वाला ही नहीं है महाराष्ट्र में, तो पुनः से फिर वापस उनको शिफ्ट किया गया, फिर उनको घर दिया गया दिल्ली में सराय रोहिल्ला, जगह है सराय रोहिल्ला। तो फिर पार्टीशन हुआ अगस्त में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उन्होंने ही ज्वाइन इन द सिग्नल्स एज एन इलेक्ट्रिशियन एंड टेलीफोन ऑपरेटर।
0: ओके,
1: तो उनका जो कोड नेम था एज अ सोल्जर, क्योंकि सोल्जर को सिग्नल में वॉच कोड सिखाया जाता है
0: जी जी,
1: और टाइपराइटिंग सिखाई जाती है, जो तब की कम्युनिकेशन थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो हर ऑफिसर को कोड नेम दिया जाता था, क्योंकि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर नेम, सो दैट अगर हमारी रिकॉर्डिंग टैप हो रही है एनिमी से, इफ द एनिमी रिकॉर्डिंग आवर,
0: तो वो नहीं जान पाए,
1: उनको पता नहीं चलेगा ये कौन बात कर रहा है,
0: बंदा कौन है, उसकी लोकेशन क्या है,
1: लोकेशन क्या है। तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
1: वाकई में आजाद थे वो,
0: क्या बात,
1: आजाद दिल के।
0: अच्छा, उनकी आर्मी सिग्नल कोर में पोस्टिंग से पहले
1: जबलपुर में पोस्टिंग हुई थी।
0: हाँ,
1: ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम जबलपुर,
0: ट्रेनिंग वहां हुई,
1: 3 साल की जो ट्रेनिंग थी वो जबलपुर में हुई, तो उनका जो सर्टिफिकेट है जो मैंने पब्लिश भी किया है किताब
0: जी,
1: में
0: जी जी,
1: वो जबलपुर का है, वो सिग्नल सेंटर जबलपुर जो हाँ, आपका गांव है।
0: बिल्कुल वहां पर स्पेलिंग लिखी जबलपुर, आज भी आर्मी सिग्नल कोर का जो ठिकाना है वो अभी भी जबलपुर में है, एक बड़ा सा गेट है, और क्योंकि मेरा शहर है तो जब कभी हम वहां से निकलते हैं जो भी साथ होता है उसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि यहां बख्शी साहब रहे हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के काम में उनको दिलचस्पी होने लगी थी, मैंने उनकी कॉपी दिखी है जो आपने दिखाई थी ट्रेनिंग वाली, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हैं, बहुत सारे नोट्स लिखे हैं साइंस के, तो वो देख के ऐसा लगता
1: है। कमाल की बात, ही वाज सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, लेकिन डरपोक नंबर वन, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो जाए घर में ना गड़बड़, डरपोक नंबर वन,
0: तो मतलब टच नहीं करते थे,
1: स्क्रू ड्राइवर डालने में भी घबराते थे कि शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, हाथ में लगा, हाथ में लगा, शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, ही वाज लाइक दैट।
0: नहीं, लेकिन वो जो नोटबुक आपने मुझे दिखाई थी उसमें तो क्या सर्किट,
1: सब कुछ, लेकिन
0: बहुत सुंदर राइटिंग में सब कुछ है।
1: फोबिया होता है शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा।

0: तो उनको वो शॉक लगने का बहुत डर रहता था, एक चिपकली का डर, एक शॉक लगने का डर और एक लिफ्ट में चढ़ने का डर, तीन उनके डर थे और अकेले रहने का डर। तो उनका अकेले रहने का जो डर था ना उसको एनालाइज किया गया। वो करीब लेट 1990s में, मेरे ख्याल में गुजर जाने से कुछ दो तीन साल पहले, ही मेट अ साइकोलॉजिस्ट कि अभी तो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ, मेरा नाम है सब जगह, इज्जत है, जो मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में होगा वो भी हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे डर है प्लेन में नहीं चढ़ने का, लिफ्ट में नहीं जाने का, घर में अकेले नहीं रहने का।
1: मतलब कोई ना कोई उनके साथ होना जरूरी था।
0: घर पे भी हमारा काफी बार डैडी के साथ झगड़ा क्यों होता था, क्योंकि वो बोलते थे अभी मम्मी बाहर गई है तुम घर बैठो, बाहर नहीं जाना, मम्मी आएगी तब जाना। तो बोलता अभी जाना, खेलने के लिए जाना है क्रिकेट खेलने जाना है या गोटी खेलने जाना है या गिती गिती खेलने जाना है, दोस्त बुला रहे, नहीं नहीं मम्मी आएगी या भाई आएगा गोगी आएगा तब जाना। तो हम लड़ते थे डैडी के साथ, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद जब मैंने उनकी डायरी खोली तब मुझे पता चला कि ये जो डर था उनका घर में अकेले नहीं रहना, कोई ना कोई होना चाहिए घर में, या तो जो हमारे घर में लोग काम करते हैं वो होने चाहिए, या मैं या माय ब्रदर और माय सिस्टर और माय मदर, कोई होना चाहिए, अकेले नहीं। उसको एनालाइज किया गया हूं साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने रिमार्क लिखा है दैट बिकॉज यू आर अबैंडन्ड एज अ चाइल्ड, बिकॉज यू लॉस्ट योर मदर एट द एज ऑफ 5 और आप पिताजी ने दूसरी शादी की, और क्या होता है भले वो माँ अच्छी हो दूसरी आई है लेकिन वो माँ नहीं है,
1: तो एक अकेलापन आ जाता
0: है। अकेलापन से ज्यादा होता है अबैंडनमेंट।
1: जी जी,
0: अबैंडनमेंट हर्ट्स यू।
1: यस,
0: अकेलापन में नॉट हर्ट यू, लेकिन इफ यू फील अबैंडनड यू आर हर्टिंग योरसेल्फ
1: कि मेरा तो कोई नहीं है,
0: मेरा तो कोई नहीं है, नहीं मुझे छोड़ा गया है, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। तो क्योंकि 5 साल की उम्र है ना, तो उसको लगता है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है, तो बचपन से माँ चली गई मतलब माँ ने छोड़ दिया मुझे, तो वो एक जख्म था, वो भरा नहीं कभी, इसलिए वहां पे क्या गाने लिखे बख्शी साहब ने, कमाल सर, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज रिटन एज गुड एज आनंद बख्शी रिटन ऑन मदर।

0: 60s 70s 80s में माँ की बहुत अहमियत थी सोसाइटी में, तो फिल्म में कहीं ना कहीं माँ का कैरेक्टर आ ही जाता था, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर,
1: और वहां फिर गाने लिखने की,
0: हाँ, जो आजकल नहीं है फिल्मों में। आजकल फिल्मों में आपको देखो दोस्ती खत्म हो गई है, दोस्ती में कोई गाना नहीं है, कोई रिलेशनशिप भी नहीं दिखा रहे दोस्ती का, तो ये सब है। तो उनका जो ये था ना कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, उसकी दो वजह थी, एक तो ही फेल्ट लेटर तो व्हेन ही ग्रू ओल्डर देन ही रियलाइज दैट शी डाइड, बिकॉज शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ, जब सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ ना बख्शी साहब के बाद, तो वो चाइल्ड बर्थ में गुजर, उस जमाने में ना चाइल्ड बर्थ में बहुत डेथ हो जाती थी
1: जी जी लेडीज की, बिल्कुल,
0: लेकिन वो जख्म होता है, कोई जख्म बढ़ते नहीं है, हर जख्म नहीं बढ़ता
1: वाला, और प्लेन में सफर न करने वाला डर क्यों?
0: हाँ, दैट इज जस्ट अ फोबिया। एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला, अगर आपको, उन्होंने बोला कि भाई जब मैं आर्मी में था तो मैं तो पैराशूट से जंप मारता था 70 रुपए के लिए, ज्यादा हमको 70 रुपए ज्यादा मिलते थे अगर हम पैराट्रूपिंग करें, वो आदमी प्लेन में नहीं चढ़ रहा है, आप सोचो। तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि भाई इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कमाल का क्योर दिया हमको, उन्होंने बोला कि आप जब बंबई आए थे ये डर था, ही सेड नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये डर बाद में आया, कब आया, जब शोहरत आई, शोहरत के साथ डर आया। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्लेन में वापस चढ़ना है, अगर आपको लिफ्ट में वापस जाना है, आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी थी 1956 में,
1: स्ट्रगल,
0: ट्रेन में जाना, बस में जाना, कार स्टेशन से वो टिकट निकालते थे फर्स्ट क्लास का, और वो वही ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाते थे, फिर चर्चगेट में जाके समुद्र के किनारे मंडरा पे बैठते थे, जहां वो बैठ के गाने लिखते थे, वहां एक दो घंटा गाना लिखा, दो तीन जो भी मूड हुआ तो लिखा, नहीं हुआ तो ऐसे बैठ के, वो जो जिंदगी जी थी उन्होंने
1: उसको
0: 1956 में उसको रिपीट किया गया, ताकि ये डर जाए, क्योंकि वो आदमी खो गया है, उस आदमी को वापस कैसे लाना है, वो आदमी बनो,
1: अरे गजब,
0: तो वो आदमी वापस आएगा, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ने वो आदमी पैदा किया था ना, जो ट्रेन में जाता था काम ढूंढने, बस में चढ़ता था काम ढूंढने, लिफ्ट पे चला जाता था काम ढूंढने, वो इंसान खो गया, क्योंकि अब इसके पास गाड़ी आ गई है, वेल्थ आ गया है, घर आ गया है, नाम और शोहरत आ गया है, तो वो इंसान खो गया है। तो उस डॉक्टर ने कहा था उनको, साइकोलॉजिस्ट ने, तुम वो इंसान बनो, क्योंकि वो इंसान पीछे रह गया है। फिर हफ्ते में 3 दिन चर्चगेट जाते थे ट्रेन में, और ऐसे बहुत लोगों ने मिले लोग, आई सॉ योर फादर टुडे यार एट पेंटर स्टेशन यार, माय फ्रेंड्स यू आर गोइंग ऑन ट्रेन यार,
1: ट्रेन से जा रहे थे क्या बात है।
0: हाँ, एक जर्नलिस्ट मुझे, मैं 2-3 जर्नलिस्ट से मिला रहे, हम बख्शी आपको देखते थे यार
1: ट्रेन में जाते,
0: हाँ, क्यों जाते थे,
1: हाँ।
0: तो मेरे कभी बैठेंगे तो सुनाऊंगा कहानी।
1: अरे बाप रे, ये भी बहुत ही कमाल की कहानी।
0: तो हमें, अगर हमें ताकत चाहिए ना, जो हमारी ताकत जवानी में थे, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा।
1: ये बहुत बारीक,
0: तो स्पिरिचुअल ताकत वापस आएगी।
1: जी, बहुत बारीक बात। वापस जबलपुर चलते हैं, जहां आर्मी सिग्नल कोर में बख्शी साहब की ट्रेनिंग चल रही है, और वहां बख्शी साहब अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं, और आर्मी वालों को ये यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए नहीं बना है।
0: तो क्या हुआ कि उनका सपना जो था वो मोहल्ले वालों ने एनकरेज किया, अरे तू बंबई जा यार, तू बंबई जा यार, यार तू किधर क्या कर रहा है यार, तू गांव में क्या कर रहा है, बंबई जा। तो वो तो एक बचपन का सपना होता ना, लेकिन जब वो आर्मी में अडल्ट हो गए थे, विभाजन हो गया था देश का, मतलब इट वाज अ वेरी सीरियस एटमॉस्फेयर ना, यू हैव लॉस्ट योर हाउस, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव लॉस्ट योर वेल्थ, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट नौकरी, सरकारी नौकरी है बस, और देश के लिए आप काम कर रहे हो, बिकॉज दैट वाज व्हेन यू जॉइन द आर्मी, इट वाज पेट्रियोटिज्म, व्हेन यू जॉइन द नेवी, इट वाज मैं बंबई जाऊंगा, वहां से जंप मार के फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। जो उनका जो बचपन का सपना था उसने रूप लेना शुरू किया। कैसे? उनके जो कलीग्स थे आर्मी में, जो सोल्जर्स होते हैं साथ में आपके काम करते हैं, और जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने इनको एनकरेज किया। और एक तो कैप्टन, उन्होंने तो ऑफिशियल आर्मी के लेटर पे चिट्ठी भी लिखी थी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आनंद प्रकाश बख्शी वैद इज एन एक्सीलेंट राइटर एंड एक्सीलेंट सिंगर एंड ही परफॉर्म्स वेरी गुड स्टेज शोज एंड आई सोनचो कमांडर ऑफिसर कैप्टन रिकमेंड हिम टू एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री टू प्लीज गिव हिम अ वर्क एज अ सॉन्ग राइटर।
1: यानी एक फौजी अफसर ये लिख रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा कलाकार है, इसको सिनेमा में काम दो,
0: में काम दो।
1: वाह वाह,
0: वो है मेरे पास चिट्ठी, है हमारे पास, मेरे पास रेडीनेस, वो संभाल कर रखा है, क्योंकि वो चिट्ठी जाके दिखाते थे बॉम्बे में आके, देखो मेरे ऑफिसर ने मुझे भेजा है, अब यहाँ क्या उसकी कीमत,
1: इंडस्ट्री वालों को थोड़ी पता है
0: क्या कीमत है कैप्टन की।
1: जी, आर्मी में वो परफॉर्म क्या करते थे, बड़े खाने के दिन
0: प्लेस, फिक्शन नॉन फिक्शन, उसमें एक्टिंग भी कर लेते, लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, गाते थे भी, और एक्टिंग भी कर लेते थे, यू वाज द मेन स्टार ऑफ बड़ा खाना शोज।
1: और ये
0: एनुअल इवेंट,
1: इंपॉर्टेंट बात है कि उस जमाने में उन्होंने उस दौर के मशहूर गानों को सुन के उनकी धुन पर गाने लिखना शुरू कर दिए।
0: हाँ, जब आर्मी में थे तो बरसात की एक रात लगी थी
1: जी,
0: उन्होंने उस फिल्म को 29 टाइम्स देखा था, 28-29 टाइम्स। क्यों देखा था? ताकि वो कहानी को घोल के पी जाएं, और फिर उस फिल्म के गाने लिखे थे पूरे।
1: ये उनका रियाज था,
0: ये उनका रियाज था। वीकेंड पे जो छुट्टी मिलती थी ना, तो जाके फिल्म देखते थे सिटी में, वापस आके बैरिक्स में उसी फिल्म के पूरे गाने वापस लिखते थे और सुनाते थे सब। इसीलिए सबने रेकमेंड किया, यार तूने तो यार क्या लिखा यार, ये तो वैसा ही है जैसा हमने फिल्म में देखा था यार, उससे भी अच्छा लिखा तूने यार। तो वो एनकरेजमेंट, पहले ही बार उनका जो सपना था ना वो कॉन्क्रीटाइज हुआ कि मैं यहाँ के लिए नहीं बनाऊ, मैं वहां के लिए बनाऊ।
1: तो उन्होंने आर्मी छोड़ी कैसे, मुंबई आए, साल कौन सा था?
0: 1950 में छोड़ी, जो भी उनकी सैलरी थी उसको जमा किया सेविंग्स मुंबई 1950, और 3 महीने में सारे पैसे खत्म हो गए।
1: मुंबई तो शहर ही निराला है।
0: और वापस आर्मी ने को लिया, 6 साल काम किया आर्मी में, सिग्नल्स नहीं उनको वापस से एक्सेप्ट किया।
1: 1950 में मुंबई आए,
0: तीन महीने में
1: वापस चले गए और वापस आर्मी में
0: हार के। और वो जो टोली ना, उनके सीनियर ने उनको छुट्टियां दी थी, तो देव वेलकम डेम, उनको बल्कि सिंपथी हुई कि यार बेचारा अपना सोना मुंडा वापस आ गया है, तो यार इसको रख लो यार, क्योंकि आपने जो 3 साल काम किया है ना वहां भी तो नाम कमाया, तो उनको नौकरी मिल गई इमीडिएटली। फिर उनकी शादी हो गई, तो
1: और शादी भी लखनऊ में हुई।
0: हाँ, शादी लखनऊ में हुई।
1: ये लड़की कैसे मिली?
0: शादी में एक लड़का मिला उनको, तो बोला यार तू यहाँ क्या कर रहा है, वो रावलपिंडी का था उनकी गली का, तो बोला यार तू इधर क्या कर रहा है, तो बोला मेरी तो शादी है। तेरी शादी है? हाँ। तो तू इधर क्या कर, मेरी बहन की शादी है, तो मेरे मम्मी का भाई था वो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ,
0: क्योंकि वो दोनों में अरेंज मैरिज होती थी।
1: ये रिश्ता किसने जोड़ा था?
0: उनकी एक बुआ थी, शी वाज वो पत्री बनाती थी, जन्म पत्री।
1: अच्छा अच्छा।
0: एस्ट्रोलॉजी, शी वाज एन एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड मेरे पास है, मैंने उसको अभी फाइनली डिस्प्ले किया हॉल में
1: जी,
0: उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी बख्शी साहब के, उनके पिताजी को, बाऊजी को, कि मैंने नंद के, नंद उनका घर का नाम था नंद।
1: हाँ, आनंद से नंद,
0: नंद, नंद इज ऑल्सो नेम फॉर कृष्णा,
1: बिल्कुल
0: कृष्ण भक्त है वो
1: जी।
0: तो नंद के लिए मैंने कुड़ी देखी है लड़की, और वो थोड़ी सावली है, वीटिश कॉम्प्लेक्शन, और थोड़ी भारी है, स्लाइटली प्लम्प, और सबसे कमाल की बात है शी इज अ सीमस्ट्रेस ग्रेजुएशन इन
1: सिलाई कढ़ाई, बहुत अच्छा करती है।
0: हाँ, और सबसे अच्छी, सबसे खास बात है कि वो साइकिल चलाती है।
1: अच्छा, साइकिल चलाना बहुत बड़ी खासियत,
0: बहुत बड़ी बात थी लेडीज के लिए, गर्ल के लिए। लड़की साइकिल चलाए वो, अरे ये तो डेक्कन क्वीन है भाई ये तो।
1: वाह वाह वाह वाह वाह। तो बख्शी साहब देखने गए?
0: नहीं नहीं, कुछ देखने होगा ना क्या, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सर आप, देखने गए
1: सीधे शादी तय,
0: शादी तय। और उनका भाई था, उनको पता नहीं था कि भाई है इसका ये।
1: हाँ, ये देखिए ये कमाल की बात है। और यही बख्शी साहब ने आगे चल के गाना लिखा, लड़की साइकिल वाली,
0: बी आर चोपड़ा की फिल्म थी वो।
1: हाँ।

बख्शी साहब की यादों का सिलसिला इतना विस्तृत है कि सारी बातें एक एपिसोड में शामिल करना मुमकिन नहीं है। अगले हफ्ते राकेश आनंद बख्शी से बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मिलेंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते शाम 4 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो आप अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है महासटैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गद्दी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहला जो गीत है सुनिधि सी, इस एल्बम का गाना सुनिधि चौहान की आवाज में, गीत और संगीत ललित का।

हेमा सरदेसाई की आवाज में ये गीत आपको सुनवाते हैं, समीर के बोल, जवाहर वत्तल का संगीत और एल्बम का नाम सजना।

मिताली सिंह की आवाज में ये गजल आइए सुनते हैं। शब्दकार इब्राहिम अश्क, संगीत भूपिंदर सिंह का, और एल्बम कुछ इंतजार है।

0: कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: ये है हरिहरन की आवाज, शब्दकार ताहिर फराज, संगीत हरिहरन का एल्बम जश्न।

दलेर मेहंदी की आवाज में ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। दलेर मेहंदी का ये संगीत है और गीत है दलेर मेहंदी और संजीव आनंद का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब मधुश्री की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना, राजेश रोशन का संगीत एल्बम मोक्ष।

अगली जो आवाजें हैं जगजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजें हैं, बोल निदा फाजली के, जगजीत सिंह का संगीत और एल्बम किसका चेहरा।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं पामेला जैन की आवाज में मनोज दर्पण का लिखा हुआ ये गाना, बबली का संगीत, एल्बम मेरा घूंघटा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में एनएचपीसी की तीस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुई दुखद दुर्घटना में जान मान की हानि पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स, सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है। इस बैठक से अलग डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता पूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मुकेश के गाए कुछ दो गाने। वीर दुर्गादास फिल्म का गाना सबसे पहले आपको सुनवाते हैं भरत व्यास के बोल एस एन त्रिपाठी का संगीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम उजाला।

0: चक्कर वो जा रहे हैं देखो दो प्यार करने वाले दुनिया वालों से दूर चलने वाले।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने आप सुनेंगे एक ब्रेक के बाद।

हम हाजिर हैं यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गानों को सुनवाने के लिए। तीसरा कौन इस फिल्म का गाना बोल है आनंद बख्शी के संगीतकार राहुल देव बर्मन। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के गाए युगल गीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: लीजिए अब सुनिए शोर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के गाए कुछ युगल गाने। पूनम की रात इस फिल्म का गाना, शैलेंद्र का लिखा हुआ, सलील चौधरी का संगीत।

आज के यादों की महफिल इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना राज फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उपलब्धि, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition protests over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on the feet protesting on the paper leak issue. Speaker Om Birla urged the opposition to cooperate for smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. He stated that the government is ready for discussion since day one. The minister said any discussion in the House must be conducted under established rules and requires proper arrangements. He requested floor leaders of all parties for the duration and the rule under which the discussion will be held. Mr. Rijiju emphasized that the government wants a meaningful and constructive discussion involving all sides, keeping in mind the future of the youth of the country. K.C. Venugopal of the Congress and Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party raised the issue of student protests. Speaker Om Birla said the government is ready for discussion on the issue and everyone must come together for the timing of the discussion. As the pandemonium continued, Mr. Birla adjourned the House till 2 p.m. The same scene was also witnessed in the Rajya Sabha. The Indian Navy inducted the second anti-submarine warfare shallow water craft of the Mahe class INS Malvan at Karwar in Karnataka today. This is a significant achievement in India's indigenous warship building. Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Air Staff, was the chief guest at the ceremony. Speaking on this occasion, Air Chief Marshal A.P. Singh appreciated the Navy for its efforts towards Atmanirbhar Bharat and said that the INS Malvan will play a crucial role in maritime security of the country's coastal region. INS Malvan anti-submarine watercraft built by Cochin Shipyard under Atmanirbhar Bharat mission uses more than 80% indigenous equipment and technology.
1: As far as naval shipbuilding is concerned, India has always had an edge, and we had carried our legacy forward in making ships. So very good progress has been made in our Atmanirbharta as far as shipbuilding is concerned. I just hope that, you know, other two services, especially Indian Air Force, learns the lesson as to how Indian Navy has been able to, you know, get this whole concept right, where you have your Indian Navy officers who are embedded in your shipbuilding right from the beginning.
0: In Sikkim, search and rescue operation is on for the third day today to evacuate people trapped inside the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project at Samardung in Namchi district. Official sources said that 12 bodies have been recovered so far and 13 persons are believed to be trapped inside the ill-fated tunnel. Governor Om Prakash Mathur and Chief Minister Prem Singh Tamang Gole visited the accident site yesterday. Chief Minister announced to set up a high-level inquiry to find out the causes of the incident. Mr. Gole further said that the incident might have happened due to the explosion of methane gas and not because of landslides. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 16 metro stations have been closed till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakamba Road, Supreme Court, Seva Tirth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprasth, Khan Market, Jorbagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today participated in the Quad Foreign Ministers meeting at Manila in Philippines. In a joint statement, India, Japan, Australia and United States reaffirmed the commitment to strengthen a free and open Indo-Pacific and unwavering support for ASEAN unity and centrality. During the meeting, they focused on regional challenges and opportunities to support the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. Key discussion areas include maritime and transnational security, economic prosperity, critical and emerging technologies, and emergency response. They are united in the conviction that peace and stability in the Indo-Pacific maritime domain underpin the security and prosperity of the region. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी विवाद के दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। कहा, राज्य की शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाए जाएंगे कठोर कदम। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ता सड़क पर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की सीबीआई जांच की मांग। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स में डिजिटल मैमोग्राफी, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर और ओरल सर्जरी यूनिट का किया उद्घाटन। नव नियुक्त चिकित्सकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। झारखंड में पहले फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आज जेएफडीसीएल और कोलकाता के सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट के बीच अब से थोड़ी देर बाद होगा एमओयू। और रांची में 135वें डुरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मुफ्त प्रवेश पत्रों का वितरण आज से शुरू। जिला प्रशासन और नगर निगम ने सुरक्षा व नागरिक सुविधाओं का विशेष खाका किया तैयार। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा विवाद में सीआईडी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था को प्रभावी बनाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
3: न्याय सिर्फ सुनाना नहीं होता है, न्याय करते दिखना भी। क्योंकि ये सिस्टम में कुछ एक्टिविटीज हैं जहां छुपे छुपे लोग हैं, बरसों से जगह जगह पर बैठ करके गलत गतिविधियों में चल रही, क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही है। और इसी दौरान हमें बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके उनके चीजों को भी आगे बढ़ाना है।
2: झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आज भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। इस कड़ी में आज भाजयुमो कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। थोड़ी ही देर में वे जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। इस प्रदर्शन को देखते हुए जेपीएससी कार्यालय के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग मामले में रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने चेयरमैन के इस्तीफे और 8 लोगों को हिरासत के आयोग में गड़बड़ी का स्पष्ट संकेत बताया। श्री सेठ ने सीआईडी जांच को नाकाफी बताते हुए युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए इस पूरे प्रकरण की सीआईबी जांच कराने की मांग की है। रांची स्थित रिम्स में आज मरीजों की सुविधा के लिए कई अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अस्पताल में डिजिटल मैमोग्राफी मशीन, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर और ओरल सर्जरी यूनिट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मरीजों को लंबी कतारों से राहत देने के लिए ऑनलाइन ई सुश्रुत पेमेंट गेटवे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा भी शुरू की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे और राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। देहदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की पैदल यात्रा पर निकले जयपुर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता चंद्रकांत चौहान कोडरमा पहुंचे। 27 अप्रैल को जयपुर से शुरू हुई इस 11,000 किलोमीटर की यात्रा का उद्देश्य लोगों को अंगदान और देहदान के महत्व को समझाना है। चंद्रकांत चौहान ने स्वयं भी देहदान का संकल्प लिया है ताकि चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थियों को शोध में मदद मिल सके।
4: कोई आदमी डेथ हो जाती है, उसके बाद हम उसकी बॉडी को डिस्पोज करते हैं, कोई उसको दफन करता है, कोई जलाता है, कोई अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रक्रिया अपना रखी है। मैं ये मुहिम चला रहा हूँ, ये किसी धर्म से प्रेरित नहीं है। आफ्टर डेथ आप किसी भी एनाटॉमी डिपार्टमेंट से संपर्क करके उसमें बॉडी को डोनेट कर सकते हैं, तो किसी जरूरतमंद के काम आ जाए।
2: रांची में 1 सितंबर 2026 से शुरू होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सुरक्षा, चिकित्सा और अभ्यर्थियों के लिए वाटरप्रूफ शेल्टर सहित सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आईआईटी आईएसएम धनबाद में आज से सेल बोकारो के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। डेटा एनालिटिक्स फॉर प्रोजेक्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक अनीमा कुशवाहा ने किया। इसमें करीब 30 वरिष्ठ अधिकारी आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की बारीकियां सीख रहे हैं। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में सिनेमाई कौशल को बढ़ावा देने के लिए अब से थोड़ी ही देर बाद झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में होने वाले इस समझौते से राज्य के पहले फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। खूंटी पुलिस ने मुरहू थाना क्षेत्र के पेलोल पुल के पास एक 18 चक्का ट्रक ट्रेलर से 18 किलो 400 ग्राम अवैध पीसा हुआ डोडा बरामद किया। गुप्त सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में ट्रेलर के मालिक सहचालक बूटा सिंह और खलासी शिवो मुंडा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच तेज कर दी है। उधर छतरा पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7.4 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। SDPO शुभम नागर गोजे ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
5: अब हमारे दल के द्वारा दो लोगों को रोकी, उनसे तलाशी ली गई तो उनके पास ब्राउन शुगर बरामद हुआ। 7.4 ग्राम ब्राउन शुगर मिला और एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन और उनका जो पल्सर कंपनी का जो मोटरसाइकिल था वो जब्त कर लिया है।
2: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 556 अंक गिरकर 76,914 जबकि निफ्टी 148 अंक फिसलकर 24,040 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,32,000 रुपये प्रति किलो है। राजधानी रांची में पहली बार आयोजित होने जा रहे प्रतिष्ठित 135वें डुरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी कड़ी में मैचों को देखने के लिए मुफ्त प्रवेश पत्रों का वितरण आज से शहर के विभिन्न काउंटरों पर शुरू हो गया है। रांची में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित डुरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खेल प्रेमियों के उत्साह को देखते हुए स्टेडियम की सुरक्षा, खिलाड़ियों के ठहरने, यातायात प्रबंधन और शहर की साफ सफाई के लिए विशेष खाका तैयार किया गया है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि डुरंट कप के सफल आयोजन के लिए स्वच्छ वातावरण, पेयजल और नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है।
6: साफ सफाई को लेकर तो ऑब्वियस है, जो लोग कर सकते हैं फॉगिंग वगैरह करें जो कि सामने अगर मैच है तो ऐसा नहीं हो कि खराब एक्सपीरियंस हो। बाकी अन्य विंग्स जो हैं जैसे खेल विभाग है, जिला प्रशासन है, उससे भी समन्वय स्थापित करके जो कार्य करना है वो करेगी। यहाँ पे लाइट वगैरह लगाने की पूरी व्यवस्था हो सकता है वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य जो भी सप्लीमेंट्री मदद जिला प्रशासन या खेल विभाग के द्वारा जो मांगा जा रहा है वो भी हम लोग अति शीघ्र उपलब्ध कराते जा रहे हैं।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC विवाद के दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। कहा, राज्य की शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाए जाएंगे कठोर कदम। 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ता सड़क पर, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की CBI जांच की मांग। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स में डिजिटल मैमोग्राफी, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर और ओरल सर्जरी यूनिट का किया उद्घाटन। नव नियुक्त चिकित्सकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। झारखंड में पहले फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आज JFDCL और कोलकाता के सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट के बीच अब से थोड़ी देर बाद होगा MOU। और रांची में 135वें डुरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मुफ्त प्रवेश पत्रों का वितरण आज से शुरू। जिला प्रशासन और नगर निगम ने सुरक्षा व नागरिक सुविधाओं का विशेष खाका किया तैयार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। इसमें आज आप सुनेंगे खमाज में ठुमरी सिद्धेश्वरी देवी से।

देवर फिल्म का ये गाना, इस गाने को संगीतबद्ध किया रोशन ने। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि जब हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए, हमारी तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई। तब सहारा दिया हमारे कई अपनों ने, जिसमें सबसे ऊपर नाम हमारे पापा का है, उसके बाद बच्चे और कुछ प्यारे से दोस्त। सबसे ज़्यादा सहारा मिला विविध भारती का, जिसके साथ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय बीता और गीत जो शुरू से शामिल थे हमारी जिंदगी में। एक हमारे जो साथी हैं वो ये बात लिख रहे हैं कि मुकेश की आवाज़ का जादू बयां करते हुए कुछ प्रशंसक पंक्तियां लिख रहा हूं। दर्द में डूबी वो आवाज़ जो रूह को छू जाए, मुकेश के गीतों में सारा जहां समा जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए कि धुन हर दिल को सुकून और गहराई दे जाए। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल ने पुकारा, इस फिल्म का गाना, इन देवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मैं कभी मुकेश जी के गाने पहले सुनता नहीं था, लेकिन जब गाने सुने तो पता चला कि इन लोगों को या इन गानों को लेजेंड क्यों कहते हैं। इन लोगों के गाए गाने सीधे दिल की गहराई में उतरते हैं। और एक गाना जो हमने देवर फिल्म का सुनवाया था, बहारों ने मेरा चमन लूट के, तो एक साथी हमारी ये लिख रहे हैं कि वाह क्या बोल है, किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती का नाम क्यों दे दिया, अप्रतिम गाना है। और इसी गाने के बारे में हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि देवर फिल्म की कहानी का टर्निंग पॉइंट है ये इंसानी रिश्तों की मजबूरी, किस्मत के क्रूर खेल और निस्वार्थ प्रेम के बदले मिले धोखे को दर्शाता है। ये गाना सिखाता है कि जब इंसान के पास अपनी बेबसी जाहिर करने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वो संगीत का सहारा लेता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुकेश जी 1972 में हमारे शहर कटक में आए थे, बाराबाती स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, नितिन मुकेश छोटे थे वो भी आए थे और गाना बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं ये गाना उन्होंने गाया था और ये बातें इन्हें याद आ रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी की आवाज यानी सादगी सच्चाई और दर्द का ऐसा संगम जो सीधे रूह को छू जाए। उन्हें विरह के गीतों का बेताज बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता, बिना किसी शास्त्रीय तामझाम के भी उनकी गायकी सीधे दिल में उतर जाती है। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं छोटी बहन फिल्म का गाना। मुकेश की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कौन से कलाकार पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है।

0: मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न।

0: भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म।
1: शेखर, मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
2: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

0: तुझे न कोई मंजिल, जाऊं कहां बताए दिल।
1: रहमान पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि मुकेश की गायकी कोई दिखावा या बनावटीपन नहीं था, उनके हर गीत में शब्दों का उच्चारण इतना साफ और संजीदा होता था कि हर शेर एक कविता की तरह कानों में रस घोलता था। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि इन गीतों को सुनते सुनते बड़े हुए हैं, एकदम अंदर तक धसे हुए हैं दिल में ये सारे गाने। हम लोग के घर में लॉन्ग प्लेयर था, रिकॉर्ड, मुकेश जी का हर तरह के गाने का कलेक्शन हुआ।

हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ है। आपने सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी की राह में कभी ठोकरें मिलती है, कभी बहारें, कभी दोस्त साथ छोड़ जाते हैं, तो कभी वक्त वफा करना भूल जाता है। ऐसे में कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं, रूह तक पहुंचती है। वे हमारे दर्द को शब्द देती है, हमारी यादों को सहलाती है और अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाती है। ऐसी ही ये आवाजें। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में पार्श्व गायक मुकेश चंद्र माथुर जी एक ऐसी आवाज का नाम है जो सीधे दिल में उतर जाती है। द वॉइस ऑफ द मिलेनियम और द मैन विद द गोल्डन वॉइस कहे जाने वाले मुकेश जी की आवाज में जो दर्द, सादगी और एक अनूठी कसक थी, मुकेश जी की गायकी की सबसे बड़ी खासियत उनकी आवाज का ठहराव और उर्दू की बेहतरीन अदायगी थी। मुकेश जी अपने गीतों में जीवन के दर्शन, प्यार की तड़प और आशावादी दृष्टिकोण को बहुत खूबसूरती से उन्होंने पिरोया था। चलिए, संजोग फिल्म का गाना, संगीत किसका है यह आपको बताना है। दो कलाकार हैं, प्रदीप कुमार और शुभा खोटे, उन पर फिल्माया गया यह गाना है।

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी की आवाज़ की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो केवल एक गीत नहीं गाते थे बल्कि सुनने वाले के दिल का बोझ हल्का कर देते थे। जब वे गाते हैं चांदनी आई घर जलाने तो ऐसा लगता है मानो जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें भी उस वक्त इंसान को तकलीफ दे रही है। ये आवाज़ हर अकेले और उदास इंसान को ये तसल्ली देती है कि इस दर्द में वो अकेला नहीं है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको आपको मिल ना सके सुबह के उजालों में। कुछ आवाज़ ऐसी रूहानी होती है ढूंढने से नहीं मिलती, गानों के माध्यम से कानों से होकर सीधे हमारे दिल में उतर जाती है वो आवाज़ मुकेश की। एक साथी हमारी लिख रही कि क्या आवाज़ थी वो, जब गम के साए घेरते तो चुपके से कहीं दूर रेडियो से झड़ती वो आवाज़ हमें अपने आगोश में ले लेती और हम कुछ देर के लिए गम भूल जाते और सब जब सुख के फूल बिखरते हैं तो ये आवाज़ हमें अपने साथ झूला झुलाती। न जाने कितनी उपमाओं से सजी थी मुकेश जी की आवाज़, जितना लिखूं कम है। आकाश में जितने तारे हैं, नदी में जितना पानी है, वैसे ही गायकी की दुनिया में मुकेश की उपस्थिति दर्ज है। सदियां बीत जाएंगी मगर मुकेश जी की आवाज़ का जादू कम न होगा। चलिए अनीता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

मनोज कुमार और साधना पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात है कि आज की इबारत मानव जीवन के सबसे गहरे दर्शन, संघर्ष और संगीत के रूहानी असर का एक अत्यंत भावुक और जीवंत चित्रण है। ये सच है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हर ठोकर के बाद संभलना ही जीवन है। जब इंसान तन्हाई, छल और वक्त की बेवफाई से टूट जाता है, तब शब्द और तर्क काम करना बंद कर देते हैं। उस वक्त केवल संगीत और एक रूहानी आवाज ही दिल को तसल्ली दे पाती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बंदिनी फिल्म का गाना, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, नूतन पर फिल्माया गया। संगीत किसका है आपको बताना है।

दिल को सीधे लगती है मुकेश जी की आवाज, बिल्कुल सीधी सादी सादगी सच्चाई भरी आवाज। कौन भला न होगा जो मुकेश जी की आवाज पर मोहित ना हो। एक साथी लिख रहे हैं कि हर इंसान की असली पहचान उसके जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौती भरे समय उसके जीवन का हिस्सा होती है, कोई भी इससे अछूता नहीं रहता। विपरीत परिस्थितियों में भी असली पहचान व्यक्ति के धैर्य और संयम से होती है, इसमें सफलता मिले या असफलता उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है, समय कम है, चलिए एक गाना आपको सुनवाते हैं। बंबई का बाबू इस फिल्म का ये गाना है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन है ये आपको बताना है।

0: की सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते।
1: अब हमें भी चलना होगा, समय जो है हमें अब इजाजत नहीं दे रहा है कि कुछ और बातें की जाए या और गाने सुनवाए जाए। ये जो गाना आपने सुना, इस फिल्म के मुख्य कलाकार देव आनंद और सुचित्रा सेन हैं, और आपने बहुत प्यारी बातें फेसबुक पर लिख करके भेजी, इसके लिए धन्यवाद। और अब मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
4: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कदंबा नौसेना बेस पर माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
5: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने आईएएसवी त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार, क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
6: In this era of volatility and disruption,
7: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
6: इवन वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस,

बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के

0: डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
1: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार 4th दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा।

तू नहीं और सही। इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों में, गीतकार असद भोपाली, संगीतकार रवि।

परख फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविध भारती से, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब आपको सुनवाते हैं मियां बीवी राजी, इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, एसडी बर्मन का संगीत।

अगला गीत सुनते हैं रंगीला राजा फिल्म का गाना तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, असद भोपाली के बोल, संगीत शिवराम का।

रंगीला राजा फिल्म का ये गाना आपने सुना, तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, असद भोपाली के बोल और संगीत शिवराम का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला जो गीत है, जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

किया, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी।

0: उबड़ गई और दिल की बेताबी बेताबी
1: को अनुमंडल को जिला घोषित करें।
2: राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को गति देने के लिए आज सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ तथा बीएलओ टू की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसआईआर को समावेशी बनाने पर चर्चा हुई। रांची के बूथों पर भी चुनाव पाठशाला और बैठक के दौरान एसआईआर से जुड़े विषयों पर विमर्श हुआ। इस दौरान उपस्थित बीएलओ और अन्य पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों ने एसआईआर की प्रक्रिया में सभी से भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। राजनीतिक दल भी राज्य में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सजग हैं, ताकि कोई पात्र मतदाता इससे वंचित न रहे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने आज रांची के विभिन्न बूथों का दौरा कर एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से अनुपस्थित, स्थान परिवर्तित, मृत और दोहरे नामों की सूची से संबंधित कार्यों का जमीनी स्तर पर जायजा लिया। मौके पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री राजू ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण के इस बड़े अभियान से वोटरों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। यह युद्धपोत मुख्य रूप से कम गहरे पानी में पनडुब्बियों की टोह लेने, निगरानी करने और दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। युद्धपोत में 80% से अधिक उपकरण और तकनीक स्वदेशी हैं। रांची के सेल अंतर्गत एमटीआई बिल्डिंग में आज से 2 दिवसीय मानव संसाधन कॉन्क्लेव शुरू हुआ। इस सम्मेलन में देश भर की नवरत्न कंपनियों के एचआर हेड और अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादन में वृद्धि जैसे विषयों पर चर्चा का दौर जारी है। रामगढ़ व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रामगढ़ एसडीपीओ आलोक रंजन ने बताया कि न्यायालय परिसर की जांच की जा रही है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
3: आज में यह पाया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जिसे अन्य व्यक्ति के नाम से सूचना दिया गया था, वो किसी युद्ध भावना से प्रेरित था। वो हालांकि हम लोगों के द्वारा सतर्कता बरतते हुए आज सभी जितने भी एसओपी फॉलो करते हैं, हम लोगों के द्वारा सभी परिसर को पूरे तरीके से सैनिटाइज किया गया है। लगातार यहाँ पेट्रोलिंग भी है और एक्स्ट्रा फोर्सेज भी यहाँ पर तैनात है।
2: राज्य के कई जिलों में 26 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कल भी कई इलाकों में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। भारी बारिश का यह सिलसिला 26 जुलाई तक रह सकता है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में सर्वाधिक 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्म भूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
0: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहाँ
3: करी है। हाँ। या फिर आप अपने अच्छी तरीके से अपने बजट के हिसाब से चलते हैं।
4: हाँ, तो ये आप हमें बता सकते हैं और हमारा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com, तो वहां जाकर के आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इसके बारे में। और व्यंजन की भी आज बात करेंगे। देखिए, आज फिटनेस की बहुत सारी बात हो रही है, तो ज्वार के व्यंजन। अब ज्वार भी एक ऐसा अनाज है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उससे बनने वाले जो व्यंजन है आपके जिस जगह पर, देखिए हमारा जो देश है विविधता से भरा हुआ देश है, हर राज्य में अलग अलग तरह एक ही चीज से अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। तो आप जहां पर रहते हैं आपके एरिया में आपके घर में ज्वार से किस तरह के और क्या व्यंजन बनाए जाते हैं उसके बारे में आप हमें बता
3: बिल्कुल क्योंकि जो फिटनेस का ध्यान रखते हैं वो अधिकतर ये ज्वार ही खाते हैं। तो आप बताइए आप किस तरीके से आप इसको ज्वार को बनाते हैं।
4: हाँ, रोटी तो बनती ही है, ये तो पारंपरिक तौर पर बहुत वर्षों से हम देखते आए हैं हमारी दादी नानी के जमाने से कि ज्वार के आटे से रोटी बनाई जाती है और विभिन्न तरह की उसके साथ दालें सब्जियां उसके साथ खाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी और कोई व्यंजन अगर बनाए जाते हैं तो उनके बारे में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। और जब फिटनेस की बात आती है तो फिटनेस तो तभी आती है जब हमारा मन चंगा हो, दिल बहुत स्वस्थ हो, दिमाग बहुत स्वस्थ हो, और उसका एक बहुत ही अच्छा साधन है और
3: गीत, संगीत।
4: चलिए सुनते हैं गीत।

0: आरती, देखो पहली फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया, हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाजें, और इसमें भी बारिश से संबंधित बातें थी, लेकिन बड़ी खुशी वाली बातें थी। लेकिन ये खुशी तभी बरकरार रह सकती जब हम अपने फिटनेस का ध्यान रखें, और खास तौर पर जब बारिश बहुत हो रही हो, मानसून का सीजन हो, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है, तभी इनका आनंद ले सकते हैं।
1: तो चलो फिटनेस के ऊपर हम और कुछ बताने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, एक लेखिका है ज्योति जैन उनका नाम है, और वैसे तो वो लेखिका है, उन्होंने अपने लेखन के बारे में भी हमें बताया है, उनकी पुस्तकों के बारे में भी बताया है, लेकिन आज इस अंक में वो फिटनेस की बातें करने जा रही हैं। तो सुनते हैं उनकी ये बातें, और आने वाले अंकों में हम उनके लेखन के बारे में भी जानेंगे।
1: बिल्कुल, और ममता जी ने इनका इंटरव्यू लिया है, इनसे बातचीत करिए, तो सुनते हैं।
0: बिल्कुल
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और विविध भारती के स्टूडियो में साहित्यकार ज्योति जैन जी आई हैं। आपका हम सखी सहेली की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं। ज्योति जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत।
0: नमस्कार ममता जी, और सचमुच सखी सहेली में आकर के मुझे बस सखी वाली ही फीलिंग आ रही है, तो आपका बहुत सारा धन्यवाद।
2: सखी सहेली आप सुनती रही है लगातार?
0: जी, जी बिल्कुल।
2: तो आपको कैसा लगता है?
0: ऐसा लगता है कि देखिए, हम अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे सखी सहेली कार्यक्रम, उसके विज्ञापन भी सुनते थे कि सखी सहेली कार्यक्रम सुनने के लिए पुरुष वर्ग भी किस तरह से वो समय सखा भी सुनते हैं, तो अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे उसमें खुद आकर के तो एक अद्भुत अनुभूति हो रही है कि अरे वाह, मैं खुद भी एक सखी बन गई हूँ यहाँ आकर।
2: जी, हम सखियों को बता दें कि ज्योति जी के पास बहुत सारे हुनर हैं, और एक ऐसा हुनर है जो आप सबके लिए प्रेरणा की बात है। इन्होंने अपने फिटनेस के लिए बहुत कुछ किया है, डाइट से लेकर जिम जाती हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि बताइए सखियों को अपने फिटनेस के लिए क्या कुछ करना चाहिए।
0: सबसे पहले तो मैं सभी सखियों से ये कहना चाहूंगी कि स्वयं को कमतर न आके, क्योंकि आपकी जो देखभाल वाली लिस्ट है उसमें आपका नाम सबसे आखिरी में होता है।
2: बिल्कुल,
0: और ये चीज बिल्कुल गलत है, ये आप अपने साथ न्याय नहीं कर रही है, क्योंकि आप परिवार में हर सदस्य का ध्यान रखती हैं। आपको पता होता है आपकी सास को क्या पसंद है, ससुर जी को क्या पसंद है, या माता पिता हैं तो उनको क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, हर एक का ध्यान रखती है और उसके अनुसार आप व्यंजन बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने लिए सलाद काटा,
2: अपने अकेले के लिए कभी खाना बनाया?
0: नहीं, अमूमन नहीं होता।
2: बिल्कुल,
0: तो ये पहले तो यहां से शुरू हो जाए कि आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना है। आपने जिम की बात कही है, तो ममता जी मैं इसको यहां से शुरू करती हूं कि लगभग 13-14 साल पूर्व मुझे अस्थमा था, और पुराने लोग यह कहते पाए जाते हैं कि दमा जो है वो दम के साथ जाता है। अस्थमा यानी दमा, सांस की बीमारी, तो कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। मैंने भी सुना ये कि, तो मुझे एक मन में चीज लगी कि अरे ये मुझे बहुत ही गंभीर बीमारी है
2: जी,
0: और मुझे इससे अब बचना है। यहां तक कि मैं स्टेराइड्स पर थी
2: जी,
0: तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं चूंकि खिलाड़ी रही हूँ, एनसीसी की कैडेट रही हूँ,
2: बैडमिंटन खिलाड़ी
0: रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने फिजिकल जो फिटनेस है वो आपको बहुत सारी चीजों से बचाती है
2: जी।
0: तो उस वक्त जब मैंने जिम ज्वाइन किया, और धीरे धीरे देखिए अभी क्या होता है, मैं कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे डेडलिफ्ट है 40 किलो का, या बेंच प्रेस है 25 किलो का डंबल का, तो उनको लगता है कि बड़ा अच्छा है ये तो। लेकिन कैसे होता है कि आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। आप एकदम से आप 50 किलो का या 40 किलो का या 25 किलो का डंबल नहीं उठा सकते हो। तो जब मैंने इसकी शुरुआत की तब मैंने 2.5 किलो के डंबल से शुरू किया, 5 किलो से शुरू किया। तो जब जब मैंने जिम जाना शुरू किया, जब मुझे लगा कि नहीं सेहत के प्रति हमको जागरूकता चाहिए, तो मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मैं स्ट्रांग होती जा रही हूँ। तो जब आप भीतर से भी स्ट्रांग होते हैं तो आपको बीमारियां फिर थोड़ी सी आपसे दूर भागती हैं, बीमारियां आपसे डरने लगती हैं। ये मैंने जिम शुरू किया, और जब सिक्किम में हम गए पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहां से आकर के मैंने जितनी स्टेरॉइड्स थी वो पैक की हुई थी, वो मैंने घर आके डस्टबिन में डाल दी। मुझे उसके बाद स्टेरॉइड्स नहीं लेना पड़ी। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपका शरीर मजबूत होता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो बीमारियों पर आप इस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं।
2: जी
0: और तब मैंने एक कहानी लिखी फतेह, इसी
2: जी
0: थीम को
2: जी
0: लेकर के तब मैंने कहानी लिखी। दूसरी चीज ये हो गई है कि डाइट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जल्दी छोटी उम्र से शुरू कर दें, ना महिलाएं अगर 30 बरस से भी शुरू कर दें तो भी बहुत अच्छा है, और बड़ी उम्र से शुरू करें तो भी, बोलते हैं ना कि अभी समय नहीं बीता है, जब जागे तभी सवेरा। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए।
2: जी
0: प्रोटीन यानी, और मैं ये नहीं कहती कि प्रोटीन पाउडर लीजिए, मैंने कभी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया,
2: बिल्कुल
0: लेकिन पनीर है, स्प्राउट से, मूंग मोठ, चना चवला तो महिलाएं अपने किचन में रोज गलाएं खाएं, और छाछ लें, सत्तू लें। सत्तू तो आदिकाल से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, हाई प्रोटीन है उसमें। तो अपने डाइट का अपने को ध्यान रखना चाहिए।
2: जी
0: मैं ये भी नहीं कहती कि आप कचौरी समोसे ना खाओ, सैंडविच ना खाओ, खाएं कभी कभी, लेकिन आपके पेट में क्या जा रहा है उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
2: तो ये तो डाइट की बात हो गई, और हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आप बहुत बड़ा डंबल उठा के और झुकी हुई हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं, और एक में देखा कि आप टायर उठा उठा के फेंक रही हैं। तो ये कितने समय बाद ये शक्ति आपके भीतर पैदा हुई?
0: मेरा ख्याल से डेडलिफ्ट तो मैंने थोड़े टाइम बाद शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो 20 केजी का बार होता है, 20 किलो का बार। तो पहले खाली बार से शुरू किया, फिर उसमें 5-5 किलो के चक्के डाले, पहिए जैसे होते हैं वो डाले, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया।
2: ओ
0: तो वही

0: कि आप एक झटके से नहीं कर सकते। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जिम जाते हैं तो वहाँ हर जिम में, या तो आप कुछ ऐसा स्तरीय जिम ढूंढें, जिम में ट्रेनर जो होते हैं वहाँ, जो भी हैं जो आपको अटेंड करते हैं, वो पहले पूछते हैं आपकी कोई सर्जरी हुई है, आप उसको सब सच सच बताइए,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना। फिर वो पूछते हैं आपकी कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, वो आप बताइए, आपको बैक पेन तो नहीं है वो बताइए, नी पेन तो नहीं है वो बताइए। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे एक घुटने में मेरे बहुत सालों पहले पस हो गया था और उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई और करीब 2.5 महीने तक वो प्लास्टर रहा। तब मैं घुटना नहीं मोड़ पाती थी, मुझे नीचे बैठना मना था क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती थी। लेकिन फिर जब जिम शुरू किया तो स्क्वाट्स लगाए तो मैं नहीं लगा पाती थी, लेकिन ट्रेनर के देखरेख में धीरे धीरे स्क्वाट्स लगाना शुरू किया और आज मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो कोई भी चीज को आप निरंतर अभ्यास से करेंगे और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जिस जगह में हूं आप भी उस जगह पर आ सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लेखक को तो हाथ की तकलीफ अमूमन हो जाती है
0: होती है,
1: क्योंकि वो नियमित रूप से
0: गर्दन की
1: कल
0: होती है,
1: हाँ
0: गर्दन की
1: गर्दन की
0: होती
1: हाथ
0: है।
1: की
0: तो मैं भी जब लिखती हूँ, मैं अभी भी कागज कलम पे लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं अभी कंप्यूटर युग में है पर मैं कंप्यूटर वाली अभी भी नहीं हूँ, मुझे लिखने के लिए कागज और कलम ही चाहिए। तो मैं लिखती हूँ, कई बार लंबा भी लिखना पड़ता है, लेकिन बीच में आप थोड़ा सा गर्दन को चारों तरफ घुमा लीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। जब आप अभ्यास में, आप शारीरिक रूप से आप मजबूत हैं तो फिर ये छोटी मोटी चीजें आपको परेशान नहीं करती हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और अब चलते चलते हम हमारी तमाम सखियों को बताइए कि आपने तो अपनी जिंदगी के साथ बहुत सारे समझौते किए, समझौता कहें या अपनी चॉइस पर, अपनी शर्त पर आपने छोड़ी, कैजुअल अनाउंसर रही, फिर आकाशवाणी में अनाउंसर बनी, वो आपने छोड़ा परिवार के लिए, अपने प्रेम के तहत, और पायलट बनते बनते रह गई, रिटर्न में आप क्वालिफाई की। लेकिन सखियों से आप क्या कहेंगी कि आज के जमाने में उन्हें क्या करना चाहिए?
0: देखिए, जमाना बदला है ना। इस बदलाव को सभी लोगों ने स्वीकार किया है।
1: जी
0: एक जमाना था जब मैंने ये चीजें छोड़ी, लेकिन आज मैं मीडिया के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ। और जमाना बदला है तो, और अब चीजें भी बदली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल लड़कियों को ये सब कुछ छोड़ के और करना पड़ता है। आजकल की जो बच्चियां हैं वो दोहरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, और मुझे लगता है कि अपने सपनों को जीवित रखें, उनको जीवित रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी के प्रति जो अपना नजरिया है वो सकारात्मक रखें तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: मैं यहाँ एक चीज और कहूंगी कि
1: हाँ
0: हक तो है ही। देखिए, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो वहां कर्तव्य भी जुड़े होते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो कर्तव्यों के साथ अपने अधिकार को प्राप्त करें,
1: जी
0: इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
1: जी और इस समय बहुत बेहतर होगा कि एक गाना हम सुनवा दें अपनी सखियों को, कौन सा गाना?
0: मैं ना खूब मस्ती खोर हूं, मैं खुल के जीती हूँ, खुल के नाचती हूँ जब मौका मिलता
1: जी
0: है।
1: जी
0: मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है, मैंने विधिवत नहीं सीखा है पर जहाँ म्यूजिक होता है मेरे पैर अपने आप उठ जाते हैं।
1: थिरकने लगते
0: तो
1: हैं।
0: मुझे ना एक कॉलेज में मुझे एक टाइटल मिला था मेरे आचरण को देखते हुए, तो हम वही गाना सुनते हैं और वो टाइटल था जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने
1: किसने
0: जाना,
1: जाना, सुनते
0: तो
1: हैं।
0: बस यही गाना सुनते हैं।

0: ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: आपका विविध भारती के स्टूडियो में आई और सखियों सहेलियों से इतनी उम्दा जानकारी वाली
1: जी
0: बातें की और इतनी इतनी प्रेरक बातें आपने साझा
1: जी
0: की।
1: जी बहुत
0: शुक्रिया
1: धन्यवाद ममता जी, आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ हो।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्कार। तो आरती देखो, हमारी जो सखी ज्योति जैन है उनकी ममता सिंह से जो बातचीत हुई वो हमने सुनी और उन्होंने भी फिटनेस के बारे में काफ़ी कुछ बातें हमें बताई।
0: जी
1: और देखिए, हंसना, खिलखिलाना, नृत्य करना, गीत सुनना, ये भी फिटनेस के
0: बिल्कुल, ये
1: कुछ
0: भी फिटनेस
1: राज।
0: में ही आता है।
1: तो ये उन्होंने हमें
0: जी
1: बताया। चलिए अब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो उसे वो सबसे आखिर में रख देती हैं। जबकि सच ये होता है कि यदि महिला स्वस्थ और फिट होगी तभी परिवार की भी खुशहाल और स्वस्थ रहेगा
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: और फिटनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पतले दिखें। पतले दिखना ही फिटनेस नहीं होता है। फिटनेस का अर्थ होता है शरीर का स्वस्थ होना, मन का प्रसन्न होना और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना। और महिलाओं के लिए रोजाना 30 से लेकर 45 मिनट की जो शारीरिक गतिविधि होती है वो बहुत लाभदायक होती है
1: हाँ,
0: उसमें।
1: और बहुत सारी महिलाएं ये सोचती कि हम घर का काम करते हैं ना तो उससे तो हमारे शरीर की हलचल हो जाती है, तो अब हमें और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसके जो पोस्चर होते हैं
0: बिल्कुल।
1: वो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर की बनावट के लिए वो काफी उपयोगी होते हैं। तो काम अपनी जगह बहुत अच्छी बात है कि
0: जी
1: करना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए हम थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़े आसन करें तो
0: बिल्कुल,
1: वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं।
0: क्योंकि इतने काम के बीच में अगर हम अपने लिए 30 मिनट ना निकालें ये तो अपने खुद के साथ नाइंसाफी हो
1: हाँ,
0: जाएगी।
1: लेकिन कई महिलाएं नहीं निकाल पाती,
0: जी
1: घर की व्यस्तता बहुत ज्यादा होती
0: जी
1: है, बड़ा परिवार होता है, दिन भर काम करते हैं और उसके बाद में अगर वो अपने लिए समय निकालती है तो कई बार घर के लोग कहने भी लग जाते हैं कि अरे इतना काम पड़ा है कि तुम ये क्या करने लगी हो। तो कई महिलाओं के साथ इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। खैर, लेकिन तेज कदमों से चलना, योग, प्राणायाम, साइकिल चलाना, नृत्य या हल्की एक्सरसाइज, इनमें से कोई भी गतिविधि नियमित रूप से अगर अपनाई जाए तो काफी अच्छा होता है और संतुलित आहार भी फिटनेस की मजबूत नींव होता है।
0: बिल्कुल। और आप खाने में हरी सब्जियां ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दालें हैं, दूध है, मोटे अनाज हैं, पर्याप्त पानी और प्रोटीन की जो भी चीजें हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो नहीं खाते उस तरीके के तो वो अंडे नहीं खाते हैं, तो वो पनीर खाएं, ज्यादा से ज्यादा पनीर ले सकते हैं, दूध की बनी चीजें ले सकते हैं। और ये जो जंक फूड होते हैं, वो जो बहुत ज्यादा मीठे चीजें होती हैं उनको अपना लें तो ज्यादा बेहतर है।
1: हाँ, डिब्बा बंद जो भोजन आजकल बहुत प्रचलन में है
0: जी
1: तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लें और उसके बाद ही उनका उपयोग करें। और हमारा तो सुझाव यही है कि उसकी बजाय आप घर में कोई भी चीज
0: बिल्कुल,
1: बनाकर
0: क्योंकि हम
1: खाएं तो
0: छोटी सी भी चीज जो जंक फूड वाला लेते हैं ना उसके ऊपर आप देखिए कितनी कैलोरी लिखी होती है ना, तो
1: बिल्कुल
0: उसमें हमें जितना चाहिए उसे कहीं कई गुना ज्यादा हम थोड़े से खाने में ही ले लेते हैं, तो उसको आप ना लें तो ज्यादा अच्छा है।
1: इसके अलावा मानसिक फिटनेस भी उतनी ही आवश्यक होती है। तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग, अच्छी नींद लेना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना, ये बहुत मददगार साबित होते हैं इसमें।
0: बिल्कुल। और जीवन के अलग अलग चरण है, जैसे किशोरावस्था हो या जो गर्भावस्था है, प्रसव के बाद का समय है या रोजने वृत्ति का समय है, ये महिलाओं की शारीरिक इसमें जरूरतें जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराना

0: तो थोड़ा उनका साथ दें और उनका ख्याल रखें। तो इस तरह से अब इन बातों का ख्याल रख के फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है। इसके
1: बिल्कुल
0: अलावा फिटनेस कोई विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर महिला स्वस्थ है तो ही वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी और सशक्त समाज की वो पहचान भी होती है।
1: बिल्कुल
0: इसके लिए महिलाओं की फिटनेस पर बहुत अधिक ध्यान देना
1: बिल्कुल। अगर आप
0: जरूरी
1: जिम
0: है।
1: नहीं जा पा रही हैं, डंबल्स नहीं है आपके पास, तो आप एक एक लीटर की जो बॉटल्स होती हैं है ना, उसके जरिए भी आप कर सकती हैं, डंबल्स का काम उससे ले सकती हैं। तो आप
0: बिल्कुल।
1: घर में ही कुछ एक्सरसाइज हैं वो करेंगी ना, तो आपको फायदा दिखने लगेगा।
0: फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और वो जो गीत हमने सुना शगुन फिल्म का, उसके पहले हम फिटनेस की बातें कर रहे थे। हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस बारे में अपने जो दिल के जो बातें थी या जो वो बताना चाहते थे हमें लिख भेजी है, तो हम एक एक करके हम अपनी सखियों को बताते हैं। एक साथी हमारी लिख रही है कि फिटनेस उम्र की मोहताज नहीं होती, चाहे किशोरी

0: हो, गृहिणी, कामकाजी महिला या वरिष्ठ महिला, सभी के लिए सक्रिय और स्वस्थ रहना समान रूप से महत्वपूर्ण है। सैर, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद महिलाओं को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इससे तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अनेक बीमारियों से भी बचाव होता है।
1: बिल्कुल। एक और हमारी सखी हैं जो लिखते हैं कि 50 के बाद प्रोटीन के रूप में सोयाबीन, टोफू मिल्क और स्प्राउट, खासकर मूंग, मूंगफली, काले चने हर महिला के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: और एक हमारी जो साथी हैं वो ये भी लिख रही हैं कि व्यायाम से एंडोर्फिन यानी कि जो हैप्पी हार्मोन से वो निकलते हैं जो तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स को कम करते हैं। हड्डियों की मजबूती उम्र के बढ़ने के साथ महिलाओं में हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डियां मजबूत होती है। ऊर्जा और आत्मविश्वास, फिट रहने से शरीर का स्टेमिना बढ़ता है जिससे महिलाएं अपने दैनिक कार्य अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कर पाती हैं।
1: जी। और एक और श्रोता है जो लिखती है कि मैं सुबह सैर को जाती हूँ, थोड़ा बहुत योग व्यायाम करती हूँ, बाहर का खाना जो होता है उसको खाने से परहेज करती हूँ कभी कभार को छोड़कर, और मौसमी फल सब्जी खाती हूँ। संगीत बहुत तरोताजा रखता है इसलिए विविध भारती के प्रोग्राम सुनना नहीं छोड़ती हूँ। मनोरंजन के लिए सखी सहेलियों के साथ गेट टुगेदर भी करती हूँ।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि योग और प्राणायाम मानसिक शांति और लचीलेपन के लिए, योग सबसे उत्तम है। पिलेट्स, कोर स्ट्रेंथ और बॉडी पोस्चर सुधारने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग हृदय स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट यानी कि रोजाना 30 मिनट तेज चलना फायदेमंद होता है। और इस तरह की फिटनेस से संबंधित बहुत सारी बातें हमारे सखियों ने हमें लिख करके भेजी, तो हम उन सभी को धन्यवाद कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मणिपुरी साड़ी के बारे में। तो मणिपुरी जो साड़ी है ये साड़ी आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से यानी कि राजा रानियों के समय से काफी लोकप्रिय है। पुराने समय में इस साड़ी को रानियां भी पहना करती थी। मणिपुर की साड़ी को कारीगर मशीन का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि हाथ की बुनाई से बनाते हैं।
1: जी, यही इसकी खासियत भी है। इसे बनाने में कुल 15 से 20 दिनों का समय लगता था और मणिपुर की साड़ियों को आज भी महिलाएं खास मौकों पर पहनती हैं। इन साड़ियों को पहनकर वो अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। मणिपुरी साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। ये राजघरानाओं की जो राजघराने होते थे उनकी परंपरा और महिलाओं के सामाजिक सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।
0: हाँ, बिल्कुल। वैसे भी जब कोई भी महिला जब साड़ी पहनती है तो एक एलिगेंट लुक, मतलब यूं कह सकते हैं कि बहुत सुंदरता उसमें नजर आती है। और जब हमारे देश में विभिन्न तरह की साड़ियां बनती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की साड़ियां बनती है, और जब कोई त्योहार आता है तो उस प्रांत की वो खास जो साड़ी है वो पहनी जाती है, तो सब महिलाएं एक तरह की साड़ी पहनती है, उस खूबसूरती का तो कहना ही क्या है ना। और मणिपुरी साड़ी और कपड़ों में दिखने वाले प्रसिद्ध टेम्पल डिजाइन और मोइरांग फी कहा जाता है जो डिजाइन होते हैं उनका नाम है ये। और इस डिजाइन का आविष्कार मोइरांग साम्राज्य की जो राजकुमारी थी थोड़बी, उन्होंने किया था। और मणिपुरी साड़ियों को प्रिंट या डाई करने के लिए पहले के समय में पेड़ों की छालों, पत्तियों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था।
1: बिल्कुल, पहले तो इसी प्राकृतिक तरीके से ही बनाते थे, कुछ भी अलग से रंग नहीं इस्तेमाल करते थे। इन सभी चीजों से कपड़ों पर कलर किया जाता था। यही कारण है कि ये साड़ियां सालों साल अपनी चमक नहीं खोती हैं। मणिपुरी साड़ी जो होती है वो सिर्फ रानियों तक सीमित नहीं थी बल्कि आज भी ये अपने हल्के और आरामदायक फैब्रिक, टेम्पल बॉर्डर और खूबसूरती के लिए महिलाओं के बीच काफी चलन में है।
0: बिल्कुल। और ये साड़ियां मलबरी सिल्क, एरी सिल्क और कॉटन सिल्क ब्लेंड से तैयार की जाती है। ये सिल्क हल्का और सॉफ्ट होने के कारण बेहद आरामदायक होता है। इन साड़ियों पर बनी टेम्पल बॉर्डर साड़ी के लुक को और खास बना देती है। मणिपुरी संस्कृति में रंगों का विशेष महत्व है और प्रत्येक रंग का अपना प्रतीक और अर्थ होता है।
1: जी, जैसे कि लाल रंग प्रेम और जुनून का प्रतीक होता है जबकि हरा रंग उर्वरता और समृद्धि को दर्शाता है। पीला रंग खुशी और शुभता से जुड़ता है जबकि सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ये साड़ियां हथकरघे पर बुनी जाती हैं। मुख्य रूप से इनमें सूती और रेशमी धागों का प्रयोग होता है।
0: हाँ, और ये जो रंग बिरंगी साड़ियां होती है ना, वाकई में ये अलग अलग जो रंग होते हैं, चटकदार जो रंग होते हैं वो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। और कई महिलाएं तो हर तरह के रंगों,
1: जब वो त्योहार जब वो पहन के आती ना तो पता चलता है जहाँ त्योहार है।
0: बिल्कुल। और कुछ साड़ियां तो ऐसी होती है जिसमें मिले जुले रंग होते हैं, बहुत सारे रंगों की एक ही साड़ी बनी होती है, तो वो भी बड़े एक इंद्रधनुष के रंगों की तरह बड़ी खूबसूरत लगती है। आजकल कुछ आधुनिक डिजाइनों में मिश्रित धागों का भी प्रयोग किया जाता है। महीन बुनाई और सादगी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके मुख्य प्रकार हैं फानेक, मयेक, नाइबी, क्षेत्रीय धारियां वाला सबसे लोकप्रिय पारंपरिक फानेक है, कनाप फानेक विशेष अवसरों पर पहना जाने वाला सिला हुआ ये एक रूप है। ये अलग अलग तरह के नाम हैं जो अलग अलग डिजाइन को दिए गए हैं
1: जी। और फिर है मोइरोंग फी। मोइरोंग फी जो होता है वो प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र जिसकी सीमा जो यानी बॉर्डर जो होता है उस पर विशेष आकृतियां बुनी जाती हैं, और इसे जीआई मान्यता भी प्राप्त है इस वाले इसको। और वांगखे फी ये बेहद महीन और पारदर्शी मलमल यानी कि मसलिन जैसी जो होती है साड़ी वो होती है, और शुरुआत में इसे शाही परिवार के लिए वांगखे क्षेत्र में बुना जाता था।
0: और जी सामी लामी फी ये बुनाई और कढ़ाई का एक अद्भुत संयोजन है जिसमें जानवरों पारंपरिक प्रतीकों को उकेरा जाता है
1: जी। और कभी से मणिपुर में प्रतिष्ठा योद्धाओं का प्रतीक माना जाता था। पारंपरिक रूप से इन साड़ियों को सूती, कॉटन और रेशम जो होती है एरी और मलबरी धागों से हाथों द्वारा बुना जाता है। इन्हें रंगने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पेड़ों की छालों का उपयोग किया जाता था।
0: हाँ, तो इस बार अगर जब भी आप मणिपुर जाएं तो, या फिर आपके कोई दोस्त कोई रिश्तेदार अगर जाते हो तो वहां से एक साड़ी जरूर मंगवाइएगा, उनसे कहिएगा कि हमारे लिए एक मणिपुरी साड़ी लेकर आई है। चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: हमारा ये जो सेगमेंट है ना कि
1: हम्म,
0: शब्द हमारा और विचार आपके, तो इसमें आज का जो शब्द है वो फिजूल खर्ची है, तो इस बारे में हमारे साथियों के, हमारे सखियों के क्या विचार हैं वो जान लेते हैं। हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि फिजूल खर्ची मतलब समय या संसाधनों का बिना ठोस आवश्यकता खर्च में लापरवाही बरतना। ये एक ऐसी आदत है कि व्यक्ति अपनी आय के मुकाबले ज्यादा खर्च करके सिर्फ दिखावे के लिए पैसे लुटाता रहता है, अंत में कर्ज में डूब जाता है और तब उनकी आंखें

0: है तब बड़ी देर हो चुकी होती है। खर्च करने के बारे में एक गुजराती मुहावरा है कि पछेड़ी प्रमाणे सोड़ ताड़वी, इसका मतलब यह होता है कि चादर के हिसाब से पैर फैलाना। खर्च के साथ बचत की आदत भी डालें, वो आपके बुढ़ापे में एक लाठी जैसा सहारा बन सकती है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची, भाई इस रोग से प्रायः सभी ग्रसित होते हैं और ऐसा इसलिए है कि अपने वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी ही नहीं है और एक पर एक फ्री का लोभ भी समाया हुआ है, फिर मानव की प्रवृत्ति भी संग्रह करने की है, इस दृष्टिकोण से फिजूल खर्ची होना स्वाभाविक ही है। अक्सर ऐसा होता है ना मंजू जी, जब हम कुछ लेने जाते हैं, जो हम लेने जाते हैं अगर उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, कम दाम का मिल रहा होता है या एक पर एक फ्री होता है, तो हम उसको जरूर उठा लेते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो चाहे ना हो।
0: हाँ बिल्कुल, ये समझ करके कि ये तो फ्री मिल रहा है हमें,
1: हाँ
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका कुछ तो हमें भुगतान करना ही होता है, जो कि हमें पता नहीं चलता है।
1: जी
0: हमारी एक साथी ये लिख रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग और आकर्षक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना, बजट न बनाने और बचत के महत्व को न समझने की आदत, गलत वित्तीय आदतें जैसे फिजूल खर्ची, बिना बजट के खर्च करना और बचत न करना, जो कंगाली की शुरुआत कर सकती है। आय से अधिक खर्च करने पर व्यक्ति कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है, मानसिक तनाव, वित्तीय असुरक्षा के कारण परिवार में कलह और मानसिक अशांति बढ़ती है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। आज की दिखावे की दुनिया में लोग अक्सर आवश्यकता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। हमें अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और अनावश्यक वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए। सादगीपूर्ण जीवन और मितव्यता हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची छोड़कर बचत और समझदारी की आदत अपनाना ही जीवन की सच्ची समृद्धि है।
0: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि फिजूल खर्ची को रोकने का अर्थ कंजूसी करना नहीं बल्कि मितव्ययता, यानी कि सोच समझकर खर्च करना है, इस आदत को अपनाना है। इसके लिए व्यक्ति को किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि यह उसकी आवश्यकता है या केवल एक इच्छा। बजट बनाकर जीने और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने से ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: और एक साथी ने ये भी लिखा है कि फिजूल खर्ची कैसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। तो इन सब आदतों से, इन बातों से हमें बचना है और फिलहाल एक गीत
1: गीत
0: सुनना
1: सुनना
0: है।
1: है।

0: गीत एक चटपटा सा गाना हमने सुना और अब ज्वार की कुछ चटपटी रेसिपीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि हमारे प्रांत में ज्वार नहीं होता है,
1: अच्छा।
0: महाराष्ट्र जाने पर वहाँ ये रोटी खाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है और वहीं के लोगों से बनाना भी हमने सीखी है और अब तो वैसे पैकेट में सारी चीज़ें मिल रही है, आटा भी मिल जाता है। ज्वार की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब मैं थोड़े ढंग से उसे बना भी लेती हूँ,
1: अरे वाह,
0: क्योंकि उसे बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, वो टूट जाती है
1: टूटती
0: किनारों
1: है
0: से,
1: जी।
0: इसलिए तो उसको बनाना भी एक टेक्निक होती है और हर किसी के हाथों में ये हुनर नहीं होता है, तो हमें भी सीखना चाहिए। लिखती है ये कि मैं रात के खाने में ज्यादा ज्वार की रोटी खाती हूँ, किसी भी तरह की तीखी चटनी और सब्जी के साथ खाई जाती है, पर मुझे ये ठेचा और गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठेचा एक तरह का महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला एक तरह की चटनी होती है, मसाला भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी लहसुन होती है, थोड़ा अदरक हरी मिर्ची होती है और फिर उन सबको थोड़ा भून लिया जाता है, थोड़ा मूंगफली के दाने डाल करके, और फिर उसे पीस लिया जाता है नमक डाल करके
1: अरे
0: और थोड़ा
1: वाह,
0: दरदरा सा इसे रखा जाता है, उसे ठेचा कहते हैं महाराष्ट्र में।
1: बिल्कुल एकदम मुंह में पानी आ जाए, रेसिपी बता दी आपने
0: बिल्कुल पारंपरिक जो
1: जी।
0: रेसिपी होती है, व्यंजन जो होते हैं ना, उन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, हाथ से कूटना पीसना और इस तरह के कुछ अच्छी तरह से उन्हें सेकना, चूल्हे के ऊपर पहले तो सेका जाता था, तो ये जो प्रोसेस होते थे इसमें उन चीजों का एक स्वाद जो है
1: बिल्कुल
0: वो निखर
1: बढ़
0: कर
1: जाता
0: आता
1: था,
0: था।
1: खाली मिक्सी में आप पीस दें तो वो स्वाद नहीं आता, जो हाथ से पीस के आता है।
0: बिल्कुल, अब और भी
1: हाँ
0: व्यंजन
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने लिखकर भेजा है, ज्वार आटे की राब।
0: अच्छा।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच ज्वार का आटा, 4 चम्मच घी, आधा चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच काजू बादाम की कतरन, 4 चम्मच गुड़, आधा चम्मच ड्राई जो अदरक का पाउडर होता है वो, और 2 कप गर्म पानी सजावट के लिए ड्राई फ्रूट्स की कतरन। अब सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें अजवाइन डालकर 1 मिनट के लिए इसको भून लीजिए अच्छे से, और बाद में ज्वार का आटा डालकर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। बाद में अदरक का पाउडर, गुड़ और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लीजिए। बाद में काजू बादाम की कतरनी डालकर वापस से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। तो अभी हमारी जो टेस्टी गर्मा गर्म जो ज्वार आटे की राब है वो बनकर तैयार है, इसको ड्राई फ्रूट से सजा
0: बिल्कुल।
1: सकते हैं।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है, जो फाइबर, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होता है। इसके सेवन से वजन नियंत्रण और पाचन क्रिया बेहतर बन रहती है। ज्वार के आटे और साबुत ज्वार से कई स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं। अब पहले ज्वार की रोटी या भाकरी के बारे में इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में गर्म पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर नरम आटा गूंथ ले और हाथ या बेलन की मदद से गोल बेलकर धीमी आंच पर इसे सेके, तो इस तरह से तो ये रोटी बन जाएगी। हालांकि इन्होंने जितनी आसानी से लिखा है उतनी आसानी से वो बनती नहीं है।
1: बनती नहीं।
0: ज्वार का चीला किस तरह, पुड़ला जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से बनाए कि ज्वार के आटे में दही, पानी, कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, टमाटर, गाजर और इसके अलावा नमक और हरी मिर्च मिलाकर एक घोल बना ले इसका, वो
1: अच्छा।
0: तैयार कर ले और तवे पर तेल लगाकर वो घोल जो है वो फैलाते हैं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेके, अचार या दही के साथ इसको खा सकते हैं, चाय या कॉफी के साथ भी खाया जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा आसानी से बनाया
1: बन
0: जा
1: सकता
0: सकता है।
1: है।
0: इसी के साथ इन्होंने ज्वार का उपमा किस तरह से बनाए वो भी लिखा है कि रात भर भीगी हुई साबुत ज्वार को कुकर में उबाल ले, पैन में राई, करी पत्ता, प्याज और अपनी मनपसंद सब्जियां भुने और इसमें उबली हुई ज्वार और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकाएं, इस तरह से ज्वार का उपमा तैयार होता है।
1: वाह, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। और साथ ही हम बात कर रहे थे ज्वार की जो खस्ता कचौड़ी होती है उसके लिए 1 कप गेहूं का आटा चाहिए, बेसन अभी उसमें आप ले सकते हैं,
0: हाँ
1: लेकिन ये तो उन्होंने गेहूं का बताया हुआ है, हमें तो चाहिए ज्वार का।
0: हाँ
1: तो हम

0: बात करते हैं ज्वार भाकरी की, तो दो कप ज्वार का आटा, दो टेबल स्पून इसमें चावल का आटा चाहिए, दो टेबल स्पून तेल और एक टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा कप बारीक कटा हुआ धनिया और एक चौथाई कप बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, स्वाद के अनुसार नमक और भाकरी सेकने के लिए घी। सभी सामग्री को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए और पानी की सहायता से उसका सख्त आटा आप गूंथ सकते हैं। तो मतलब पतला नहीं रखना है, पतला तो वो अलग हो जाएगा, फिर वो वैसा नहीं बनेगा। तो आटे को बराबर नींबू के आकार की छोटी छोटी सी लोइयों में आप बांट लीजिए। लोई को बेल कर भाकरी बना लीजिए। तवे को गर्म करके और धीमी आंच पर भाकरी को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सेक लीजिए। फिर घी डालकर लकड़ी के प्रेस से मतलब उस तरह से दबाते हुए अच्छी तरीके से उसको दोनों तरफ से धीमी आंच पर तब तक सेकिए जब तक वो कुरकुरी ना हो जाए। फिर अपनी पसंद की सब्जी या चटनी के साथ आप खा सकते हैं।
1: बिल्कुल। एक साथी हमारी लिख रही है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके सेवन से ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। और ये लिखती है आगे कि मध्य प्रदेश और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां ज्वार की पारंपरिक रोटी, स्वादिष्ट ज्वार की राब, ज्वार का ढोकला या मुठिया और कुरकुरी ज्वार की पूरी आसानी से बना सकते हैं। और ज्वार के कुछ व्यंजनों के बारे में लिखा है, इन्होंने रोटी के बारे में लिखा है जो कि हम बता चुके हैं इसलिए, और चिले के बारे में भी लिखा है और उसके बारे में भी हम बता चुके हैं, तो ये तो हम नहीं बता रहे। इसके आगे इन्होंने ज्वार की स्टफ्ड बाटी के बारे में लिखा है तो वो हम बता देते हैं। इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में अजवाइन, तिल और कसूरी मेथी मिलाकर आटा गूंथ ले, इसके अंदर आलू और मटर का मसालेदार मिश्रण भरे और बाटी की तरह इसको सेक ले या कम तेल में कचौड़ी की तरह तल ले और ये स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन संगम है। इसके बाद इन्होंने ज्वार का उपमा बनाने के बारे में लिखा है कि साबुत ज्वार को कुछ घंटे पानी में भिगोकर उबाल ले और अब राई, करी पत्ता और अपनी मनपसंद की सब्जियों से तड़का लगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और राब के बारे में इन्होंने लिखा है जो भी जिसकी रेसिपी भी हम बता चुके हैं।
0: बिल्कुल। एक छोटा सा ज्वार, ये ज्वार का डोसा है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कप ज्वार का आटा, तीन बारीक कटा हुआ प्याज, तीन से चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, एक मुट्ठी कटा हुआ ताजा धनिया, तीन कप पानी और स्वाद के अनुसार नमक, दो चम्मच डोसा सेकने के लिए तेल चाहिए। अब एक बाउल में जो ज्वार होता है उसका आटा लीजिए, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, नमक और पानी डाल लीजिए। सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाकर उसका पतला घोल तैयार करें। तवा गर्म करें और हल्का सा तेल लगा दीजिए उसको। फिर तवे पर घोल को डालकर गोल गोल घुमाते हुए फैलाएं जैसे कि आप डोसा बनाते हैं और धीमी आंच पर डोसे को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लीजिए। फिर इसमें आप कुछ भर भी सकते हैं, आलू का मसाला या आप ऐसे भी खा सकते हैं।
1: बिल्कुल। जो लोग रसोई घर में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि किस चीज से किस तरह की चीजें, और वो विभिन्न तरह के वो प्रयोग भी करते रहते हैं कि अरे इससे हो सकता है कि ये चीज अच्छी बन जाए, वो चीज अच्छी बन जाए, और इस तरह से बना के वो कुछ अलग अलग प्रयोग करके भी बना सकते हैं। हमारे एक साथी ने ज्वार के आटे का कप केक बनाने की रेसिपी भी हमें लिख के भेजी है, लेकिन अभी तो हम समय नहीं है कि उसे पढ़ पाएंगे। तो अगर हमारे कोई साथी बनाना चाहते हैं तो इस फेसबुक पेज से आप पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं।
0: बना के देखिए।
1: एक गीत हम यहाँ सुन लेते हैं।

0: आरती देखो, जब हमारी पसंद की कोई रेसिपी बनती है ना, जो हमें बड़ी पसंद हो, स्वादिष्ट हो, तो हम भी तो अपने मन में कुछ सपने सजा करके बैठ जाते हैं कि आज
1: कि हम इसको किसके साथ खाएंगे।
0: बिल्कुल, इस तरह के सपने सजाए जाते हैं। खैर, हम अपनी सभी सखियों सखाओं के लिए यही दुआ मांगते हैं हमेशा कि आप बहुत अच्छे सपने सजाएं और आपके सपने पूरे भी हों।
1: बिल्कुल, स्वस्थ रहें।
0: हाँ, स्वस्थ रहें। इसी के साथ कार्यक्रम अब समाप्त करने की बारी है, तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरखेट्टा। राज्य में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड लिमिटेड की स्थापना के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव राजीव लोचन बख्शी और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के कुलपति प्रोफेसर समीरन दत्ता ने इसे लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इंस्टीट्यूट की स्थापना से राज्य में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एल ख्यांगते का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज दिया गया है। इधर प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ रांची में आज भाजपा जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। रांची महानगर द्वारा आयोजित जेपीएससी कार्यालय घेराव में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार और जेपीएससी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में नौकरियों को बेचा जा रहा है और प्रतिभावान युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को गति देने के लिए आज सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ तथा बीएलए 2 की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसआईआर

0: मतदाता को समावेशी बनाने पर चर्चा हुई। रांची के बूथों पर भी चुनाव पाठशाला और बैठक के दौरान एसआईआर से जुड़े विषयों पर विमर्श हुआ। और मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों में कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात के भी आसार हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: क्या बात है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में मुकेश की आवाज गूंजती है। तो स्वागत करते हैं जाने माने गायक मुख्तार शाह का।
2: नमस्कार विनोद भाई, और सभी सुनने वालों को भी आदाब।
1: और मुख्तार भाई के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद मिश्र, जो मुकेश की आवाज हैं और बहुत प्यारे इंसान। बहुत स्वागत।
3: नमस्कार यूनुस भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
1: मुख्तार और गोविंद जी, आप दोनों सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मुकेश कहाँ से शुरू होते हैं?
2: जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं जब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता था यूनुस भाई, तब वो हमेशा ऐसे गाने का शौक तो कुदरती तौर से था, तो गाना ऐसे ही गाया करते थे। टीचर कभी बोलते थे तो ऐसे कुछ भी रैंडम गाते थे, लेकिन वो मैं मुकेश जी के गाने संभव मुझे बहुत पसंद थे और वही मैं गाया करता था। और जब मैं हाई स्कूल में आया तब वो कभी कभी फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुआ करते थे उन दिनों, मैं पल दो पल का शायर हूँ।
1: वाह वाह।
2: तो वो गाना मैं अक्सर गाया करता था जब भी ऐसा टाइम पास के तौर पे स्कूल के अंदर कोई वो पीरियड अगर फ्री है या कोई फंक्शन में गेस्ट नहीं आए हैं तो उनको टाइम पास करने के लिए किसी को बुलाना है तो मुझे बुलाकर वो गाना गाने बोलते थे, तो मैं यही गाता था। तो मेरे जो दोस्त थे तो मुझे मुकेश मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे।
1: वाह वाह।
2: इस तरह से मेरा जहन भी मुकेश जी की आवाज की तरफ ज्यादा।
1: ये किस शहर की बात है?
2: अहमदाबाद की, जहां मैं रहता हूँ, मेरी तो पैदाइश वहीं की है।
1: तो अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए आपका जो झुकाव है वो मुकेश के गानों की तरफ हुआ।
2: जी,
1: अब गोविंद की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ?
3: जी मैं तो हमेशा दूसरे सिंगर्स के ही गाने गाता था, लेकिन क्या है कि कुछ जो जानकार लोग थे संगीत के और जहाँ पे मैं सीखता था, बेसिकली इलाहाबाद जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, अब वो प्रयागराज हो गया है, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप मुकेश को ट्राई कीजिए, आपकी वॉइस जो है थोड़ा सा ऐसा सिमिलर आता है। तो मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे सुनना शुरू किया, और मुझे याद है एक बार कॉम्पिटिशन में मुझे गाने का मौका मिला तो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, वो गाने का मौका मिला।
1: क्या बात है।
3: और वो गाने के साथ वो फर्स्ट प्राइज जब मुझे मिला तब थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियस होता गया।
1: क्या बात है। तो वही गाना सुनाइए फिर।

0: और को चाहोगी तो मुश्किल होगी।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक और बात गोविंद, के इलाहाबाद शहर में पढ़ रहे थे और कंपटीशन वगैरह की तो बातें हुई, पढ़ क्या रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे?
0: बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ।
1: ओ हो, ये इंजीनियरिंग और गायकी
0: दोनों अलग अलग है। अभी म्यूजिक का शौक था और 4 साल क्लासिकल ट्रेनिंग भी ली मैंने प्रयागराज संघ समिति से, और फैमिली में ऐसा कोई म्यूजिक में था नहीं, बट मेरा झुकाव थोड़ा उधर था तो
1: बगावत करनी पड़ी कि अब इंजीनियरिंग नहीं करेंगे।
0: कुछ सालों तक तो मुंबई में आने के बाद तो घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं शोज करता हूँ। मैंने हमेशा झूठी बोला कि मैं जॉब करता हूँ।
1: अच्छा, ये भी हुआ है?
0: हाँ, गांव में जनरली से मम्मी पापा को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हमेशा मंथली जो भेजना भेज दिया। उसके बाद उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो, कितनी सैलरी है, कहाँ का जॉब है। तो बस वो चलता रहा। धीरे धीरे जब ये फेसबुक और इंस्टा में और सारे सोशल मीडिया यूट्यूब में वीडियोज आने लगे तब थोड़ा हाईलाइट में हुआ, तब मैंने बताया कि भाई मैं शोज करता हूँ।
1: मतलब इंजीनियर नहीं है, सिंगर है।
0: नहीं जी, जी।
1: मुख्तार भाई, आपने क्या पढ़ाई की है भाई?
2: मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद फिर LLB किया।
1: अरे बाप रे बाप, ये क्या मामला है?
2: मतलब मैं ऑफिशियली ऐसे, मेरा तो एनरोलमेंट है एज ए लॉयर। जब पढ़ाई करता तभी मेरा दिल था बहुत यूनुस भाई के LLB करूंगा और वकील बनूंगा
1: जी।
2: तो वो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। थोड़ा सा गाने का सफर शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम में।
1: हाँ हाँ।
2: और फिर मैं जब एडवोकेट हुआ तब मैंने 2 साल म्यूजिक छोड़ के वकालत भी की फुल टाइम।
1: ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है कि कोर्टरूम में आप जो है वो जिरह कर रहे हैं, तो जिरह की बजाय गाना ज्यादा अच्छा लगता है।
2: लेकिन शायद ऐसा था, डेस्टिनी बोलते हैं।

0: जी
1: फिर
0: जी
1: तो मैंने शुरुआत की, क्राइम साइड मेरा लीगल प्रैक्टिस है
0: हाँ
1: आज भी,
0: हाँ
1: मतलब मेरा एनरोलमेंट है।
0: जी
1: और तो लेकिन वो जहन से कलाकार था, तो वो क्राइम की प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा मन बहुत सेट हुआ नहीं, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा उससे दूर होता गया। और कुछ हालात भी ऐसे हुए कि मुझे ऐसा चूज करना पड़ा कि या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: ऑफकोर्स म्यूजिक मेरा पैशन था, तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी
0: क्या
1: मेरा।
0: बात है। अच्छा, तमाम शहरों में बल्कि दुनिया भर में आप मुकेश को गाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको कई बार गाने पड़ते हैं क्योंकि
1: हाँ
0: वो पॉपुलर गाने हैं,
1: जी
0: पर
1: जी
0: मैं यहां चाहता हूं कि अपने मन का कुछ सुनाइए जो आपको कम गाने का मौका मिले।
1: अमूमन शोज में नहीं रखे जाते ऐसे बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत गाने, जैसे अगर मैं बताऊं तो सारंगा तेरी याद
0: क्या
1: में,
0: बात है, क्या
1: ये
0: बात है, सरदार
1: मतलब
0: मलिक साहब का संगीत है
1: जी
0: ये।
1: जी तो ये गाने अमूमन से कम होते हैं, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है,
0: वाह वाह
1: तो
0: वाह।
1: ऐसे कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अमूमन कम गाने का मौका आता
0: एक
1: है।
0: गाना मुझे याद आ रहा है, पुकारो मुझे नाम लेकर
1: वाह
0: पुकारो,
1: हाँ क्या बात है, वो भी डांसिंग का ही म्यूजिक है
0: ये
1: ना,
0: डांसिंग का म्यूजिक
1: तो दो लाइनें हो।
0: जरूर।

0: अब आप लोगों से एक बहुत ही जज्बाती सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि अगर कभी आपकी मुकेश से मुलाकात होती तो क्या कहते आप?
1: ये इमेजिन करना ही एक अपने आप में थ्रिल है कि कभी मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली के अपने जिंदगी के, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हो गया।
0: जी जी,
1: लेकिन यस, कभी अगर मौका मिलता तो शायद उस वक्त तो हम स्पीचलेस हो जाते।
0: बिल्कुल,
1: तो क्या कहें कि आप बहुत अच्छा गाते हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, क्या कहें। तो मतलब वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही मुकेश जी की आवाज और उनकी पर्सनालिटी एक हमारे लिए आइडियोलॉजी की तरह है।
0: बिल्कुल। गोविंद आप बताइए।
2: मैं तो मुख्तार भाई बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलता उस टाइम पे अगर वो मिलते तो, क्योंकि जब भी हम गाते हैं उनको या सुनते हैं तो ये सीरियस बात है कि आंख बंद करके जब भी उनको सुनते हैं तो मैं खाली एक ही चीज इमेजिन करता हूँ कि कैसे गाया होगा। इतने सरल स्वभाव के आदमी,
0: बिल्कुल
2: एकदम एकदम सीधा सीधा गाना, और एकदम ना कोई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं, सीधा स्ट्रेट गा के एकदम दिल पे उतर जाना। वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता, उड़ता नहीं उनको।
0: क्या बात। अच्छा, मुकेश ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं और कुछ तो गैर फिल्मी है, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे?
1: जी।

क्या प्यारा भजन, क्या बात है। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मुकेश जी को रामचरितमानस जो है उससे बहुत लगाव था और उन्होंने पूरी रामचरित अपनी आवाज में रिकॉर्ड की थी। और जो फिल्म म्यूजिक के कदरदान हैं और जो मुकेश के भक्त हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़े तोहफे की तरह है, एक बहुत जरूरी एक चीज है जो संग्रह में रखा जाना चाहिए। मुकेश जी को जब हम सुनते हैं तो कई बार ये एक चीज उभर के आती है कि वो सैड सॉन्ग्स के बादशाह हैं। आप लोग क्या

0: मानते हैं कि क्या ये बात उनको सिर्फ सैड सॉन्ग्स तक महदूद करना या सैड सॉन्ग्स के बादशाह कहना सही है? मुख्तार भाई,
1: मैंने जैसा उनका इंटरव्यू में उनके जबान से ये सुना है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे 10 ऐसे लाइट सॉन्ग दिए जाएं और एक अगर मुझे इमोशनल या सैड सॉन्ग दिया जाए तो मैं सैड सॉन्ग गाना ज़्यादा पसंद करूंगा। कलाकार जो होता है, मेरा अमूमन मानना है कि हमेशा वो दिल से जुड़ा होता है।
0: बिल्कुल।
1: और जो इंसान दिल से जुड़ा होता है उसको हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स उनसे बहुत लगाव होता है, और इसीलिए सारे कलाकारों का मैंने देखा है ज़्यादातर वो लोगों को सेंटिमेंटल या इमोशनल और सैड सॉन्ग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि जज्बाती होते हैं कलाकार, इसलिए जो सैड सॉन्ग्स है उनसे लगाव होता है। मुकेश जी को खास तौर पर सैड सॉन्ग से जोड़कर देखा जाता है, गोविंद आप ये मानते हैं?
2: यही इंटरव्यू, बिल्कुल यही इंटरव्यू मैंने भी सुना था मुकेश जी का, यही था कि 10 अगर रोमांटिक सॉन्ग मुझे दिया जाए और एक सैड नंबर दिया जाए तो मैं सैड को ही प्रेफर करूंगा।
1: लेकिन अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी ने काफी सारे रोमांटिक गाने गाए हैं, और मैं तो इनफैक्ट बहुत मरतबा जब ऐसा सुनता हूँ कि जो ऑडियंस होता है कभी बोलता है कि अरे यार मुकेश जी का प्रोग्राम है तो फिर रोने वाले गाने होंगे, तो ये बातें सुन सुनकर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जिसका टाइटल रोमांटिक मुकेश,
0: क्या
1: तो मतलब 3 घंटे सारे गाने रोमांटिक और मुकेश जी के गाए हुए, तो लोगों को ऐसा होता है कि अच्छा इनके तो इतने सारे गाने रोमांटिक भी हैं।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, तो एक रोमांटिक गाना आप लोग दोनों मिलकर
2: चार

0: था।
1: वैसे मुझे तो गाना वैसे वापस मुझे भी मनोज कुमार जी वाला ही याद आया था, तौबे मतवाली चाल, लेकिन मैं सोचा मनोज कुमार जी का ज्यादा वो हो जाएगा तो राज कपूर जी का गाना
0: क्या बात है।
1: है।

0: रोमांटिक गानों की बात हो रही है और अभी मुख्तार भाई आपने कहा कि मनोज कुमार के ऊपर और राज कपूर के ऊपर मुकेश की आवाज तो इस गाने को चुना जाए, किन हीरोज के ऊपर राज कपूर को छोड़कर, क्योंकि वो तो मुकेश राज कपूर की आवाज तो थे ही, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुकेश की आवाज? ये सवाल गोविंद आपके पास भी आने वाला है।
1: अब मेरा मानना है कि अगर राज कपूर मनोज कुमार जी के बाद, मुझे पर्सनली फिरोज खान के ऊपर उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वाह,
0: मुझे एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया है।
1: अच्छा,
0: लेकिन देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि नहीं।
1: और वैसे तो सुनील दत्त जी पर भी हैं उनके गाने, शशि कपूर जी पर काफी सारे गाने, जितेंद्र पर बहुत सारे गाने, तो लेकिन मुझे पर्सनली मेरा मानना फिरोज खान में मुझे ज्यादा उनकी आवाज अच्छी।
0: तो कौन सा गाना चुन रहे हो आप?
1: जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर

0: क्या बात है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, इंदीवर का लिखा हुआ ये गाना, सफर फिल्म से। और विविध भारती पर हम यही बात कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हम अपने लिसनर्स की पसंद का बहुत खास ख्याल रखते हैं और इसीलिए आज मुकेश जी को नमन करते हुए हमने आप दोनों को बुलाया। तो गोविंद, अब वही सवाल आपके पास आ रहा है।
1: शशि कपूर जी के ऊपर बहुत सारे फिल्म आए गए उनके गाने।
0: वाह वाह,
1: जैसे फिल्म कभी कभी का।
0: हाँ

0: अच्छा लग रहा है कि गानों की बारिश हो रही है और हम बहुत शिद्दत से मुकेश को याद कर रहे हैं। मुख्तार भाई, पूरी दुनिया में जाकर आप शोज करते हैं, मैं विदेशों में आपके शोज की बात करने जा रहा हूं, जहां कोई यादगार घटना बताइए।
1: यानी अमूमन तो जैसे हम अब्रॉड जो शोज करने जाते हैं तो ज़्यादातर तो हमारा क्राउड जो होता है अपना एशियन, उसमें भी अपना इंडियन क्राउड और अड़ोस पड़ोस के देशों के भी लोग जो होते हैं हमारा हिंदी सिनेमा को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग ही प्रोग्राम देखने आते हैं। और यादगार में अगर मैं कहूँ तो मुझे हॉलैंड, नेदरलैंड एक ऐसी जगह लगती है कि जहाँ पर मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा है कि रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी सारे प्लेबैक सिंगर्स में सबसे ज़्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन नेदरलैंड और सूरीनाम, क्योंकि ज़्यादातर नेदरलैंड से लोग जो हैं सूरीनाम से माइग्रेट होकर आए हैं, ये एक जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ रफी साहब से कुछ ज्यादा मुकेश जी को लोग पसंद करते।
0: क्या बात है, क्या?
1: ये की देश, इसलिए मुझे वो देश बहुत अच्छा लगता है।
0: वाह गोविंद, जब आप गाते हैं तो फरमाइशें किस तरह के गानों की ज्यादा आती है?
2: सैड नंबर की ज्यादा आती है।
0: और उसमें भी कोई खास गाना जिसको आपको तकरीबन हर शो में गाना पड़ता है?
2: जाऊं कहां बताए दिल।
0: अच्छा,
2: इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है।
0: बहुत ही जज्बाती गाना है।
2: सारंगा तेरी याद में।

0: कौन होगा जिसको इस फिल्म से प्यार ना होगा।
1: हाँ,
0: तीसरी है ना? तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है?
1: वो गाने तो उस फिल्म के सारे ही अच्छे थे
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो दूसरे दो गाने जो बहुत पॉपुलर हैं, सज्जन रे झूठ मत बोलो और दुनिया बनाने वाले, वो गाने भी इक्वली इतने अच्छे और मुझे पसंद है।
0: अच्छा, तो दुनिया बनाने वाले सुनते हैं आपसे।

0: आप लोग गाते हैं तो बिल्कुल यूं लगता है जैसे मुकेश जी हमारे सामने मौजूद हैं और गा रहे हैं। अपने गले का किस तरह से ख्याल रखते हैं आप लोग, बारी बारी से बताइए। पहले मुख्तार।
1: बिल्कुल, आप ये सवाल मुझसे करते तो मैं कहता पहले इनसे पूछिए।
2: अब पर्टिकुलरली यूनुस भाई, थोड़ा सा गले का ख्याल रखने में एक तो बात यही होती है कि थोड़ा सा अपने वॉइस के लिए जो भी मैं तो बाकायदा म्यूजिक सीखा नहीं हूं, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा उठपटांग आता है वैसे थोड़ा सा रियाज करना सुबह में, वो थोड़ा सा करते हैं। गले के लिए खास सबसे पहला वही जरूरी होता है, और दूसरा ये होता है कि शो से 3-4 घंटा पहले तक कोशिश करते हैं और ख्याल रखते हैं कि कुछ फ्राइड कुछ नहीं खा लें या खट्टा कुछ ऐसा नहीं खा लें, और ठंडे का परहेज तो हमेशा रहता है थोड़ा।
0: गोविंद, आप
1: आइसक्रीम वगैरह तब चलता है जब 3-4 दिन का गैप हो, तो ऐसा लगता है कि भाई अभी गैप है खा लो। हाँ। थोड़ा सा कर सकते, थोड़ा फ्राइड चीज कुछ हुआ। हाँ। क्योंकि समोसा वोसा मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा।
1: तो मैं देखता हूँ कि 3-4 दिन का गैप है तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता। और कोशिश करता हूँ कि नींद प्रॉपर लूँ जितना हो सके, 7-8 घंटे की नींद लेता हूँ। और सुबह उठना जैसा मुख्तार भाई ने बोला कि थोड़ा सरगम पे तो लगता ही हूँ, मतलब नोट्स पकड़ के एक एक नोट सा नींद आ पाए सरगम, वो एक एक एक नोट पे रहता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, इलाहाबादी व्यक्ति को दुनिया में बाकी जगहों के समोसे पसंद आते हैं?
1: नहीं आते, लेकिन अब वो टेस्ट ऐसा करता हूँ चला इलाहाबाद में ही खा रहा हूँ।
0: अच्छा। खान पान का बाकायदा परहेज होता है?
2: थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही रहता।
0: अच्छा, ये बताइए कि मुकेश की बहुत सारी गजलें हैं और उनमें से कुछ गजलें आपके दिल के बहुत करीब हैं, ये मुझे पता है। तो किन गजलों का?
2: खूबसूरत उन्होंने जो गैर फिल्मी ये गजल वगैरह उन्होंने गाई है
0: जी।
2: लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर मुझे जो बहुत पसंद है वो है

0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार एल्बम रहा है जिसमें बहुत कमाल की गजलें हैं, हमसे भागा ना करो गजालों की तरह, मेरे महबूब नहीं ये नहीं। मुकेश जी ने गैर फिल्मी एल्बम बहुत सारे किए और वो दौर ऐसा था जब प्लेबैक सिंगर्स अपनी पसंद के गानों के लिए गैर फिल्मी एल्बम्स करते थे। लता जी ने किए, आशा जी ने किए, मन्ना डे ने बहुत सारे किए, रफी साहब की गजलें मौजूद हैं। तो अच्छा, गोविंद मुकेश के ही गाने आप सिर्फ सुनते हैं या जब सुनने की बारी आती है तो?
1: मैं सच बोलूं तो ऑन एयर आज एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जब मेरा शो होता है, जब रिहर्सल होता है, रिहर्सल के एक दिन पहले ही मैं मुकेश जी को एकदम सीरियस होकर सुनता हूं।
0: अच्छा,
1: नहीं तो मेरे फेवरेट हमेशा रफी साहब रहे हैं। और
0: क्या बात है,
1: रफी साहब को मैं बहुत सुनता हूँ।
0: तो फिर अब मैं ये चाहता हूँ कि रफी साहब का एक गाना आप सुनें। ये तो अलग ही हो जाएगा मामला, है ना।

0: यार ये जो है ना ये अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया, मुझे आइडिया आ गया। अब मुख्तार भाई आपको भी रफी का गाना गाना पड़ेगा। ऐसा किसी ने किया नहीं होगा लेकिन यहाँ तो होगा ये।
1: सुहानी रात ढल चुकी।

0: क्या बात है, पहली बार आपसे हमने रफी साहब को सुना कि
1: मैंने भी
0: अच्छा
1: मैंने भी
0: ये देखिए, ये ऐसा सिर्फ गुजराती में ही पॉसिबल है, ऐसा शोज में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब अगर लोगों ने सुन लिया तो
2: हो सकता है कभी ऐसा कुछ फरमाइश आ जाए।
0: अच्छा, जब आप फुर्सत में होते हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुकेश के गाने सुन रहे हों, तो किन किन कलाकारों के गाने सुन रहे होते हैं?
2: मैं रफ़ी साहब सभी के फेवरेट रहे हैं, उनके गाने बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और ऑफ कोर्स मैं कभी किशोर कुमार जी के भी गाने कुछ मुझे पसंद हैं तो वो मैं सुनता हूँ अगर वक्त मिला तो।
0: गोविंद?
1: मैं गुलाम अली साहब को बहुत सुनता हूँ, खाली टाइम पे मैं गुलाम अली साहब को ही सिर्फ सुनता हूँ, बहुत मज़ा आता है उनकी हरकतों को, उनको सब एकदम ऐसा डूब जाता हूँ पूरी तरह से।
0: वहां हमने गजलों की बातें की तो यहाँ पर भी जो है, लेकिन अब ये कह के फंस गए गुरु।
2: मैं वो सोच ही रहा था,
1: सोच के जो है
0: चुपके चुपके रात दिन
1: चुपके

0: आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन।
1: एक पूरा दौर रहा है
0: ओ यस
1: गजलों का, जब
0: यस
1: गुलाम अली के कैसेट्स कौन होगा जिसके कलेक्शन में नहीं हुआ करते होंगे। आप लोग बहुत शोज करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं अपने शोज के लिए। मुकेश की आवाज में अलग अलग गानों की अदायगी लाइव ऑडियंस के सामने, कितने दबाव और तनाव की बात होती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है।
0: तनाव तो रहता है जब ये, क्योंकि कमर्शियल प्रोग्राम्स करने रहते हैं जहां लोग एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं आपके साथ के गानों के, एक तो वॉइस के अंदर रिजेम्बलेंस और उसके बाद उनके उनको गाना, तो उसका टेंशन तो हमेशा रहता है। इतने सारे, मतलब इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं थाउजेंड्स में, लेकिन अभी भी गाने का, और स्पेशल जब पहला गाना गाने स्टेज पर जा रहे होते हैं तो दिल ऐसा अंदर से धड़क तो रहा ही होता
1: क्या
0: कि
1: बात
0: भाई
1: है।
0: लोग एक्सेप्ट कर लें, आवाज ठीक से निकल जाए, आवाज चल जाए,
1: हाँ
0: क्योंकि वो हमारा क्रिएशन तो है नहीं, हम किसी और का गाया हुआ गाना है और मुकेश जी की आवाज को उसको कॉपी करना है, तो वो
1: हाँ
0: थोड़ा सा, क्योंकि अगर ऐसा सोचते, अगर 5-10% भी अगर उसको जस्टिफाई कर सके तो, और मेरे ख्याल से उतना ही करते हैं जिसके बदौलत लोग इतना प्यार देते हैं।
1: आप 5-10% नहीं करते हैं, आप इसका उल्टा करते हैं, मतलब 99% 100% करते हैं। गोविंद, कितना टेंशन होता है शो से पहले?
0: टेंशन तो बहुत रहता है, और जैसा मुख्तार भाई ने बोला, पहले गाने के लिए सच में बहुत टेंशन रहता है,
1: हाँ
0: जैसे धक धक धक धक करता रहता है। और मैं तो ग्रीन रूम में हुआ, मेरा जब नंबर आने लगा, जैसे पहला गाना मेरा ही है, तो मुझे टेंशन पहले स्टार्ट हो जाता है, और
1: अच्छा
0: मैं कर्टन के सामने खड़ा भगवान को बोलता रहता हूँ, आप संभाल लेना, आप स्टेज संभाल लेना, बस और कुछ
1: अच्छा,
0: नहीं।
1: इस टेंशन को ईज करने के लिए क्या तरीका है आप लोगों का? गहरी गहरी सांस लेना, क्या करते हैं? जैसे इन्होंने कहा, भगवान से कहते हैं भाई संभाल लेना
0: नहीं,
1: आज।
0: ये तो सबसे बड़ी बात ही है, टेंशन को ईज करने के लिए
1: ऊपर
0: आप
1: वाले को छोड़ दो।
0: ऊपर वाले को, हाँ उसको तो रिक्वेस्ट करना ही रहता है कि भाई
1: हाँ
0: संभालना।
1: बिल्कुल। एक चीज, हाँ ये सवाल पहले आएगा कि मैंने आपको कई जगह गाते हुए देखा है कि आप लिरिक्स के साथ नहीं गाते,
0: जी
1: अमूमन आपको सब गाने याद हैं।
0: जी
1: ये कितनी चैलेंजिंग बात होती है? ऐसा नहीं लगता है कि कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया?
0: नहीं, क्या है कि बचपन से एक गाने का जो शौक रहा, तो पुराने दौर में जब हम छोटे थे तो हम लोगों को, अब पता है हम फिल्में जब जैसे देखने जाते तो स्टोरी भी पूरी याद होती थी,
1: बिल्कुल
0: और अपने दोस्तों में कभी डिस्कस करते थे कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो वो गाने भी उसी वक्त से मुझे ये सारे गाने, इनसे इतना लगाव था, इतने दिल से जुड़े रहे इन गीतों के साथ, वो तब से याद हैं, तो वो आज तक ऐसे एक सिस्टम कुदरत ने अंदर इतनी मेहरबानी की है कि वो एक सेट रखा है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच कर भी नहीं जाता हूँ कि अच्छा इसका पहला अंतरा क्या है, सेकंड क्या है, वो स्टेज पे याद आते जाता है वो।
1: चलता चला जाता है।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: कभी मैंने आपको लिरिक्स के साथ गाते हुए नहीं देखा, इसलिए
0: जी
1: मैंने कहा कि ये बात जो है ये तो पूछनी जरूरी है कि कितने गानों का खजाना दिमाग में जमा
0: हाँ
1: कर रखा
0: और वो
1: है।
0: मैंने क्या है कि कभी रखा भी नहीं रेफरेंस के लिए, मैं कागज इसीलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि जिस दिन साइकोलॉजी एक बैक ऑफ द माइंड मैंने मैसेज दे दिया कि अब भाई एक रेफरेंस के लिए है, तो वो नजर वहां जाएगी, वो कहते हैं ना कि अब जैसे बैंडेज खरीदते हो तो आपको चोट लगती है। तो खरीदना ही नहीं चाहिए
1: सच में।
0: बैंडेज।
1: गोविंद, कितने गाने याद रहते हैं और डायरी की जरूरत पड़ती है?
0: हाँ कभी कभी पड़ती है, जैसे मुख्तार भाई ने बोला अभी कि थोड़ा रेफरेंस के लिए ना, वो दिमाग में मेरे बैठ गया है वो चीज, कुछ लाइनों को देखना पड़ता है,
1: हाँ
0: मतलब बहुत बार गाया है लेकिन फिर भी वो देखना ही पड़ता है, होता है, लेकिन कुछ गाने बहुत याद हैं, कुछ गाने एकदम पूरे याद है, लेकिन कुछ गानों को जिनको मतलब अमूमन कभी नहीं गाया है या पहली दो बार गा रहा हूँ, 2-3 बार गाने के बाद तो वो याद ही हो जाता है,
1: अच्छा,
0: लेकिन
1: इतने
0: फिर
1: सालों से
0: भी
1: आप लोग शोज कर रहे हैं और एक तरह से शो जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रिहर्सल कितनी मायने रखती है? हर शो के पहले एक रिहर्सल होती है।
0: मैं अब इन दिनों अभी काफी सारे मतलब रिहर्सल मैं स्किप करने लगा हूँ, बहुत नहीं जाता हूँ रिहर्सल में, लेकिन यस हाँ कभी जैसे प्यारे भाई का अगर कोई प्रोग्राम है या आनंद जी भाई के साथ कर रहे हैं, विजू भाई के साथ कर रहे हैं, तो वो रिहर्सल पर्टिकुलरली अटेंड करने जाता हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा लर्निंग लेसन्स रहते हैं वहाँ पे, और बाकी अब म्यूजिशियंस और वो सब सारे इतने नोन हैं इतने सालों से, तो अब वो एक सबको एक लिस्ट दे दो और थोड़ा सा स्केल फोन पे डिस्कस कर लो तो काम वैसे चल जाता है।
2: बिल्कुल,
0: अनलेस के कोई ऐसा रेयर गाना गा रहे हो तो थोड़ा सा फिगर देखना पड़ा।
2: गोविंदा आप बताइए।
3: नहीं, रिहर्सल तो ठीक है, जो अगर हम रेगुलर गाने गा रहे हैं तो उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे म्यूजिशियन भी वैसे ही हैं, और आज के टाइम पे चाहे सिंगर हो म्यूजिशियन हो, सब इतना मेहनती है, सब मेहनत करते हैं, सब अपना 100% स्टेज पर देते हैं, चाहे वो सिंगर हो चाहे म्यूजिशियन हो साउंड हो कोई भी हो। लेकिन हाँ, कुछ पर्टिकुलर कुछ अलग गाने मिल गए, कुछ कोरस वाले गाने मिल गए तो रिहर्सल की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल मुख्तार भाई, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ मैंने आपको शो करते हुए देखा है
0: जी,
1: तो जैसे प्यारे भाई ही हैं
0: जी, जी।
1: या आनंद जी भाई हैं, या और तमाम लोग हैं, मतलब सिंगर्स भी बहुत सारे तमाम लोगों के साथ, उनकी कुछ यादें, उनके साथ शो की यादें हमारे साथ बांटिए।
0: मैं मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में, जब छोटा था गाना मैंने शुरू किया, अहमदाबाद में था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुदरत ऐसा मौका भी देगी कि ये लोगों के साथ मिलना होगा या इन लोगों के साथ कोई स्टेज पे खड़े रहने का मौका भी मिलेगा। तो मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया। जैसा कि हम सुनते थे कि भाई ये जो लेजेंड्स होते हैं, तो जब इनके साथ काम करो तो इनके काम करने का तरीका, इनकी डिटेलिंग, इनका ऑब्जर्वेशन, वो देखकर ही पता चलता है कि इसीलिए ये लोग महान हैं। तो जैसे कि मैं बताऊँ कि अगर प्यारे लाल जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था तो सारे म्यूजिशियंस बजा रहे हैं, और जैसा मैं सुनता था तो वो मेरे साथ बात भी कर रहे थे, और वो जब जुम्मा चुम्मा दे दे वाला म्यूजिक आगे का चल रहा था, तो वो जैसे स्टॉप हुआ तो उन्होंने पर्टिकुलरली चार कीबोर्ड वाले थे, उसमें से एक ही कीबोर्ड वाले को उन्होंने बोला कि आप वो बजाइए, आप क्या बजा रहे थे, और वही इंसान गलती कर रहा था वो जगह पर।
1: इतनी तो बारीकी से,
0: इतनी बारीकी से जो सुनना
1: जी
0: ये,
1: और प्यारे भाई के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो 20 वायलिन में से भी एक को पहचान लेंगे कि तुम गलत बजा रहे थे। तो ये तो कमाल की बात है। उनके साथ बहुत रिहर्सल्स, बहुत शोज किए हैं आपने, तो कोई एक गुरु मंत्र जो उन्होंने आपको दिया हो?
0: मुझे वो ऐसा कहते थे कि आपके थोड़े से जो लैंडिंग, जहां आप नोट्स आपको करते हैं, वो थोड़ा सस्टेन करना या उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, जो उन्होंने मुझे बताया था, तो वो एक उन्होंने मुझे बताया, और वो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा उन्होंने मुझे बताया है तो लैंडिंग नोट्स को, जब गाना जहाँ से जो लाइन जहाँ खत्म होती है तो उसको जो सस्टेन करना, तो कोशिश करता हूँ वैसे ही करने की।
1: मुझे लगता है कि वो गाना जो आप कई बार प्यारे भाई के साथ स्टेज पर गा चुके हैं, वो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली,
3: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,
1: वो गाना सुनते हैं आपसे।

0: क्या बात है, इस गाने के बारे में जो एक ट्रिविया है वो भी बता दीजिए, द गुड द बैड द अगली।
1: वो जो म्यूजिक उन्होंने किया हाँ। तो मैं वो मुझे प्यारे भाई ने बताया कि हमने उसका बाकायदा पेड करके वो लिया हुआ म्यूजिक, किराया हुआ नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कमाल है कि इतनी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म और उसका जो म्यूजिक है, वो जो थीम है, वहां से उन्होंने
1: जी
0: क्या शानदार तरीके से उसको गाने में बदला है, ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात है।
1: एग्जैक्टली यस।
0: तो ये गाना पूरा सुनते हैं रिकॉर्ड से।

0: गोविंद अब आपकी तरफ आते हैं, तमाम तरह के शोज किए हैं, तो को सिंगर्स के साथ कुछ दिलचस्प अनुभव, कभी ऐसा होता है कि लाइंस भूल जाते हैं लोग या ऐसा कुछ?
1: हाँ, एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी तो होता है। और काफी सारी फीमेल सिंगर के साथ जब मैंने गाए तो कई लोग, कई फीमेल सिंगर ऐसी थी जिन्होंने कोई कोई गाने में लाइन भूल जाती थी, तो वो याद मुझे रहता था, तो मैं खाली उस इशारा करके मैं संभाल लूंगा, मैं गा लूंगा, मैं दो लाइन तीन लाइन आगे गा के फिर उनको सपोर्ट करता कि तो अभी तुम गाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये भी करना पड़ता है। सर आप भी ऐसा करते हैं?
2: नहीं, आमतौर से ऐसा कभी, यस ऑफ कोर्स, अगर को सिंगर अगर है, कहीं हमारी गलती हो गई तो शायद उसने संभाल लिया, उसकी गलती हुई तो हमने संभाल लिया, पब्लिक को नहीं पता चले एज लॉन्ग एज, तो वो तो कोशिश तो करनी पड़ती
1: है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया गाना हो जिसका रिहर्सल नहीं हुआ हो टाइम कम की वजह से, तो हमें फीमेल सिंगर को बोलना पड़ता है कि काउंटिंग करके मुझे बताना मेरा स्टार्ट कहाँ से होने वाला है।
0: वाह वाह,
1: तो बता के वो पहले खाली ऐसे टच कर देंगे तब शुरू हो जाता है,
0: पब्लिक को समझ नहीं आता,
1: पब्लिक को समझ नहीं आता था ऐसा। बस
0: एक चीज और बहुत ही जरूरी बात जो मुझे लगता है कि जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत काम की होगी, और वो ये है कि आप दोनों लोग स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अदाबाजी के साथ नहीं करते हैं कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नीचे झुक गए, तिरछे हो गए, टेढ़ा मुंह कर लिया, आप लोग बहुत सलीके से और बहुत नफासत के साथ गाते हैं।
2: तो ये मेरे ख्याल से हम जिनके गाने गाते हैं, मुकेश साहब के, तो उनके गानों की डिमांड भी वही है कि अगर उनको उसी तरीके से गाना चाहिए जैसा हम गा रहे हैं, शायद अगर हो सकता किशोर कुमार जी के गाने गा रहे होते तो उसकी डिमांड वो होती कि उसके अंदर थोड़ी चंचल, थोड़ा सा उछल कूद, थोड़ा सा ऑडियंस में चले जाना, या वो वहां होता।
0: बिल्कुल गोविंद,
1: मैं तो मुकेश जी के वीडियोस जितने देखे हैं उसमें उन्होंने सब सीरियस होकर गाया है,
0: वो तो हारमोनियम
2: लेके,
1: तो लेकिन वो एंट्री कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, वो चीज मैंने मुख्तार भाई से सीखा है।
0: मैंने
1: काफी शोज इनके साथ किए हैं तो मैंने इनको सिर्फ नोटिस किया है कि ये कैसे एंट्री कर रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे गा रहे हैं, कितनी सादगी से गा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने ये बात पूछी,
2: इसीलिए आज मॉडेस्टी
1: नहीं, मैं बस वो चीज इनसे ही मैंने सीखा है। और सिंगिंग में भी बोलूं तो मुकेश जी को मैं सुनता हूं, लेकिन मुकेश जी को सुनने के बाद एक बार इनको जरूर सुन लेता हूं।
0: क्या बात है,
1: इन्होंने कैसे गाया।
0: अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग मिलकर कोई गाना गाएं, तय कर लीजिए कि वो कौन सा गाना होगा, मुखड़ा अंतरा, दूसरा अंतरा भी हम सुनना चाहेंगे जितना। अच्छा, आप गा सकते हैं। तो बताइए कि आप लोग कौन सा गाना चुन रहे हैं जिसमें एक शुरू करेगा, दूसरा उस गाने को आगे बढ़ाएगा, फिर अंतरे आएंगे।
2: यस, एक बहुत ही सच्चाई की पर लिखा हुआ जो गाना है, सज्जन रे झूठ मत बोलो।
0: क्या बात, शैलेंद्र जी का गाना, फिल्म का नाम तीसरी कसम, शंकर जयकिशन।
2: सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो।

क्या बात है, कितना शानदार माहौल आप लोगों ने बनाया, कितना अच्छा लगा। ये गाना भी ऐसा है जो एक जिंदगी का जरूरी सबक सिखाता है जी।

पार्श्वगायक मुकेश की याद में आज हमने एक विशेष पेशकश आपके सामने रखी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। इनसे बात की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।

0: आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। मुकेश जी से जुड़ी बातें और यादें इतनी सारी हैं कि इस कार्यक्रम का अगला भाग भी हम लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 4 बजे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को पेश किया जुबैर खान ने। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज पिटारा लाया था
0: आज के मेहमान।
1: आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड लिमिटेड की स्थापना के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इंस्टीट्यूट की स्थापना से राज्य में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। जेपीएससी की नियुक्ति परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आज रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। मौके पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ली गई जेपीएससी के सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी आज सरायकेला खरसावां में कोल्हान के प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन की मजबूती पर जोर दिया। मौके पर श्री बाउरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कथित रूप से गिरती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सरकार पर जनहित के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को गति देने के लिए आज सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ तथा बीएलओ 2 की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसआईआर को समावेशी बनाने पर चर्चा हुई। रांची के बूथों पर भी चुनाव पाठशाला और बैठक के दौरान एसआईआर से जुड़े विषयों पर विमर्श हुआ। और हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार में छापेमारी की। इस दौरान जेल से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: तो सैकड़ों फूल एक साथ खिल गए। चांद की परछाई ने धरती को रोशन कर दिया।

खोलती आंखें, वो आंखें झील हैं, वो आंखें पहाड़ों के बीच जंगलों पर खिले फूल हैं, जिसकी खूबसूरती विरले ही जान पाते हैं। उन आंखों में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जज्बात हैं, कह गई आंखें बहुत कुछ।

उनके आने से बह चली जज्बात की नदी, उनके आने से पत्थर पिघल गए, उनके आने से बर्फीले पहाड़ संगमरमर की चादर ओढ़कर मुस्कुरा उठे, चंचल झरने लयबद्ध होकर झरने लगे, उनके आने से मन पर छाई धुंध छट गई।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। कहीं टूट न जाए इंतजार की माला, कहीं रह न जाए इंतजार अधूरा। ओ चांद कहना उनसे कोई है जो बाट जोहता है, न जाने कितने प्यार करने वालों का साझीदार रहा है ये चंद्रमा। चंद्रमा से दुनिया के न जाने कितने लोगों ने साझा किए अपने मन के भाव। ये चंद्रमा सबका संदेशा ले जाता है, चंद्रमा से कहो जाकर कहते उनसे वो सब कुछ जो कह नहीं सके होठ।

सद्या स्नाता लड़की के खुले बालों की सी खूबसूरती बिखरी थी फिजाओं में, जब उसकी पदचाप मिली। वादी की सूखी पत्तियां हरिया गईं, दूर कहीं से आती झरने की आवाज, नदियों के किनारे एक दूसरे से मिलने को आतुर हो उठे। नदी पर छन छन करके गिरती चांद की रोशनी ने दो चाहने वालों के दिलों को भिगो दिया।

जिंदगी में किसी का आना बड़ा मानीखेज होता है। जिंदगी में किसी के आने से जाग उठते हैं अरमान दिल के, किसी के आने से जाग उठते हैं सोए हुए जज्बात, किसी के आने से मौसम रंगीन हो जाता है, बरसों बरस की खुशियां एक पल में हासिल हो जाती हैं किसी के आने से, किसी के आने से ख्यालों में रंग ही रंग भर जाते हैं।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

शाम 5:35 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम सुनेंगे घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आज चर्चा होगी स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को लाभ। साथ ही चर्चा में आप सुनेंगे बरसात के मौसम में खान पान। वार्ता में सुनेंगे दुर्गा कुमारी को। शीर्षक होगा महिला हिंसा का बदलता स्वरूप एवं कानूनी व्यवस्था। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 6:02 पर ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम सुनेंगे खेती बाड़ी। खेती बाड़ी के कार्यक्रम में आज चर्चा होगी खेतों को परती ना छोड़े किसान और कम पूंजी में सागों की खेती। वार्ता में सुनेंगे कृषि में नीम का महत्व, इस पर जानकारी देंगे सत्येंद्र प्रसाद सिंह। 6:30 पर महिला कृषकों के लिए कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण सभा। ग्रामीण सभा कार्यक्रम में आज चर्चा होगी महिलाओं के लिए उन्नत कृषि यंत्र। साथ ही आज की बात में आप सुनेंगे कुटीर उद्योग में रोजगार। भेंटवार्ता में सुनेंगे मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण, इस पर जानकारी देंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे। इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।

7 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 7:10 पर जिले में आजकल आप सुन सकें यह आकाशवाणी के रांची केंद्र से 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे एक रंग, 7:45 पर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे भेंटवार्ता में दांतों की आम समस्या एवं देखभाल, भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर अब्दुल जफर और भेंटकर्ता होंगे श्री संजीव कुमार लाल और कार्यक्रम होगा कल्याणी।

8 बजे का समय होगा संसद समीक्षा का, जिसे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से का समय होगा रात्रि के 8:15।

रात्रि के 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू में समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आज के फनकार सुन सकेंगे विविध भारती से और 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा में सुनेंगे आप कुछ फिल्मी नगमे। 11:00 का समय होगा हिंदी में समाचार का और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का। रात्रि के 11:10 पर हम अपने सभा का समापन करेंगे। तो ये थे संक्षिप्त रूपरेखा इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में। बहनों, मॉनसून के आते ही प्रकृति में बहार छा जाती है, सारा वातावरण हरा भरा दिखाई देने लगता है। बहनों, हरियाली प्रतीक है खुशियों का, हरा भरा होने का, और बारिश का मौसम भला किसे अच्छा नहीं लगता। बरसात आती है तो खुशियां लेकर जरूर आती है, लेकिन थोड़ी सी बढ़ती गई लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है। जी हाँ बहनों, बारिश के मौसम में कई वायरस, कीट पतंगों को पनपने का पूरा मौका मिल जाता है, और हम देख सकते हैं कि अधिकांश लोग बीमार पड़ते हैं इस बरसात के मौसम में ही, क्योंकि दूषित पेयजल का सेवन भी जो है हमें बीमार कर सकता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि दूषित जो पानी होती है उससे सीधा असर होता है हमारे शरीर पर, और इससे हमें पीलिया, हैजा, दस्त इत्यादि बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। इससे बचने के लिए बहनों चाहिए कि बरसात में जो भी आप पानी पीने के लिए उपयोग कर रहे हैं वो शुद्ध होनी चाहिए। हो सके तो बरसात भर पानी को उबालकर और छान कर पिए या फिर फिल्टर करके पिए। नदियों का सीधे पानी कभी भी प्रयोग में नहीं लाने चाहिए, क्योंकि नदियों की जो पानी बहती है उसमें कई

प्रकार के वायरस और दूषित कीटाणु होते हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इसलिए नदियों के पानी सेवन करने से बचें और ध्यान रहे कि पानी हमेशा बरसात पर शुद्ध पानी का ही प्रयोग करें। खाने में भी थोड़ी बहुत ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है बहनों, कि जैसे कि बरसात में हमारी जो पाचन शक्ति है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, इसीलिए इस मौसम में गरिष्ठ भोजन करने से बचें और हो सके तो बासी भोजन का सेवन कदापि न करें, क्योंकि बासी भोजन में फंगस लगने की संभावना बढ़ जाती है इस मौसम में और उनके सेवन से हम बीमार पड़ सकते हैं। खाना जब भी रखें तो हमेशा ढक कर रखें और फल सब्जियां जो भी हों जब भी हम कहीं पर रखते हैं तो उसे अच्छी प्रकार से ढक के रखने चाहिए, नहीं तो उसमें जब मक्खियां बैठती हैं तो उसे दूषित कर सकती हैं और फिर जब उसका हम सेवन करते हैं तो बीमार पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखें बहनों कि जो भी खाना हो उसे आप ढक कर रखें और सुरक्षित रखें। स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है बहनों कि हम ताज़े फल सब्जियों का सेवन करें। हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि ताज़े फल फूल सब्जियों का ही सेवन करें, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ाते हैं। और अंकुरित अनाजों का सेवन भी ज़रूर करें, ये सभी हमारे जो संतुलित आहार में आते हैं और ये सभी हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। खान पान के साथ साथ बहनों जितने स्वस्थ शरीर के लिए जितने खान पान जरूरी है उतनी ही ज़रूरी है नियमित व्यायाम की। व्यायाम करना बहुत ही सभी के लिए आज आवश्यक हो गया है, क्योंकि आज जो मनुष्य है अक्सर मनुष्य जो है वो चिंता से घिरा है, तनाव में रहता है और शारीरिक परिश्रम नहीं हो पाता है, तो ये सभी से बचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम व्यायाम को अपने नियमित जीवन में नियमित दिनचर्या में शामिल करें। और ख़ासकर बहनों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बहनें जो अधिकांश रूप से घर में ही रहती हैं तो व्यायाम अपने जीवनचर्या में ज़रूर शामिल करें। और इसके साथ साथ बहनों आप थोड़ी बहुत ये सब बातों पर यदि आप ध्यान रखती हैं तो निश्चय ही आप बरसात का मौसम का पूरा पूरा आनंद ले पाएंगी। तो चलिए बहनों, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के बाद बहनों चलिए हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता। विषय है महिला हिंसा का बदलता स्वरूप एवं कानूनी व्यवस्था। वार्ताकार होंगी दुर्गा कुमारी।
1: भारतीय संस्कृति में क्या खूब कहा गया है, यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। मैं यह बात बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं खुद भी एक नारी हूँ। आज का हमारा शीर्षक है महिला हिंसा का बदलता स्वरूप एवं कानूनी व्यवस्था। आज हमारा देश हर क्षेत्र में उन्नति के पथ पर चल रहा है, हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इतने समय बाद भी हमारे देश में आज भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का कोई उचित समाधान नहीं मिल पाया। आज भी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा है। महिलाएं घर या सार्वजनिक स्थानों, दफ्तरों, कहीं भी हिंसा का शिकार हो जाती हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार बहला फुसला कर भगा ले जाना, बलात्कार, दहेज के लिए मार देना, शारीरिक शोषण, यौन उत्पीड़न और अपहरण जैसे गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। और यह सारे हिंसाग्रस्त अपराध महिलाओं पर किए जाते हैं। यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हिंसा का मतलब केवल शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि किसी को अशब्द बोलकर उसे मानसिक तनाव देना भी एक तरह का हिंसा है। किसी भी राष्ट्र की तरक्की हेतु उस राष्ट्र की महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र का हालात बता सकते हैं। कहा जाता है कि एक शिक्षित नारी ही राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति का आधार होती है। अतः नारी शिक्षा को नज़रअंदाज करने का अर्थ देश के भविष्य को अंधकार में डाल देना है। आज घरेलू हिंसा समेत बढ़ते अन्य महिला अपराध चिंता का विषय है। इसको लेकर अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति महिलाएं जागृत हों, इसके लिए सबसे आवश्यक है उनका शिक्षित होना। इसके लिए माता पिता के साथ साथ घर के सभी सदस्यों को जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें यह समझना ही होगा कि शिक्षा ही अंधकार को प्रकाश में बदलता है। महज पुलिस की भूमिका को केंद्र में रखकर महिलाओं के लिए समाज को सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता है। हमें लैंगिक रूप से संवेदनशील सामाजिक और कानूनी न्याय व्यवस्था की जरूरत है। आज की बेटियां शिक्षित हो ताकि वो समाज व देश में अपना अधिकारों को जान सके। यही नहीं, शिक्षित महिला आर्थिक व पारिवारिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होती हैं। आज की पीढ़ी अगर शिक्षा से वंचित है तो इसका जिम्मेदार उनके माता पिता व परिवारजन ही हैं, कारण चाहे जो भी हो। आज महिला अपराध व घरेलू हिंसा अशिक्षित समाज व अवसादग्रस्त समाज की मानसिकता का परिणाम है। लगभग 3 दशक पूर्व एक प्रभावशाली आलेख में अमर्त्य सेन ने लिखा कि 10 करोड़ से भी अधिक महिलाएं लापता हैं। जीवन प्रत्याशा के मामले में महिलाओं की हर आयु वर्ग में पुरुषों पर बढ़त के बावजूद दुनिया के अनेक हिस्सों में महिलाओं व पुरुषों का अनुपात पुरुषों के पक्ष में है। अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। महिलाओं के प्रति होती हिंसा में लगातार इजाफा हो रहा है और अब तो ये चिंताजनक विषय भी बन चुका है। हालांकि महिलाओं को जरूरत है कि वे खुद दूसरों पर निर्भर न रहकर अपनी जिम्मेवारी खुद लें तथा अपने अधिकारों सुविधाओं के प्रति जागरूक हों। इसके अलावा महिलाओं को भरपेट खाना न मिलना, सही स्वास्थ्य सुविधा की कमी, शिक्षा के पर्याप्त अवसर न होना, पत्नी से मारपीट, परिवार में वृद्ध महिला की अनदेखी आदि समस्याएं भी महिलाओं को सहनी पड़ती थी। भारत में महिला हिंसा से जुड़े केसों में होती वृद्धि को कम करने के लिए 2015 में भारत सरकार जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल लाई। इसका साल 2000 के इंडियन जुवेनाइल लॉ के बदलने का था, क्योंकि इस कानून के चलते निर्भया केस के जुवेनाइल आरोपी को सख्त सजा नहीं हो पाई। इस कानून के आने के बाद 16 से 18 वर्ष के किशोर जो गंभीर अपराध में संलिप्त हैं के लिए भारत कानून के अंतर्गत सख्त सजा का प्रावधान है। सामाजिक अपराध एक गहरी जड़ वाली बीमारी की अभिव्यक्ति है जिसे अहंकार कहा जाता है। अहंकार के कई कारण हो सकते हैं। छेड़खानी जैसे अपराध करने वाले अपराधियों को गोपियों को छेड़ने और यमुना नदी में उनके कपड़े चुराने वाली कहानियों से देवी प्रेरणा और बहुत ताकत मिलती है। किसी लड़की को परेशान करना, पीछा करना और लुभाना पितृसत्ता का सामान्य और जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। यदि यह अधिकार लड़की द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो उसे निराश व्यक्तियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। किसी महिला का अपराध, अपहरण, चीरहरण या उसकी अग्नि परीक्षा दंडनीय अपराध है। सामाजिक अपराध का एक दूसरा कारण यह भी है कि महिलाएं ऊर्जा का एक पावर हाउस हैं और कठिन कार्यों को धैर्य और सहन शक्ति के साथ करती हैं, इसलिए उन्हें गुलाम बनाने के लिए या अधीनस्थ बनाकर रखने के लिए नैतिकता की पौराणिक कहानियां महिलाओं के इर्द गिर्द बनाई जाती हैं, जिन्हें चतुराई से समाज में फैलाया जाता है और उन्हें अपने विरुद्ध हर अपराध और शोषण को सहने के प्रशिक्षण दिया जाता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के उदाहरणों का उद्देश्य उनकी आत्मबल को कमजोर करना और मनोबल को गिराना है, ताकि वह घर और बाहर हर जगह एक अधीनस्थ के रूप में कार्य करती रहें। महिलाओं के खिलाफ हिंसा आमतौर पर महिलाओं को अधीनस्थ स्थिति में रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण का एक उपकरण है। हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जो हिंसा के शिकार लोगों को हिंसा के बाद भी सबल बनने में मदद करें। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। भारत में महिलाएं हर तरह के सामाजिक, धार्मिक, प्रांतिक परिवेश में हिंसा का शिकार हुई हैं। महिलाओं को भारतीय समाज के द्वारा दी गई हर तरह की क्रूरता को सहन करना पड़ता है, चाहे फिर वो घरेलू हो या सामाजिक, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक। भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बड़े स्तर पर इतिहास के पन्नों में साफ देखा जा सकता है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति आज के मुकाबले बहुत सुखद थी, पर उसके बाद समय बदलने के साथ साथ महिलाओं के हालातों में भी काफी बदलाव आता चला गया। परिणाम स्वरूप हिंसा के होते इजाफे के कारण महिलाओं ने अपने शिक्षा के साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समारोह में भागीदारी के अवसर भी खो दिए। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के कारण उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, उन्हें अपने मनपसंद कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी, उन्हें गुलाम बना के रखा जाने लगा। महिलाओं को सीमित तथा आज्ञाकारी बनाने के पीछे पुरुषों की ही सोच थी। पुरुष महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखते थे, जिसे वे अपनी पसंद का काम करवा सके। भारतीय समाज में अक्सर ऐसा माना जाता है कि हर महिला का पति उसके लिए भगवान के समान है। उन्हें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहिए तथा हर चीज के लिए उन्हें अपने पति पर निर्भर रहना चाहिए। पुराने समय में विधवा महिलाओं के दोबारा विवाह पर पाबंदी थी तथा उन्हें सती प्रथा को मानने का दबाव डाला जाता था। मध्यकालीन युग में इस्लाम और हिंदू धर्म के टकराव ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बढ़ावा दिया। नाबालिग लड़कियों का बहुत कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था और उन्हें हर समय पर्दे में रहने की सख्त हिदायत दी जाती थी। इसी कारण महिलाओं के लिए अपने पति तथा परिवार के अलावा बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क स्थापित करना नामुमकिन था। इसके साथ ही समाज में बहुविवाह प्रथा ने जन्म लिया, जिससे महिलाओं को अपने पति का प्यार दूसरी महिलाओं से बांटना पड़ता था। परंतु अब महिला हिंसा का स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, अब उनको बाहर तो जाने दिया जाता है, लेकिन बाहर और घर दोनों जगह परेशान किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2/3 विवाहित भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं और भारत में 15-49 आयु वर्ग की 70% विवाहित महिलाएं पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार हैं। हम सब जानते हैं सोशल मीडिया का क्रेज कितना बढ़ा हुआ है, उसके द्वारा भी महिलाओं का गलत उपयोग किया जाता है। उनके निजी तस्वीरों को वायरल करना, तरह तरह के मीम्स बनाना, फनी वीडियोस बनाकर उनका गलत उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि आधुनिक भारत में भी साइबर क्राइम के जरिए महिलाओं का अत्यधिक शोषण किया जाता है। ये ऐसा करना इसलिए भी संभव हो पाता है क्योंकि महिलाएं खुद भी जागरूक नहीं हैं और दूसरा कारण जानकारी का अभाव होना भी है। हालांकि इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है, जैसे स्लोगन लिखना, इसके रोकथाम के लिए बहुत सारी धाराएं लागू की गई हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार अधिनियम, संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार, सती आयोग निवारण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण निषेध अधिनियम, महिलाओं का अश्लील चित्रण प्रतिषेध अधिनियम इत्यादि, पर यह महज किताब के पन्नों में ही सिमट कर रह गया है। इसे हम धरातल पर अभी भी नहीं उतार पाए हैं। जिस दिन हम ये ठान लें तो निश्चित ही हमारा घर, परिवार, समाज, राज्य और देश बदलेगा। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा कल्पना हो या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। आज के आधुनिक युग में भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमतर रखा जाता है। अगर महिलाओं को उचित शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी तो वह आगे कैसे बढ़ेंगी। जिस घर की महिलाएं शिक्षित ना हो तो वो अपने आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देंगी। वैसे भी कहा गया है कि बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ और पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। एक पुरुष को शिक्षित करके हम एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, परंतु किसी नारी को शिक्षित करके हम एक परिवार को शिक्षित करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर इस बात पर अमल कुछ लोग ही कर पाते हैं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के बिना मनुष्य जीवित पशु पक्षी के समान है, तो फिर समाज के अहम हिस्से से स्त्री को शिक्षा से क्यों वंचित रखा जाए। हमारे समाज में पुरुष और स्त्री एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो फिर अधिकार भी दोनों को एक समान प्राप्त होना चाहिए। वैसे तो नारी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। 2015 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की शुरुआत बालिकाओं को शिक्षित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। यह हमारे लिए बहुत ही खेद की बात है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिलता है। आज भी पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को हर कदम पर रोक टोक किया जाता है। एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, मातृ दिवस जैसे कई सारे दिवस मनाए जा रहे हैं, परंतु बात जब हमारे दैनिक जीवन में उतारने की हो तो लोग भूल जाते हैं। शायद महिला सशक्तिकरण का अर्थ ही है महिलाओं को पूर्ण रूप से शिक्षित करना एवं उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना। अगर उन्हें अवसर मिले तो वो जरूर निखरेंगी। बस जरूरत है हमें अपनी सोच बदलने की, उसे अपने जीवन में पहल करने की। अब जाते जाते बस मैं इतना ही कहूँगी कि हमें ना देवी सा मान चाहिए ना दासी सा अपमान चाहिए। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी को नारी सा सम्मान चाहिए। धन्यवाद।
0: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता महिला हिंसा का बदलता स्वरूप एवं कानूनी व्यवस्था। जानकारी दे रही थी दुर्गा कुमारी। और इसी के साथ बहनों, अब समय हो चला है कि हम आपसे ले जाएं कार्यक्रम घर आंगन से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, ये भी 103 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जेएफडीसी की स्थापना के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में इसे लेकर सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता एसआरएफटीई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इंस्टीट्यूट की स्थापना से राज्य में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय प्रतिभाओं को तराशने में भी मदद मिलेगी। जेपीएससी की नियुक्ति परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आज रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग के खिलाफ नारेबाजी की और ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ली गई जेपीएससी की सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में हुए गोलीकांड मामले में तीन आरोपियों ने पलामू सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस मामले का मुख्य आरोपी भी कोर्ट में सरेंडर कर चुका था, जबकि दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इस कांड में शामिल 17 नामजद आरोपियों में से 6 के जेल चले जाने के बाद अन्य 11 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने आज सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं और साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान शिशु वार्ड में मरीजों की संख्या अधिक पाई गई, जिस पर उपायुक्त ने व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में आज डीएमएफटी की प्रबंधकीय समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के समग्र विकास, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा लंबित योजनाओं के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चला है ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम खेती बाड़ी का।

श्रोताओं, अभी का जो मौसम है वो काफ़ी सुहावना है। रिमझिम फुहार ने सारे वातावरण को हर्षोल्लास से भर दिया है और इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और खेती बाड़ी के काम में बड़े ज़ोर शोर से जुट गए हमारे किसान भाई। हो भी क्यों ना, क्योंकि मानसून का इंतज़ार उन्हें बेसब्री से होता है और उन्हें बहुत सारे काम अभी भी खेत में जो खाली पड़े हैं उन्हें करनी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे खेत देखा जाए तो हमारे किसान भाई खाली छोड़ देते हैं और इससे उन्हें नुकसान ही होता है। हमारे किसान भाई ऐसा ना करें, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो जो हमारे किसान भाई खेत को खाली छोड़ते हैं उनका उपयोग कई तरीके से कर सकते हैं, और जैसे कि उसमें अभी हरी खाद लगाने का भी बहुत अच्छा अभी मौसम है। किसान भाई यदि हरी खाद लगाना चाहे तो अभी हरी खाद की बुआई कर सकते हैं। इससे न केवल खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ती है बल्कि खरीफ फसलों की उपज में सुधार भी होता है। तो हरी खाद व तकनीक है श्रोताओं, जिसमें खेत में विशेष प्रकार की फसलें बोई जाती हैं जो मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन और पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। ये फसलें 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती हैं और फिर इन्हें खेत में जोतकर ही मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे कि ये सड़ गल कर प्राकृतिक रूप से खाद में बदल जाती हैं। तो हमारे जो किसान भाई अगर हरी खाद की खेती करना चाहते हैं, वे ढैचा, उड़द, मूंग, लोबिया आदि फसलों की हरी खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख फसल होता है ढैचा, जो मात्र 45 दिनों में तैयार हो जाता है और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने में काफ़ी सहायक है। अगर जो किसान भाई हमारे ढांचा लगाना चाहते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ 20 से 25 किलो बीज की दर से आवश्यकता होती है और उड़द, मूंग और लोबिया के लिए 8 से 10 किलो बीज की मात्रा पर्याप्त होती है। तो सबसे पहले खेत में श्रोताओं पानी भरें ताकि पर्याप्त नमी बन सके, और अभी जब बारिश हो रही है तो खेत में नमी हो तो पानी पटाने की आवश्यकता नहीं है। फिर डिस्को हैरो से खेत को जोत कर भुरभुरा कर लें। बीज बुआई के बाद खेत को समतल कर दें और 15 से 20 दिन बाद सिंचाई करें। जब फसल तैयार हो जाए तो उसे जोत कर मिट्टी में मिला दें और दोबारा पानी भरें। यदि आप उड़द, मूंग या लोबिया जैसे फसलों को हरी खाद के तौर पर बुआई करते हैं तो उनके फलियों को तोड़कर बाकी पौधों को खेत में मिला दें, या पौधे कुछ ही दिनों में सड़कर उपजाऊ खाद में बदल जाती है। ध्यान रहे श्रोताओं कि जब भी फसलों में फलियां निकल आती है तभी सबसे अच्छा समय होता है उसे खेतों में मिलाने का, तो इस बात का ध्यान रखें। और इन से जो खाद तैयार होती है उससे मिट्टी में जैविक तत्वों की जो है वृद्धि, पीएच मान स्तर में सुधार होती है, नाइट्रोजन की बचत होती है अगली फसल के लिए। अगले फसल में जो हमारे किसान भाई नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे उसमें नहीं के बराबर डालने की आवश्यकता पड़ेगी। और कुल मिलाकर हरी खाद एक ऐसी पारंपरिक और प्राकृतिक तकनीक है जिसे अपनाकर किसान भाई अपने खेतों को ताकत को दुगना कर सकते हैं। और दूसरी बात कि वे रासायनिक उर्वरकों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं और उससे रासायनिक उर्वरक में उन्हें काफ़ी लागत भी आती है तो उससे भी इन उससे बच सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हरी खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं हमारे किसान भाई, या फिर फल वृक्ष भी लगा सकते हैं उन खाली पड़े खेतों में। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ खेतों को कोड़ा लगाकर और मिट्टी को भुरभुरा बनाकर उसमें गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद डालकर भी फल वृक्ष लगाई जा सकती है, जिससे कि आपको भविष्य में इसका उत्पादन मिलते रहेगा और आपको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। इसके अलावा चाहे तो औषधीय पौधे भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि औषधीय पौधों की मांग आज बाज़ारों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उसके मूल्य भी। तो औषधीय पौधे लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और औषधीय पौधे के लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई की, बहुत ज़्यादा उर्वरक की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए हमारे किसान भाई चाहे तो
औषधीय पौधे, फूल, सब्जियां इत्यादि की भी उसमें

0: लगाकर उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो खेतों को कभी भी खाली ना छोड़े किसान, बल्कि उसका सदुपयोग करें, उसमें कुछ ना कुछ जरूर लगाएं, इससे आपकी जो अतिरिक्त कमाई है वो होती रहेगी। तो चलिए श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए, प्रकृति ने हमें वो सभी चीज़ें प्रदान की हैं श्रोताओं, जिसकी हमें ज़रूरत या आवश्यकता पड़ती है, और वो हमारे आसपास ही होती है, वो भी निशुल्क। जी हाँ श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं नीम की। नीम का वृक्ष एक और गुण अनेक। औषधीय पौधों में नीम का बड़ा महत्व है, और कृषि क्षेत्र में भी इसका प्रयोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर होता है, कीटनाशी के रूप में, उर्वरक के रूप में। तो कृषकों के लिए नीम जो है, कितनी उसका आवश्यकता है और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इस पर विस्तार से जानकारी देंगे सत्येंद्र प्रसाद सिंह। कृषि में नीम का महत्व, ये सुनते हैं ये वार्ता।
1: किसान भाइयों, आज मैं आपको नीम का कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है, इस विषय में बताऊंगा। किसान भाइयों, नीम का वृक्ष प्रकृति का अनमोल उपहार है। नीम से तैयार किए गए उत्पादों की कीट नियंत्रण जैसी शैली अनोखी है, जिसके कारण नीम से तैयार दवा विश्व की सबसे अच्छी कीट नियंत्रण दवा मानी जाती है। परंतु अपने आसपास मौजूद इस अद्भुत खजाने को हम लोग भूल गए हैं, इसी का फायदा उठा रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। ये नीम की निबोली व पत्तियों से कीटनाशक व दवाएं महंगे दामों में बनाकर बेच रही हैं। कीटों को दूर भगाना, जी हाँ किसान भाइयों, इसकी बढ़ती कड़वी गंध से सभी जीव दूर भागते हैं। ऐसे कीट जिसकी सुगंध की क्षमता बहुत अधिक विकसित होती है, वह स्थान या पौधों को छोड़कर दूर चले जाते हैं जिन पर नीम के रसायन डाले गए हों, जहर के रूप में। श्रोताओं, मुलायम त्वचा वाले कीट जैसे चिंपा, तेला, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स आदि नीम के तेल के संपर्क में आने पर मर जाते हैं। नीम का मानव जीवन पर जहरीला प्रभाव नहीं होना ही इसको दवाओं में उच्च स्थान दिलाता है। नीम के फल जून से अगस्त तक पककर गिरते रहते हैं, इसे निबोली कहते हैं। निबोली का गुदा स्वाद में हल्का मीठा होता है। पके फल में औसत तौर पर 23.8% छिलका, 47.5% गुदा और 18.6% कवच आदि विद्यमान होते हैं। गिरने पर निबोली का छिलका और गुदा सड़ गलकर जल्दी ही समाप्त हो जाता है, किंतु इसकी गिरी सफ़ेद गुठली से ढकी होने के कारण अधिक समय तक सुरक्षित रहती है। बीज को तोड़ने पर इसका आधे से अधिक भाग गुठली के रूप में अलग हो जाता है तथा शेष गिरी के रूप में प्राप्त होती है। अच्छे ढंग से एकत्रित व संग्रहित गिरी हर भूरे रंग की होती है। निबोली एकत्र करना, किसान भाइयों, निबोली पककर पीली होने लगे तो इन्हें वृक्ष पर ही तोड़ लेना सबसे उत्तम माना जाता है। इस स्थिति में अजारेक्टिन की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि सभी निबोलियां एक साथ न पककर धीरे धीरे अन्य फसलों की तरह पकती रहती हैं, अतः आर्थिक दृष्टि से जमीन पर टूट कर पड़ी हुई निबोलियों को बिना उत्तम रहता है। झाड़ू लगाकर निबोली एकत्र करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे बीज में हानिकारक जीवाणुओं के संक्रमण का खतरा रहता है, जो बाद में चलकर बीज और इसके तेल को खराब करते हैं। 4 से 7 दिन में एक बार निबोलियों की बिनाई कर लेनी चाहिए। सिरकाया मुद्रा छुड़ाना, किसान भाइयों, पूरे फल को सुखाकर संग्रह करना अधिक लाभप्रद है, किंतु वर्षा में गुदे युक्त फल को सड़न से बचाकर सूखा पाना लगभग असंभव है। अतः निबोलियों को पानी में डालकर धो देते हैं, ताकि सभी मृदा व छिलका छूटकर बीज से अलग हो जाए। बीज

सुखाना। श्रोताओं, उपरोक्त तरीके से प्राप्त बीज को अधिक गर्म सतह पर और अधिक धूप में सुखाना ठीक नहीं, किंतु नमी को जल्दी से जल्दी सुखाना भी आवश्यक होता है। अतः बीज को टाट, बोरा, कपड़ा या चटाई पर बिछाकर हल्की धूप व छाया में सुखाना चाहिए। पका फर्श, प्लास्टिक सीट, लोहे की सीट धूप में अधिक गर्म हो जाती है, इसलिए इन पर सुखाना नहीं चाहिए। भंडारण, श्रोताओं, अच्छा यह रहता है कि बीज से तेल 3 से 6 माह में निकाल लिया जाए। गिरी पुरानी होने पर तेल कम हो जाता है, किंतु यदि इसके भंडारण की जरूरत पड़े तो इससे धूप, नमी, गर्मी से बचाकर सूखे ठंडे छायादार स्थान में कपड़े या जूट के बोरी या थैली में रखना चाहिए। प्लास्टिक के बनौली से रखना ठीक नहीं माना जाता। बीज के गुदे में निबिडीन 2% तक पाया जाता है। इसमें जीवाणु रोधक गुण विद्यमान होते हैं। किसान भाइयों, नीम के बीज को खूब महीन पीसकर पाउडर बना लें। इसमें बराबर या दोगुनी मात्रा में कोई निष्क्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी का बुरादा, चावल की भूसी या बालू मिट्टी मिला लेनी चाहिए। इस पाउडर को फसल पर इस ढंग से भुड़कें कि यह पत्ती और तने पर चिपक जाए। फसल पर लगे कीड़े इसे खाकर मर जाएंगे। बीज की भांति नीम की खली या पाउडर बिना कुछ मिलाए ही सीधे फसल पर भुरका जा सकता है। नीम की खली यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो इसे खेत की मिट्टी में बुवाई से पहले सीधे मिला दें, जो अनेक प्रकार के हानिकारक जमीन के कीड़ों को मार देता है, जिससे खेत में यूरिया की बचत हो जाती है। तेल का प्रयोग, जी हाँ किसान भाइयों, बढ़िया मशीन उपलब्ध हो तो नीम के तेल की 5 से 10 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। नीम के तेल की साबुन के साथ पानी में घोलें। एक टंकी में 1 चम्मच साबुन पाउडर व लगभग 75 से 100 ग्राम तेल फसल पर छिड़कें। इस घोल के कुछ देर तक रहने पर तेल व पानी अलग अलग हो जाता है, अतः इसे थोड़ी थोड़ी देर तक खूब मिला दें। मिलाते रहना चाहिए। ध्यान रखें कि नीम का तेल अधिक मात्रा में एक जगह पत्ती आदि पर पड़ने से उसे जला भी देता है। पत्ती को पीसकर, यदि नीम का तेल गिरी बीज या खली न उपलब्ध हो तो नीम की 3 से 4 किलो ताजी पत्तियों को पीसकर 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़कें। छानकर यह घोल फसल पर छिड़कने से फसल की अनेक प्रकार के कीड़ों से सुरक्षा हो जाता है। जैविक खेती में गाय और नीम का महत्व, जी हाँ श्रोताओं, 1 बीघा जमीन सिर्फ 1 गाय और 1 नीम। जैविक खेती भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है और कृषकों की मुख्य आय का साधन खेती है। आज़ादी के पश्चात से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए खाद्यान्न की पूर्ति एवं आय को बढ़ाने के लिए यह अधिक आवश्यक है। जीवामृत एवं जीवाश्म बनाने की विधि एवं उपयोग, जीवामृत एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायता करता है तथा पौधों की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधे स्वस्थ बने रहते हैं तथा फसल से अच्छी पैदावार भी मिलती है। नीम एक कीटनाशक, जी हाँ किसान भाइयों,

एक शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में नीम प्राचीन काल से ही विख्यात है। पुराने जमाने से ही नीम की पत्तियां हमारे देश में अन्न भंडारण में प्रयुक्त होती आई हैं तथा गर्म ऊनी वस्त्रों को रखते समय आजकल की सभी महिलाएं नीम के पत्तियों का इस्तेमाल करती हैं ताकि ऊनी कपड़े सुरक्षित रह सकें। इधर कुछ समय से कृषि के क्षेत्र में भी नीम ने हलचल मचा रखी है। कीटनाशक दवाओं का जब बोलबाला हुआ तो अधिक से अधिक कारगर कीटनाशक बनाने की होड़ सी मच गई। सबसे पहले डॉक्टर पॉल गिलर ने DDT का आविष्कार दूसरे विश्व युद्ध के समय किया था, फिर BHC तथा मैलाथियन और अन्य सिंथेटिक कीटनाशक बाजार में उपलब्ध हुए, परंतु शीघ्र ही इनके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। श्रोताओं, वांछित कीड़ों को नाश के साथ ही साथ लाभदायक कीट जो पौधों के परागण में काफ़ी सहायक होते हैं तथा मासी कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं आदि का भी विनाश होने लगा, यही नहीं पर्यावरण प्रदूषण का खतरा भी अलग से उत्पन्न होने लगा। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु दोष मुक्त कीटनाशक पदार्थों की खोज आरंभ हुई तथा नीम इस कसौटी पर खरा उतरा। नीम का तेल, जी हाँ किसान भाइयों, नीम का तेल भी शक्तिशाली फसल संरक्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तेल निकालने के बाद बची हुई खली बहुत असरदार कीटनाशक एवं खाद का काम करती है। इस्तेमाल का या प्रयोग का तरीका तथा कीटों पर इसका असर, जी हाँ किसान भाइयों, नीम के घोल को तरीकों से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसका घोल सीधे फसल पर छिड़का जा सकता है, परंतु नई तकनीक से अब इसे घुलनशील कीटनाशक तथा पाउडर रख दाने आदि के बदला जा सकता है, जो कि बाज़ार में उपलब्ध भी है। इसको सिंचाई वाले पानी के भी रख दिया जाता है, परंतु बहुत से पदार्थों के ऊपर नीम का लेप चढ़ाकर लगाया जाता है जो मच्छरों को भगाने के काम आता है। आज विश्व भर में प्रयोगों से यह माना जाने लगा है कि नीम द्वारा उपचारित पौधे जैसी सुरक्षा पा सकते हैं। नीम के घोल के छिड़काव के कारण भी कीड़ों के खाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, वृद्धि अथवा विकास बहुत कम हो जाता है। अवरोधी प्रभाव के कारण नीम का असर पूरे पौधे में फैल जाता है, जिससे रस चूसने वाले कीड़ों से भी सुरक्षा मिलती है। इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण कीटनाशक सिद्ध हुआ है। किसान भाइयों, नीम का तेल या नीम का घोल टिड्डी को की रोकथाम के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। इसके इस्तेमाल से कीट का वृद्धि बैठता तो है परंतु नहीं जाता, कीट बहुत सुस्त हो जाता है तथा उसकी उड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। पक्षी आसानी से इनको शिकार बना लेते हैं। नीम का घोल बहुत से पट्टी खाने वाले कीट तथा चूसने वाले कीटाणु तथा सफ़ेद मक्खी आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके छिड़काव से कीट या तो आना कम कर देता है या उसके बढ़ने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं जा पाते हैं तथा बनाने से पहले ही मर जाते हैं। बहुत से कीड़ों को अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है तथा जो अंडे दिए भी जाते हैं उनसे कीड़े नहीं निकलते। अनाज के भंडारण में लगने वाले सभी प्रकार के कीड़ों को
कम करने

0: में भी यह काफ़ी कारगर साबित होता है। भंडारण में जो नीम का बहुत महत्व है, नीम की पत्तियां तथा नीम का घोल भंडारण में लगने वाले सभी प्रकार के कीड़ों को कम करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। भंडारण के समय कीड़ों को नीम के घोल से उपचारित कर सुखा कर भंडारण करने से किसी भी कीटनाशी दवा के बराबर सुरक्षा मिलती है। नीम से बनी कीटनाशी से बड़ी आसानी से तथा बिना किसी वायु प्रदूषण के मच्छर का नियंत्रण भी आसानी से किया जा सकता है। किसान भाइयों, नीम की खली खाद के रूप में भी लाभदायक सिद्ध होती है। कीटनाशक के रूप में प्रभावी होने के साथ ही साथ यह भूमि की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाती है। ऐसी संभावना नीम द्वारा उन बैक्टीरियाओं को निष्क्रिय करने के कारण होता है जो अमोनिया को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इसके इस्तेमाल से पर्यावरण प्रदूषण तथा कीड़ों की प्रतिरोधक प्रजातियां उत्पन्न होने का भय भी नहीं रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं किसान भाइयों कि नीम में केवल गुण ही गुण है और इसका हमारे आबो हवा पर बहुत अच्छा असर भी पड़ता है। इसलिए अपने घर के आसपास नीम का गाछ या नीम का वृक्ष अवश्य लगावें और उससे अपने खेती के कामों में और अनाज के भंडारण में या ऊनी सूती या अन्य कपड़ों के रखरखाव में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे केवल लाभ ही लाभ है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वार्ता कृषि में नीम का महत्व, इस पर जानकारी दे रहे थे सत्येंद्र प्रसाद सिंह। चलिए अब हम बातें करते हैं श्रोताओं की आधुनिक समय में श्री विधि तरीके से धान की बुआई करना किस प्रकार से लाभदायक है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो श्री विधि से धान की बुआई किसानों के लिए पारंपरिक तरीकों से कहीं बेहतर साबित हो रही है। इस वैज्ञानिक तकनीक में कम बीज, कम पानी और कम लागत में सामान्य रूप से अधिक पैदावार मिलती है। इस विधि में कम उम्र के पौधे लगाए जाते हैं और खेत में उचित दूरी रखी जाती है जिससे पौधों को हवा और धूप बेहतर तरीके से मिल सके। इससे पौधे मजबूत होते हैं और उत्पादन में वृद्धि होती है। कम संसाधनों में ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान भाई इस विधि द्वारा, और यही कारण है कि आज श्री विधि अपनाकर हमारे किसान भाई कम मेहनत में अधिक उत्पादन ले रहे हैं। तो हमारे किसान भाई अभी धान की जब बुआई कर रहे हैं तो इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत शारदा सिन्हा की आवाज़ में, और इसी के साथ अब समय हो चला है कि हम आपसे ले इजाज़त कार्यक्रम खेती बाड़ी से। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अगला कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा। ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। हमारी जो बहनें हैं वो एक सफल गृहस्थ होने के साथ साथ एक सफल महिला कृषक भी होती हैं। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब ग्रामीण महिलाएं जितना घर आंगन की देखभाल करती हैं, खेत खलिहान के लिए भी उतनी ही समर्पित हैं। हमारे देश में महिलाओं की भागीदारी लगभग 60% है और इसके बावजूद अभी भी महिला किसानों की बड़ी आबादी खेतों के लिए पारंपरिक तरीके से खेती करती हैं और इन तरीक़ों से फसल उत्पादन करने में उन्हें पूरा पूरा समय देना होता है, अधिक मेहनत लगती है और यही वजह है कि महिलाओं के लिए ये काम आसान बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और महिलाओं को इस काम को आसान बनाने के लिए आज बाज़ार में तमाम कृषि यंत्र लाए गए हैं जो कई दिनों और घंटों का काम कुछ ही समय में निपटा देते हैं। तो चलिए बहनों, आज हम देखते हैं कि हमारी बहनों के लिए क्या क्या से ऐसे कृषि यंत्र हैं। हम बातें करेंगे हस्तचालित बीज बुआई यंत्र की। तो हाथों से बीज को खेत में छिड़कने पर ज़्यादा बीजों की खपत होती है और उत्पादन भी कुछ खास नहीं मिलता। इस वजह से बुआई करने के लिए कृषि कार्य करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर लाइनों में बीजों की बुआई की जाए तो सभी काम आसान हो जाते हैं। हालांकि हाथ से बीजों की बुआई लाइन में करेंगे तो 2 से 3 दिन का समय लग सकता है और मेहनत भी। ऐसे में हर तरह के बीजों की बुआई के लिए हस्तचालित बीज बुआई यंत्र यानी मिनी सीड ड्रिल मशीन बाज़ार में आ चुकी है और इस मशीन के जरिए हमारी जो बहनें हैं वो गेहूं, सोयाबीन, मक्का, चना, अरहर के बीजों की कतारों में बुआई कर सकती हैं। और इस सीड ड्रिल मशीन में हैंडल के साथ साथ बीज के लिए हॉपर, एक ग्राउंड व्हील इत्यादि होते हैं जो कि इसमें ड्रिल को खींचने के लिए एक हुक भी दिया होता है और बीजों को कतार

0: कारों में लगाने के लिए रोलर से गिराए जाते हैं। तो इस तरह बीजों की बचत भी होती है और कम मेहनत भी। तो ये बहनों के लिए भी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। अब हम बातें करेंगे उन्नत दांतेदार हंसिया की। तो ज़मीन पर बैठकर घंटों तक फसल की कटाई करना भी अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। अब महिलाएं ये काम भी बड़ी ही आसानी से किसी भी बिना परेशानी के निपटा सकती है। उन्नत दांतेदार हंसिया यानी सिकल विकसित किया है, जो कि गेहूं से लेकर सोयाबीन, धान, चना, सरसों और घास आदि पतले डंठल वाली फसलों की कटाई आसानी से हो जाता है। इस कृषि यंत्र में दांतेदार ब्लेड होते हैं और लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये स्मार्ट टूल का वजन सिर्फ 180 ग्राम का होता है, जिससे कटाई करने पर कलाई पर अधिक बोझ भी नहीं पड़ते और न बहुत ज़्यादा मेहनत। तो ये भी काफ़ी महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि उनके लिए इतने आसान तरीके से बीज यंत्र जो है ये कटाई के लिए ये यंत्र अभी उनके लिए उपलब्ध है। गन्ना बर्ड चीपर, और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन ज़्यादातर किसान आज भी पारंपरिक तरीकों से पसीना बहाकर गन्ने का उत्पादन ले रहे हैं और ख़ासतौर पर महिला किसानों के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे जो है जो महिलाएं घंटे भर गन्ने के ये काटने में लगी रहती हैं, उसके लिए अभी गन्ना बर्ड चीपर बाज़ार में मौजूद है। और इस गन्ना चीपर की वजह से समय की जो बर्बादी होती थी उसमें भी काफ़ी कमी आ सकती है। और हमारे जो बहनें हैं वह आवश्यकता अनुसार मोटे या पतले गन्ने की बर्ड निकाल कर उसकी कटाई कर सकती है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये वजन में हल्का होता है और जिसकी मदद से गन्ने की बुआई करना भी आसान होता है और कई गुना इससे उत्पादन को बढ़ाया भी जा सकता है। यदि हम बातें करें पैडी ट्रांसप्लांटर की, तो धान की खेती जो है कई जगह सालों भर की जाती है और यहाँ धान के पौधे की रुपाई करने में भी काफ़ी समय लग जाता है, जिसकी वजह से समय पर उत्पादन नहीं मिलता। तो ये काफ़ी श्रम वाला काम होता है और जिसकी वजह से महिलाओं को जो है उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो धान की रोपाई को आसान बनाने के लिए बाज़ार में बेहद सस्ता पैडी ट्रांसप्लांटर मौजूद है, जो कतारों में चटाई की तरह धान की रोपाई कर देता है। और इस मशीन में धान पौध खिसकाने वाली ट्रे होती है, हत्था पौध पकड़ने वाली ट्रे और गहराई नियंत्रण भी होता है। तो इस कृषि उपकरण की मदद से जो बहनें झुक कर बुआई करती थीं वो सबसे इन्हें छुटकारा मिल सकता है। और जब कतारों में धान की बुआई होती है तो निकाई गुड़ाई और कटाई सभी में आसान हो जाती है। तो निश्चय ही हमारी बहनों के लिए को ध्यान में रखकर अब बहुत सारे ऐसे कृषि यंत्र बाज़ारों में आ गए हैं जो उनके काम को सरल, सुलभ और काफ़ी कम परिश्रम में उन्हें इससे काम संभव हो पाता है। तो इन सभी यंत्रों का प्रयोग हमारी बहनें जरूर करें और कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन लें। तो चलिए बहनों, अब इस जानकारी के बाद हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण, भेंट वार्ताकार हैं कृषि विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी से डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।
1: के कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें मृदा की। जी हाँ किसान बंधु, हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है और इसके साथ ही जल धारण क्षमता जो है भूमि की वो भी निम्न स्तर पर जा चुकी है। कई तरह की तकनीकियां कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेतों खलिहानों में उतारी गई है, उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। और आज मृदा एवं जल संरक्षण से संदर्भित विस्तृत बातें जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि अभियंत्रण शाखा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, झारखंड के सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार और प्रणाम।
1: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण भाइयों के सामने जो प्रमुख मुद्दा है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि मृदा की जो स्थिति दिन प्रतिदिन जो क्षीण होती जा रही है, उर्वरा शक्ति जो कम होती जा रही है, साथ ही जल धारण क्षमता जिसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है, हमारे किसान भाई इसका निदान कैसे करें?
2: किसान भाई, सबसे पहले तो हमारे प्रकृति के द्वारा जो है मिट्टी और जल का जो प्राकृतिक संसाधन जो मिला हुआ है, ये जो है अनमोल है। इसको सिर्फ इसकी रक्षा की जा सकती है, इसका संरक्षण किया जा सकता है, इसका उत्पादन नहीं हो सकता है।
1: बिल्कुल,
2: ये जो है हमारे प्रकृति में बहुताय में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इसके जो है गुणवत्ता और इसके जो है उपयोग में जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की भिन्नताएं पाई जाती है, जिसके चलते जो है इसमें भारी कमी आई है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षीण होने का एक प्रमुख कारण है कि जैसे बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद जो है पानी बहता है, तो पानी के साथ साथ हमारी मिट्टी भी बह जाती है। हमारी उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी की जो है 15-20 से 25 सेंटीमीटर तक ही उर्वरा शक्ति रहती है, और उसके नीचे की मिट्टी जो है वो सही नहीं होती है, वो खेती करने योग्य नहीं होती है। इसलिए उसका जो है संरक्षण करना, उस मिट्टी को जल के साथ साथ मिट्टी को भी बचाना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए तरह तरह की उपाय जो है हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को बताते हैं, और आज उसी पे हमको विशेष चर्चा करनी है।
1: जी हाँ, और वो प्रमुख तकनीकियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं?
2: वो प्रमुख तकनीकी जो है किसान जो है सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो खेत हमारे हैं वो यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत है।
1: जी जी।
2: और उसमें जो है किसान जो है वो सबसे पहले जो है कंटूर फार्मिंग करेंगे। जैसे खेत की जुताई करते हैं तो जैसे करते हैं वैसे ही करें, लेकिन जो अंतिम जुताई उसकी करें वो जो है वो स्लोप के विपरीत करें।
1: अच्छा।
2: स्लोप के दिशा में जुताई ना करें। इसके बाद जो है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो पानी बह करके आता है वो कुंडों में जो है वो रुक जाता है, रुकता है, जिसके चलते जो है हमारी मिट्टी जो है नहीं बह पाती है।
1: हाँ।
2: इसलिए जो है आप अंतिम जुताई हमेशा जो है
1: स्लोप में नहीं करें,
2: स्लोप में के साथ ना करें, स्लोप के विपरीत करें। दूसरा ये कर सकते हैं किसान भाई जो है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, पट्टीदार खेती।
1: अच्छा।
2: पट्टीदार खेती का मतलब ये होता है कि जैसे कि बारिश होती है तो मिट्टी बहती है, तो आप जो है एक लाइन जो है इस तरह की फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को रोकती हो।
1: अच्छा।
2: और दूसरे लाइन में जो है ऐसी फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को नहीं रोकती है।
1: अच्छा।
2: जैसे कि मान लीजिए कि आप एक लाइन मक्का लगा रहे हैं तो एक लाइन जो है आप मूंग लगाइए।
1: अच्छा।
2: तो मक्का यदि मिट्टी के बहाव को नहीं रोकेगा तो मूंग रोक देगा,
1: फिर दूसरे लाइन में
2: आप फिर दूसरे लाइन में फिर आप मक्का लगाइए, फिर उड़द मूंग लगाइए। तो ऐसे कर इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है पट्टीदार खेती कहते हैं। तो इस तरह की खरीफ फसलों में भी ज्यादा ही हमारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है हमारी कमजोर होती है, मिट्टी बह जाती है।
1: जी जी।
2: तो ऐसे केसेस में जो है देखा जाता है कि यदि आप पट्टीदार खेती कर रहे हैं तो उससे हमारी जो है मिट्टी भी बचती है और पानी भी बचता है हमारा।
1: अच्छा।
2: इसके बाद जो है आप ये काम कर सकते हैं कि वेजिटेटिव जो है बंड बना सकते हैं, वेजिटेटिव बंड बना सकते हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ पर ज्यादा इरोजन हो रहा है वहाँ पर मेड़ों पे जो है आप जो है सजीव बंध जिसको कहते हैं, जैसे कि मूज की घास हो, मूज हो गया।
1: अच्छा।
2: या मतलब कि आपका और भी जैसे दीननाथ घास हो गया, तो इस तरह की
1: ये सब रोकेंगे।
2: ये सब जो क्या करता है कि वो पानी को बहने नहीं देता है, मिट्टी को रोक देता है वहाँ पे। ये आप काम कर सकते हैं। ऐसे करके भी इसके अलावा भी जो है आप उसमें बंडिंग कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि यहाँ पर झारखंड में हमारे खेत जो हैं वो छोटे छोटे हैं, इसके पीछे कारण है। छोटे छोटे इसलिए हैं कि वो जितना स्लोप उसका कम रहेगा उतना ही मिट्टी का इरोजन कम होगा।
1: अच्छा।
2: मिट्टी का जो कटाव होता है, यदि मिट्टी का स्लोप बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से हम बंडिंग नहीं किए हुए हैं तो मिट्टी का कटाव ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए खेत को यहाँ पे छोटे छोटे बनाया जाता है ताकि मतलब कि उसकी जो स्लोप की हमारी लंबाई है वो कम हो जाएगी और मिट्टी का कटाव जो है हमारा रुक जाएगा
1: बिल्कुल।
2: तो इस तरह से जो है हम उसमें मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं। और इसके अलावा जल के संरक्षण करने के लिए जो है बहुत तरह की उपाय है।

0: उसमें जो है जल का संरक्षण करने के लिए आप जो है तालाब का, यहाँ झारखंड में कंसेप्ट है कि तालाब का निर्माण,
1: डोभा का निर्माण करवा,
0: हाँ डोभा का निर्माण करिए, जैसे कहा जाता है खेत का पानी खेत में,
1: हाँ
0: तो उसके पीछे कारण यही है कि जो आपका खेत का अंतिम सिरा है वहाँ पर आप डोभा का निर्माण कर दीजिए।
1: अच्छा।
0: और डोभा जो है बहुत ज्यादा गहरा नहीं, मतलब कि 10 फीट गहरा और जो है 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा,
1: इतना काफी है,
0: इतना काफी है ताकि खेत का पानी जो है आपके उसमें जमा हो जाएगा
1: और रिस्क के अंदर जाएगा।
0: हाँ, आज जो आप जब आप जरूरत पड़ेगी तो उससे जो है आप निकाल सकते हैं,
1: निकाल भी सकते हैं बिल्कुल।
0: दूसरा उसका उपाय है कि आप तालाब का जब भी निर्माण करें तो वो जो है आप जैसे कि यहाँ की जमीन जो है ऊपर नीचे है, जैसे ऊपरी जमीन, मध्यम जमीन और नीचे की जमीन,
1: हाँ,
0: तीन तरह की जमीन
1: हाँ,
0: यहाँ पे है।
1: हाँ,
0: तो यदि आप ऊपरी जमीन में आप तालाब बना रहे हैं तो ये देख करके बनाए तालाब की उसका जो है कैचमेंट एरिया कितना है।
1: अच्छा।
0: मतलब कैचमेंट एरिया से किसान इसको ऐसे समझे कि उसमें पानी आने का जो है
1: साधन कितना,
0: कितनी दूर से पानी उसमें आ सकता है।
1: अच्छा।
0: यदि पानी का आने का साधन वहां पे है तो जो है वहां तालाब का निर्माण करे।
1: अच्छा।
0: ताकि मतलब कि बारिश का पानी जब हो तो वो तालाब में आ जाए। ऐसी जगह तमाम हम लोग देखे हैं कि ऐसी जगह तालाब भी बन जाते हैं जहाँ पानी का कोई आगमन नहीं हो पाता है, जिसके चलते जो है तालाब भर नहीं पाता,
1: हाँ सूख जाता है।
0: हाँ, तो वो तालाब के निर्माण में एक और सावधानी रखनी है कि तालाब जब भी बनाए वो एक निश्चित लंबाई चौड़ाई और गहराई का रहे, जैसे कि मैंने 100 फीट लंबा 100 फीट चौड़ा
1: जी,
0: और जो है 10 से 12 फीट गहरा हो, और उसकी जब खुदाई कराएं जेसीबी से या अपने किसान जो है अपने से भी उसकी खुदाई कराते हैं, तो उसकी जब भी खुदाई कराएं तो उसमें जो है उसकी जो मेड़ दे वो तीन तरफ से ही मेड़ दे, एक तरफ से उसको खुला रखे।
1: अच्छा।
0: ताकि उससे पानी आ सके। बहुत जगह देखा जाता है कि वो चारों तरफ से मेड़ दे दी जाती है,
1: इसके चलते
0: वो जो है पानी आ नहीं पाता
1: नहीं।
0: है तालाब में। तो किसान भाई को हम सलाह देंगे कि मैंने उसको मेड़ जो भी बनाए वो तीन तरफ से बनाए, और मिट्टी की जो कटिंग करेंगे उसको वो जो है मिट्टी कटिंग करने के 3 से 4 फीट बाद जो है मिट्टी को डाले।
1: अच्छा।
0: जैसे कि आप मिट्टी की कटाव यहाँ से कर रहे हैं तो उससे 3 फीट छोड़ करके मिट्टी को फेंके, जिसको जो है हम लोग बर्म कहते हैं, वो बर्म के ऊपर मिट्टी ना रहे।
1: अच्छा।
0: ताकि जैसे कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद मिट्टी बहती है तो वो तालाब में सीधे चली जाती है।
1: अच्छा।
0: तो वो जो है जो बर्म जब रहेगा तो वहाँ पर मिट्टी जो है तालाब के अंदर जो है कम आएगी। पहले साल जब नया तालाब बनता है तो उसमें जो है मिट्टी ज्यादा आ जाती है।
1: हाँ, हाँ।
0: उसके पीछे कारण है कि जहाँ से वो खुदाई करता है लोग तालाब की वहीं पर मिट्टी फेंक देता है, और बारिश हुई है तुरंत मिट्टी जो है बह करके तालाब।
1: अच्छा, बांध पर भी तो वृक्ष लगा सकते हैं।
0: हाँ, बांध पर वृक्ष लगा सकते हैं, वो भी मिट्टी के आपको
1: कटाव
0: को रोकेगा। इसके अलावा जो भी तालाब बनाए तो उसको एक निश्चित स्लोप दे, जैसे कि 1:1 हम लोग कहते हैं या 1:2 कहते हैं, माने 1:1 या 1:2।
1: अच्छा।
0: जैसे कि 1 फीट गहरा करे,
1: हाँ,
0: तो 1 फीट जो है
1: चौड़ा
0: करे, फिर 1 फीट गहरा करे, फिर 1 फीट चौड़ा करे,
1: सीढ़ी नुमा
0: तालाब बनाना चाहिए। डायरेक्ट उसकी जो है खुदाई नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि स्लोप जब ज्यादा, जितना ज्यादा स्लोप रहेगा मिट्टी कटाव उतना कम होगा।
1: हाँ,
0: और सीधा बिल्कुल हम काटेंगे तो वो हमारे मिट्टी जो है कोलैप्स होने का, तालाब जो है वो
1: खतरा,
0: हाँ भंसने का खतरा रहता है। तालाब में जो है भंस जाता है और मिट्टी भर जाता है, जिसको हम लोग सिल्टेशन कहते हैं। और सिल्टेशन हो जाएगा तो पता चले कि आपका जो है तालाब 12 फीट गहरा था, अब पहले ही साल में दूसरे साल में देखेंगे कि तालाब 6 फीट हो गया।
1: बिल्कुल।
0: इसके पीछे कारण यही होता है कि वो जो है तालाब में जो है मिट्टी बह करके चली जाती है और तालाब की गहराई जो कम हो जाती है, तो उसका जो है उसमें जो पानी का जो एरिया है वो भी कम हो जाता है हमारा।
1: तो ये तो कटाव की रोकने की बात हो गई हमारे किसान भाइयों के लिए। और अब प्रश्न उठता है कि जो इसकी जो उर्वरा शक्ति जो क्षीण हो रही है, और लोग बोलते हैं कि रासायनिक खातों का अंधाधुंध प्रयोग करें, अगर इसका प्रयोग ना करें तो खेती भी अभी की स्थिति में थोड़ी लचर स्थिति में हो जाएगी, आखिर क्या करें किसान भाई?
0: देखिए, आज के समय ऐसा हो गया है कि मिट्टी जो है हमारे खेत का जो भी उर्वरा शक्ति है वो टोटली जो है डिपेंड हो गया है केमिकल फर्टिलाइजर पे
1: जी।
0: वो जो है केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो मिट्टी को बहुत नुकसान

0: पहुंचा रहा है, साथ साथ में जो है जो भी उसका भोजन कर रहा है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए जो है हम लोग जो है अब सलाह दे रहे हैं किसानों को कि आप जो है जो भी आपका रासायनिक खाद है उसका जो है उपयोग कम से कम करें और अधिक से अधिक जो है आप प्राकृतिक खाद का उपयोग करें
1: तो
0: या जो है कंपोस्ट का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि किसान कहते हैं कि हमारे पास गोबर की कमी है, कंपोस्ट नहीं है, तो ऐसे तमाम तरह आज के समय में आ गया है, पहले से ही चला रहा था प्राकृतिक खाद जो है जो आपको 10 केजी गाय के गोबर से और 5 लीटर गोमूत्र से आपका तैयार किया जा सकता है एक एकड़ के लिए
1: जी।
0: तो यदि उसको आप करते हैं तो उसकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है हमारी बढ़ती है। एक्चुअली है क्या ना कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे जो है वो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो है जो हम रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं उससे नष्ट हो गए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि खेत में केंचुआ आजकल नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो केंचुआ तो आपको बड़ा है वो दिख जा रहा है, लेकिन छोटे छोटे तमाम ऐसे बैक्टीरिया है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, वही मिट्टी को जो है पोषक तत्व देते हैं और जिसके चलते पौधों को मिलता है,
1: विकास होता है।
0: तो वो जो है बैक्टीरिया मर गए हैं और बैक्टीरिया तभी आ सकते हैं जब आप प्राकृतिक खाद दें
1: जी। और ऐसे भी तो अगर अनुपात मिला करके देने की बात आती है कि कुछ आप रासायनिक का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें आप प्राकृतिक जो केचुआ वगैरह उसका भी उपयोग करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जो है जैसे कि हम लोग एकाएक बंद करने की बात नहीं कहते हैं कि रासायनिक खाद को आप एकाएक बंद कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप यदि 1.5 केजी यूरिया प्रति कट्ठा आप दे रहे हैं तो उसको जो है आप जो है 1 केजी कर दीजिए या 1.25 केजी कर दीजिए, फिर इसके अगले साल फिर उसको 200-250 ग्राम और कम कर दीजिए, फिर उसके अगले साल और कम कर दीजिए, ऐसे करके धीरे धीरे जो है आप एक समय 3 साल के बाद हम लोगों ने ऐसा देखा है और खुद किया है अपने फार्मों में किया है, किसानों के यहाँ किया है
1: जी जी,
0: कि आप 3 से 4 साल के बाद आपको जो है रासायनिक खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और जो है मिट्टी जो है अपने आप जो है उसके अंदर उर्वरा शक्ति जो है उसके अंदर बैक्टीरिया इतने पनप जाएंगे कि फिर जो है आपको किसी भी तरह के हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस पे बहुत ज्यादा माने फोकस है कि आप जो है प्राकृतिक खेती करिए। इस प्राकृतिक खेती में क्या है कि आप जो किसी भी तरह का माने बहुत ज्यादा आपके गोबर की खाद या किसी तरह के माने खाद की जरूरत नहीं है। 10 केजी से 1 एकड़ की आप खाद का काम हो सकता है 10 केजी गोबर से ही, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है।
1: लेकिन तकनीकियां
0: किसान इस भ्रम में रहते हैं कि मैंने कंपोस्ट से खेती करेंगे या प्रकृति खेती करेंगे तो ज़्यादा मतलब कि गोबर की जरूरत पड़ेगी, उतना हमारे पास जानवर नहीं है, तो कैसी बात नहीं, कम से कम गोबर में और गोमूत्र में जो है आपका खाद उससे बन जाएगा। उसमें बहुत तरह की प्रोसेस होती है, हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में उसको बना करके दिखाते हैं किसानों को और किसान के खेतों में भी हम लोग इसको करते हैं।
1: अब बात उठता है कि हमारे ग्रामीण बंधु किस प्रकार से जल का संरक्षण करें, तो कई तकनीकियां खेतों खलिहानों में ऐसे उतारी गई हैं जिनमें आपका बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, टपक सिंचाई है, ये कहाँ तक कारगर सिद्ध हो पाता है?
0: ये बहुत कारगर है, ये जो है टपक सिंचाई जो है झारखंड सरकार इस पे जो है 90% सब्सिडी दे रही है और याद से नहीं कम से कम जो है 12-13 साल से जो है इस पे सब्सिडी आ रहा है और किसान इसको जो है अपने खेत में जो है इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। वो आप कृषि विभाग में जाएंगे, वहाँ आत्मा एक विभाग है, कृषि अच्छा, विभाग का ही पार्ट एक है, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ से जो है आपको बूंद बूंद सिंचाई का टपक सिंचाई का जो है आपको मिल जाएगा। एक फार्म होता है उसको भरना होता है, उसके साथ आधार कार्ड
1: जी जी
0: और जो है अपना जमीन का पेपर जो है जिस जमीन में आपको जो है लगाना है, इससे बहुत तरह के फायदे हैं।
2: श्रोता अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता मृदा अपरदन से बचाओ एवं जल संरक्षण, जानकारी दे रहे थे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, उनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। अभी हमारे किसान बहुत सारे किसान भाई धान की नर्सरी तैयार कर चुके हैं और ऐसे में धान की फसल से अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने के लिए समय पर खरपतवार प्रबंधन अपनाना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे में किसानों को धान की फसल में वैज्ञानिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के उपाय

कर लेनी चाहिए समय रहते। और ध्यान रहे श्रोताओं कि जो खरपतवार होते हैं वो पौधों से जो मुख्य फसल है उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं भूमि के लिए, प्रकाश के लिए, हवा के लिए और रोशनी के लिए, तो इससे उपज में काफ़ी मात्रा में कमी आ जाती है और इससे किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो समय रहते आप खरपतवार पर नियंत्रण अवश्य कर लें। और अब जाते जाते श्रोताओं एक नज़र डालेंगे आज के मौसम के मिजाज पर। तो श्रोताओं आज डाल्टनगंज शहर का अधिकतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी जानकारी के साथ अब हमें दी इजाजत कार्यक्रम ग्रामीण सभा से। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अगला प्रसारण होगा रांची केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल बस कुछ ही पलों में।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए हुआ एमओयू। मुख्यमंत्री ने कहा, स्थानीय प्रतिभा तराशने में मिलेगी मदद। जेपीएससी में कथित अनियमितताओं के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कार्यालय का किया घेराव। जमकर की नारेबाजी, परीक्षा रद्द करने की मांग। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला का आयोजन। मतदाता सूची को त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाने पर दिया गया जोर। रांची में सेल प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में मानव संसाधन कॉन्क्लेव का आयोजन। कार्यक्षमता बढ़ाने और उत्पादन में वृद्धि पर मंथन। और रांची में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए निःशुल्क टिकटों की हुई बिक्री। खेल प्रेमियों में दिखा उत्साह। मुख्यमंत्री 26 जुलाई को टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में आज झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में साउंड डिजाइनिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, सिनेमेटोग्राफी, निर्देशन और फिल्म प्रोडक्शन सहित विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा तथा फिल्म, ओटीटी और डिजिटल कॉन्टेंट के क्षेत्र में नए रोजगार और अवसर उपलब्ध होंगे।
1: इस राज्य के सामान्य आम लोगों के अंदर किसी न किसी तरह का कलाकार छुपा पड़ा है। सोशल मीडिया और विभिन्न सूचना तंत्रों के माध्यम से कई सारे कलाकारों के कई गतिविधियों को देख रहे हैं। कई कारणों से शायद वो छुपा कलाकार बाहर नहीं आ पाता। आज इस संस्था के माध्यम से और सत्यजीत रे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के सहयोग से उन कलाकारों को भी ढूंढा जाएगा, तरासा भी जाएगा।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ दिनों से विभागवार समीक्षा कर विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने आज सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कामकाज की समीक्षा की। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समर्पण की भावना से काम करने का निर्देश दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के नेतृत्व में आज रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री साहू ने कहा कि राज्य में सत्ता में बैठी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा सहित सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की नियुक्ति परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आज रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में नौकरियां बेची जा रही हैं और प्रतिभा के साथ अन्याय हो रहा है। इस मौके पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने ब्लैक

0: लिस्टेड कंपनी से ली गई जेपीएससी की सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की।
1: झारखंड में हमारा डिमांड ये है कि चौधरी जेआरएससी रद्द हो। अब जो बार बार हम डिमांड कर रहे थे एजेंसी के माध्यम से गड़बड़ियां चल रही है उस चीज को समझना चाहिए। सारा एग्जाम को रद्द हो परीक्षा। आज वो सीन आया है, आज हम बंसी में लड़ाई घर में तड़को पड़ा है।
0: जेपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद आजसू पार्टी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने रांची में प्रेस वार्ता में 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए। श्री महतो ने इस मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की ताकि अनियमितता उजागर हो सके।
2: हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं जो आउटसोर्सिंग कंपनी है और जेपीएससी से जो जुड़े हुए हैं जिनकी संलिप्तता है तो ईडी और सीबीआई की जांच पूरे प्रकरण में हो और डीडीपीएल कंपनी के साथ जो करोड़ों का लेन देन हुआ है उसका भी जांच इसमें स्पष्ट रूप से हो।
0: अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार जेपीएससी ने 25 से 27 जुलाई तक आयोजित होने वाली सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग की वेबसाइट पर इससे संबंधित सूचना प्रकाशित कर दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आज राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलए 2 की तीसरी संयुक्त बैठक तथा चुनाव पाठशाला आयोजित की गई। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने हजारीबाग के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची के सत्यापन और एएसडीडी सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया की समीक्षा की। बैठक में मतदाता सूची को त्रुटि रहित, अद्यतन और पारदर्शी बनाने के लिए बीएलओ, बीएलए 2 और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय पर बल दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना और अपात्र व्यक्तियों को सूची से बाहर रखना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए प्रतिभाशाली बच्चों का नामांकन जारी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में कहा कि हमारे देश के बच्चे केवल भविष्य नहीं बल्कि आज के भारत की प्रेरक शक्ति हैं।
3: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए मैं देश के सभी माता पिता, नागरिकों और संस्थाओं से आग्रह करती हूं कि यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा बालक या बालिका है जिसने वीरता, कला एवं संस्कृति अथवा खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है तो उनके उत्कृष्ट कार्य को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए अवश्य नामित करें।
0: भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाहुरी आज सरायकेला खरसावा में कोल्हान के प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन की मजबूती पर जोर दिया। मौके पर श्री बाहुरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कथित रूप से गिरती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सरकार पर जनहित के मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया।
4: जो संस्था या जो अध्यापन केंद्र मानव निर्माण की जगह बम निर्माण केंद्र बनाए तो उस पे तो अंकुश लगना ही चाहिए। उनके कार्यों का निश्चित रूप से मूल्यांकन करके राज्य सरकार को उस पे जो है रोक लगाने का काम करना। यूसीसी 100% जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी यूसीसी झारखंड में भी लागू होगा, ये हमारा कमिटमेंट है जनता।
0: रांची के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल अंतर्गत एमटीआई बिल्डिंग में आज से 2 दिवसीय मानव संसाधन कॉन्क्लेव शुरू हुआ। सम्मेलन में देश भर के नवरत्न पीएसयू और विभिन्न कंपनियों के एचआर हेड हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर कंपनियों के कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादन में वृद्धि जैसे विषयों पर मंथन हो रहा है।
5: एचआर का कंक्लेव जो सेल आयोजित करता है हर साल और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हम अपने आइडियाज को एक्सचेंज

0: करते हैं और इसी में छोटा सा कंपटीशन भी होता है जहां पे कि एक थीम दिया जाता है। जैसे इस बार का थीम है एचआर एज एन आर्किटेक्ट फॉर बिल्डिंग परफॉर्मेंस कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। उस थीम पे अलग अलग टीम अपने प्रेजेंटेशन सामने रखते हैं और उसके अच्छे पॉइंट्स को हम जाके वापस अपने प्लांट में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं।
1: रांची में 26 जुलाई से डोरंड कप के मैच खेले जाएंगे जिसे लेकर खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। मोराबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में निःशुल्क टिकटों की बिक्री शुरू हुई। निःशुल्क टिकट मिलने पर खिलाड़ियों ने खुशी व्यक्त किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डोरंड कप के रांची चरण के टूर्नामेंट का 26 जुलाई को उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन मुकाबले के बाद आने वाले मैचों के लिए 27 जुलाई से अलग अलग मैचों के अनुसार दर्शकों को टिकट दी जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए हुआ MOU। मुख्यमंत्री ने कहा स्थानीय प्रतिभा तराशने में मिलेगी मदद। JPSC में कथित अनियमितताओं के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कार्यालय का किया घेराव। जमकर की नारेबाजी, परीक्षा रद्द करने की मांग। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला का आयोजन। मतदाता सूची को त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाने पर दिया गया जोर। रांची में सेल प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में मानव संसाधन कॉन्क्लेव का आयोजन। कार्यक्षमता बढ़ाने और उत्पादन में वृद्धि पर मंथन। और रांची में डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए निःशुल्क टिकटों की हुई बिक्री। खेल प्रेमियों में दिखा उत्साह। मुख्यमंत्री 26 जुलाई को टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता।
1: आस्था और श्रद्धा का प्रतीक पूरे एक महीना तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही है 31 जुलाई 2026 से। इस बार मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए झारखंड सरकार पूरी तरह तैयार है। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसरी उपायुक्त एसपी के साथ लगातार बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि इस बार मेले में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था रहेगी। मेला परिसर में चिकित्सकों के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था कर दी गई है।
2: हर साल के बाद इस साल हम लोग बेहतर करेंगे, कोई दुर्घटना ना हो। हमने निर्देश भी दिया है कि अभी जो समीक्षा बैठक हुआ इसको लेकर 228 डॉक्टर को हमने रिपोर्ट किया है। एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल स्टाफ, हमारे तमाम एक्सपर्ट लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। लगभग 40 केंद्र हमने बनाए और सब जगह डॉक्टर रहेंगे। सदर हॉस्पिटल में 100 बेड इसलिए हमने कवर इसलिए किया है। एड्स में हम लोगों ने 50 बेड का हमने किया है। आने जाने की सुविधा हमने दिया है, हर जगह हमारा एम्बुलेंस होगा।
1: वहीं दूसरी तरफ रेल से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम संग्रह मौर्य ने बताया कि अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जा रहे हैं, साथ ही रेल व्यवस्था में भी विस्तार किया गया है। कई जोड़ी ट्रेनें भी अधिक चलाई जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को भी बेहतर व्यवस्था मिले।
3: मोस्टली पैदल यात्री जो दर्शनार्थी होते हैं, दर्शन करके जब वापस जाते हैं अपने घर, को रेलवे से जाते हैं, और जो सर्कुलेशन प्लान है वो प्रॉपरली करेंगे, कोई क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना रहे। देन यहाँ पे मैनिंग भी होगी, आरपीएफ और जीआरपी के जवान सिक्योरिटी वगैरह इंश्योर कर सकते, कंट्रोल रूम्स खुलेंगे यहाँ पे, फोर आवर्स मॉनिटर करेंगे लोगों का मूवमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे।
1: पूरे मेला के दौरान अगर बिजली व्यवस्था ठीक ना हो तो सारा मेला व्यवधान में साबित हो जाएगा। ऐसे में बिजली व्यवस्था को लेकर भी जीरो कट का संकल्प लिया गया है। बिजली विभाग के महाप्रबंधक परितोष सिन्हा के अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि किसी भी फॉल्ट को तुरंत ठीक किया जा सके। साथ ही कई छोटे छोटे काउंटर भी बनाए गए हैं जहाँ बिजली कर्मी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे।
4: श्रावणी मेला का सारा तैयारी चल रहा है बिजली विभाग का, देवघर बासुकीनाथ में टेम्पोरी कनेक्शन भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। कांवरिया पथ में मंदिर के आसपास अभी मार्केट एरिया में सभी जगह इसे कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। सारे सब स्टेशन का मेंटेनेंस किया गया है, फीडरों का भी मेंटेनेंस किया गया है। श्रावणी मेला में हम लोग 52 देवों पर कंट्रोल रूम में जगह रहेगा, छोटा छोटा कंट्रोल रूम होगा जहाँ से किसी आपात स्थिति में वहाँ

0: जो है तीनों शिफ्ट में आदमी कार्यरत रहेंगे।
1: वहीं इस बार सावनी मेले के दौरान शीघ्र दर्शनम और वीआईपी पूजा के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंदिर के धर्म निरीक्षण पंडा मके महामंत्री निर्मल झा ने बताया कि शीघ्र दर्शन की राशि में बढ़ोतरी की गई है और इस बार 600 रुपया शीघ्र दर्शन की राशि लगेगी।
2: 600 होगा, अभी 300 चल रहा है। शीघ्र दर्शनम रविवार और सोमवार को बंद रहेगा कूपन, और कूपन का चार्ज 600 रुपया रहेगा।
1: श्रद्धा सुविधा और सुरक्षा के साथ पूरा देवघर से लेकर दुमका बासुकीनाथ तैयार है। सावनी मेला 31 जुलाई को शुरू होने वाली है। बम बम हर हर महादेव के नारों के साथ पूरा देवघर गुंजयमान हो जाएगा। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
3: अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

हमारे श्रोता सुन रहे थे क्रमशः प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में है।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग। कार्यक्रम एक रंग की सरजमी से आप तमाम श्रोताओं को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं शैलेंद्र सिंह एवं लता मंगेशकर की आवाज़ों में बॉबी फिल्म का गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, तर्ज लक्ष्मीकांत।

कार्यक्रम एक रंग में अब लीजिए सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन पर इंदिवर की रचना को। आवाजें किशोर कुमार एवं आशा भोसले की हैं। फिल्म का नाम जॉनी मेरा नाम।

हमारे श्रोता सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग। कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है किशोर कुमार एवं आशा भोसले की युगल आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर आनंद बख्शी की रचना। फिल्म का नाम बंदिश।

रफू चक्कर। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाजें शैलेंद्र सिंह एवं आशा भोसले की है। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम एक रंग के अंत में सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर, तर्ज आर डी बर्मन की है, युगल आवाजें किशोर कुमार एवं आशा भोसले की।

हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत हम सुनते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल जफर से की गई बातचीत। विषय है दांतों की आम समस्या एवं देखभाल। इनसे बातें कर रहे हैं संजीव कुमार।

0: मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमारे दांतों का हमारे पाचन तंत्र से गहरा संबंध है। यदि हमारे दांत मजबूत रहेंगे, चमकीले रहेंगे और कोई भी जब हम खाना खाते हैं उसको हम अपने दांतों से चबा चबा कर खाते हैं तो खाने को पचने में कम समय लगता है और आप स्वस्थ रहेंगे। और आजकल देखा जाए तो हमारा खान पान काफ़ी बिगड़ गया है और ऐसे में दांतों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी दांतों की समस्या से ग्रसित हैं और बुज़ुर्ग साथी भी दांतों की बीमारियों से काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने कार्यक्रम में कि दांतों की कौन कौन सी सामान्य बीमारियां होती हैं जिसका सही समय रहते हम पहचान कर लें और उसका इलाज हम शुरू कर दें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल्ला जफर। जफर साहब स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: जब साहब, आजकल देखा जाए तो खान पान काफ़ी बिगड़ गया है, फास्ट फूड का सेवन काफ़ी बढ़ गया है, तो ऐसे में दांतों को ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है?
1: अगर हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा का सेवन कर रहे हैं, रेगुलर सेवन कर रहे हैं, तो दांतों में उसका इफ़ेक्ट हमारे जो मसूड़े हैं उस पर ज़्यादा कर रहा है। मसूड़े फूल जाते हैं या अच्छे से हम लोग सफाई नहीं कर पाते हैं तो मसूड़ों से खून आने लगते हैं, जिसके वजह से धीरे धीरे धीरे धीरे दांत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं और दांत हिलने लगते हैं, फिर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में चला जाता है।
0: तो दांतों में सामान्य बीमारियां कौन कौन सी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और उसका हम पहचान कैसे करें, लक्षण क्या है?
1: देखिए, हम लोग कुछ सामान्य बीमारियां आराम से हम लोग घर पे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। सबसे पहला जो सामान्य बीमारी में आता है वो हमारे गम ब्लीडिंग का आता है, मसूड़े से खून आना। मसूड़े से खून जब आता है तो अक्सर हम लोग जब ब्रश करते हैं तब समझ में आता है कि मसूड़े से खून आ रहा है, या अगर कभी कभी सीवियर केस में हम लोग जब सोए रहते हैं तो सुबह उठते हैं तो लगता है कि मुंह में बहुत ज़्यादा खून आ गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे एक हमने सुना होगा आम शब्दों में पायरिया हो गया है, तो पायरिया का स्टार्टिंग जो लक्षण है वो जिंजिवाइटिस कहलाता है। जिंजिवाइटिस में क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका पार्टिकल जो है कुछ रह जाता है हमारे मसूड़ों के बीच में, मसूड़ों दांत के बीच में, और उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं अच्छे से अगर ब्रश कर सकें, और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाएं और सफाई करवा लें, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो केस, जिंजिवाइटिस केस, आगे बढ़ के पीरियोडोंटाइटिस केस में चला जाता है, मतलब प्रॉपर पायरिया हो जाता है वो। उस केस में क्या होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों और दांतों के बीच में गंदगी इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि दांत हिलने लगते हैं और फिर उस वो केस इरिवर्सिबल प्रोसेस में चला जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं, जितने डेंटिस्ट लोग होते हैं वो लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए प्रॉपर ओरल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर एक बार 6 महीने में या साल भर के बीच के अंदर आप अपने डेंटिस्ट, नज़दीकी डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। और एक और कारण है कि हम लोग ब्रश करते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रश करते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि मसूड़े छिल जाते हैं जिसके वजह से ब्लड आ सकता है। और ब्लीडिंग गम के एक और कारण है कि हम कुछ दवाई रेगुलर ले रहे हैं, जैसे एनसेट्स हैं या एंटीकोगुलेंट, मतलब खून को जमने की दवा लेते हैं, या एंटीप्लेटलेट कुछ दवाई लेते हैं, तो वो भी एक कारण है। एक और मुख्य कारण है कि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है, उसको इंग्लिश में स्कर्वी बोला जाता है। तो अगर वो सब है, ये सब लक्षण रहेंगे तो हमारे ब्लीडिंग गम होने के चांसेस हैं। दूसरा सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है हमारे दांतों की वो है डेंटल सेंसिटिविटी की, कि हमारे दांत में बहुत झनझनाहट होता है, हम कुछ भी ठंडा लेते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उसके भी कुछ कुछ कारण हैं। सबसे मेन कारण ये है कि दांतों का लेयर बाय लेयर 4 लेयर होता है, तो सबसे ऊपरी जो लेयर होता है वो अगर वो शेड हो गया, अगर वो हट गया, तो उसके बीच का लेयर जो है वो डेंटिन कहलाता है। अगर डेंटिन निकल आया किसी कारण से तो उस केस में हमें ठंडा बहुत ज़्यादा लगेगा, और ठंडा पानी पिएंगे तो हमें ठंडापन का महसूस बहुत ज़्यादा होगा, हवा जब ज़्यादा ठंडी लगेगी तो भी, आइसक्रीम खाएंगे तो भी। तो वैसे केस में क्या होता है, सबसे ऊपरी लेयर का बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रात में दांत कड़कड़ाते हैं जिसके वजह से दांत जो है घिस जाते हैं, तो ऊपरी लेयर जो इनेमल होता है वो हटने के बाद उसके बीच का लेयर जो डेंटिन होता है वो आ जाता है, और डेंटिन जब एक्सपोज हो जाता है तो कुछ भी ठंडा पीजिएगा, ठंडा पानी हो, ठंडा आइसक्रीम हो, तो आपको ठंडा लगेगा। उसके
2: बाद एक कारण है कि आपके मसूड़े जो है नीचे जा रहे हैं, वो भी एक कारण है कि आप दतमन कर रहे हैं तो उसमें भी ज़ोर ज़ोर से आप दतमन कर रहे हैं। कुछ लोग खैनी खाते हैं तो उस केस में भी मसूड़े वहाँ पे जल जाते हैं खैनी खाते खाते, तो वो गम रिसेशन कहलाता है। तो वैसे केस में भी आपको ठंडा में ठंडा लगेगा, और कभी कभी दांत हमारे उम्र के हिसाब से घिसने लगते हैं तो वैसे केस में भी आपको ठंडा का महसूस होगा। कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आपको लगता है कि हमें ठंडापन महसूस हो रहा है तो फौरन आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं, एक बार दिखलाएं। हर 6 महीने पे नहीं तो 1 साल के बीच में भीतर में आप ज़रूर जाएं।
0: जी, हमारे दांत स्वस्थ रहें, मोतियों जैसे चमकते रहें, तो कौन कौन सी सावधानियां हम अपने जीवन में रखें ताकि हमारे दांत स्वस्थ रहें, चमकीले रहें। और देखिए, यदि आपके दांत स्वस्थ हैं, मोतियों जैसे चमकदार हैं, और जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी दांतें खूबसूरती बिखेरती हैं। तो हर कोई चाहता है कि हमारे दांत स्वस्थ हैं, चमकीले हों, और दांत से आपके व्यक्तित्व पर काफ़ी एक प्रभाव पड़ता है।
1: जी, आज के डेट में, आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है कॉस्मेटिक्स के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर, और चेहरे में सबसे जो मुख्य चीज़ जो आपका रोल अदा करती है वो है आपके दांत। अगर दांत आपके स्वस्थ हैं, अच्छे दिख रहे हैं, मतलब आपकी स्माइल अच्छी है, आपकी स्माइल अच्छी है मतलब आपका फेस अच्छा है, तो सबसे मुख्य कारण है आज की डेट में दांतों का सही होना, चमकीले होना। हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं या फिर चाय कॉफ़ी वगैरह जो लेते हैं, रेगुलर ले रहे हैं तो उससे हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं। तो वैसे केस में हमें थोड़ा सा धीरे धीरे कम लेना है और उसकी सफाई का ध्यान रखना है। और अगर हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो वैसे केस में भी हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं, और कभी कभी कुछ प्रेगनेंसी केस में भी ऐसा होता है कि दांत पीले पड़ जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए भी, कभी ज़्यादा आपके दांत डिस्कलर हो गए हैं तो एक ब्लीचिंग एक ऑप्शन आता है, जैसे हम लोग चेहरे का ब्लीचिंग कराते हैं, इस तरह का दांत का एक इक्वेजनली एक ब्लीच आप करा सकते हैं ताकि आपके दांत बिल्कुल चमकीले दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। और स्केलिंग पॉलिशिंग होती है वो, उससे भी आप सफाई, मतलब सफाई रखेंगे तो आपके दांत चमकीले रहेंगे। और दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो उसका भी इलाज है, वो भी आज के जनरेशन में सारे अक्सर लोग, पहले कहा जाता था कि सिर्फ बच्चों लोग का दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनको ठीक कराया जाता, लेकिन अभी मिड जनरेशन जितने लोग हैं वो सब अपने दांत सीधे करवाना चाह रहे हैं ताकि आपके स्माइल अच्छी दिख सके, आपके दांत अच्छे जब सिमेट्रिकल वे में रहेंगे तो आपका स्माइल अच्छा दिखेगा, आपका फेस अच्छा दिखेगा। तो वो ट्रीटमेंट एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहलाता है, तो उसके थ्रू आप लोग अपने दांत, टेढ़े मेढ़े दांत थे उसको सीधे करके, जितने माल अलाइन दांत थे उसको सीधे करके, और दांतों का सफाई करवा के, स्केलिंग पॉलिशिंग करा के आप दांत चमकीले रख सकते हैं।
0: छोटे छोटे बच्चे हमारे
1: जी
0: टॉफ़ी का सेवन करते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और फास्ट फूड का सेवन करते हैं, और ऐसे में दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तो माता पिताओं को क्या कहेंगे कि अपने बच्चे की दांतों का प्रॉपर ध्यान दें?
1: देखिए, आज के जनरेशन में माता पिता का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में केमिकल के पदार्थ हम लोग सेवन ज़्यादा करने लगे हैं। लाइक अगर चॉकलेट भी आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिला करके बनाया जाता है। चॉकलेट में शुगर ज़्यादा होता है, शुगर का इंटेक कुछ भी कीजिएगा तो वो उससे आपका बैक्टीरिया होने का चांसेस बढ़ जाता है, और बैक्टीरिया एक एसिड रिलीज करता है जिससे हमारे दांतों का डीमिनरलाइजेशन कराता है। ये सिंपल एक सीक्वेंस है जो आपको समझना चाहिए। तो वैसे केस में बच्चों को, बच्चों के दांत और उनके ओरल कैविटी का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले बच्चों को चॉकलेट अगर आप खिला रहे हैं तो चॉकलेट खिलाने के बाद उनके दांत ज़रूर चेक कीजिएगा, कहीं पे कुछ चिपका हुआ तो नहीं है। तो दांतों की सफाई करवाइए, और दांतों के कम से कम सुबह और शाम में ब्रश करवाइए, और सोने से पहले ज़रूर उसके दांतों का चेक करके उन पे ध्यान दीजिए कि अगर वो बच्चा चॉकलेट खा के सो तो नहीं गया है, तो वो स्टक हो जाएगा जब दांत में, तो वो धीरे धीरे कैविटी फॉर्म करेगा, कैविटी फॉर्म करेगा तो वो दांत सड़ जाएगा। और अगर दूध के दांत वक्त से पहले अगर टूट जाता है तो जो नीचे वाले जो दांत हैं, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो अपने सही टाइम पे जब आएंगे तो जहाँ उनको जगह लगेगा वहाँ पे आने लगेंगे। तो इसीलिए आज के जनरेशन में दांत बहुत टेढ़े मेढ़े दिखने लगे हैं।
3: श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत भेंटवार्ता, विषय था दांतों की देखभाल। विशेषज्ञ थे डॉक्टर अब्दुल जफर, और इनसे बातें हो रही थी संजीव कुमार लाल की। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम कल्याणी अब समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम

समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए, ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मॉनसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनिटी ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। श्री टेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने, कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है, वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवीके एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए ना तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और ना ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क) भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन

विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें, अपनी बात का असर ना होते देख श्री हरिवंश ने एक मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा, विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है, यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले 4 दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है, जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है, बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए सदन की निर्धारित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च सदन में 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही नीट प्रश्न

हम आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: जारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
2: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार है और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंता

0: छात्राओं के प्रति संवेदनशील है।
1: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
2: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज

0: बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के एनएसपीसी की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और एनएसपीसी ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावासकेस से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिडकैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Elsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue. In Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents decline sharply with improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. The US blames Iran for the naval blockade against Saudi Arabia in the Red Sea by Yemen's Houthi group. And in China Open badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries, as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. Mr. Modi also highlighted that the widespread adoption of initiatives such as the PM Kusum scheme by farmers can bring transformative changes to the agriculture sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
4: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rule should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
3: Mr. Rijiju's remarks came as both Houses of Parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, the Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue.
4: From the very beginning, the Congress party also said that it wanted a discussion and the chair has expressed the same. However, instead of allowing the discussion to take place, the Congress is once again looking for excuses by imposing conditions. When the government itself has clearly stated that it is ready for a discussion, there is no need to attach additional conditions. By doing so, the Congress appears to be creating another pretext to prevent the discussion from taking place. This should not be done.
3: Leader of the opposition Mallikarjun Kharge said the discussion could not proceed without the resignation of the Union Education Minister.
5: If there is to be a fair discussion, the Education Minister should resign. Until the Minister resigns, an impartial discussion cannot take place here. I urge the government to ensure that the Minister submits his resignation.
3: We have more from our correspondent.
6: On the third consecutive day of monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted by repeated adjournments following opposition uproar.

0: अब ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असगर अली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत नजरिए को एक अवामी तहरीक बनाने पर जोर दिया है, जिसमें नौजवान एक कलीदी रोल अदा करें। हुकूमत ने ये बात दोहराई है कि वो पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर बामाना बहस के लिए तैयार है। इसने नौजवानों के एहतजाज को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों की नुक्ताचीनी की। अपोजिशन ने दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखनांदाजी की। इसने बहस से पहले तालीम के महकमे के वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्लियामेंट मार्च के दौरान मुजाहरीन पर मुबैना तौर पर ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने से मुतालिक दरखास्तों पर मरकज और पुलिस से जवाब तलब किए हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बेहतर रेल सेफ्टी, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेन हादसात में खातिरखाह कमी आई है। अमरीका ने ईरान पर यमन के हूसी ग्रुप की जानिब से बहर अहमर में सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का इल्जाम लगाया है और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित भारत की तामीर का ख्वाब जन आंदोलन बनना चाहिए और मुल्क के नौजवानों को इस नजरिए को बुनियाद फराहम करनी चाहिए। वजीर आजम ने नई दिल्ली में विकसित भारत अहदाफ के लिए मुतालिका शोबों और देही तरक्की, ज़राअत और समाजी बहबूद की पेशरफ्त के जायजे के सिलसिले में सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतह मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। इस मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी, अहम वजारतों के सेक्रेटरी साहिबान के साथ साथ वजीर आजम के दफ्तर के सीनियर अहदेदारान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि अवाम की जरूरत के तहत तैयार करदा इस्लाहात के नफाज में तेजी आनी चाहिए और इनसे बामाना तब्दीली पैदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाहात का मकसद महज हुकूमत के कामकाज में बेहतरी लाना नहीं बल्कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की जानिब मुल्क के सफर को तेज करना है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी मुजाहरे पर तश्वीश का इजहार करते हुए कहा कि मरकज नौजवानों के जज्बात और खदशात के हवाले से नहायत हसास है और तलबा के जायज मसलों को सुनने और इसके हल के लिए पुरज़म है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि कुछ लोग अपने सियासी मफाद के लिए तलबा के एहतजाज को इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: पार्लियामेंट में अपोजिशन के हंगामे पर वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने हर मामले पर बामाने बहस पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन अपोजिशन पार्लियामेंट के बजाय सड़कों पर इसके हल की गैर मुनासिब कोशिश कर रही है। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने आज कहा कि तलबा की जानिब से उठाए गए नीट पेपर लीक मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा, ये जांच का मौजू है जिस पर वसी तर तबादला ख्याल की जरूरत है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि ये एक संगीन मसला है जिस पर संजीदा बातचीत की जरूरत है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और तलबा के एहतजाज समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की जानिब से आज मुसलसल तीसरे रोज बार बार रखनांदाजी के पेश नजर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में जब ऐवान की कार्रवाई दूसरी मरतबा मुलतवी होने के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने नीट मामले पर नारेबाजी जारी रखी। एहतजाज जारी रहा तो ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल दिन में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तलबा के एहतजाज का मामला उठाया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने ये बात दोहराई कि हुकूमत मुकर्रर करदा पार्लियामानी जाब्तों के तहत और मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए सभी फरीकों के साथ बामाने बहस के लिए तैयार थी।
2: सरकार नई पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ।

0: चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी नीट मामले और दीगर मामलात पर बार बार रखनांदाजी हुई। कई मरतबा कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ये कहते हुए अपोजिशन से तआवुन करने की अपील की कि हुकूमत बहस के लिए तैयार है। ऐवान बाला में खिताब करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर ये कहते हुए बहस से बचने का इल्जाम लगाया कि हुकूमत की इस मामले पर बहस पर रजामंदी के बावजूद उसने नई शरायत रख दी। ऐवान के रहनुमा जेपी नड्डा ने अपोजिशन के तर्ज अमल की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि ये गैर जिम्मेदाराना और जमहूरी अकदार के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शफाफियत और जवाबदेही के तई पुरअज़्म रही है। अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहते हुए तालीम के मरकजी वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया कि इसके बगैर बहस नहीं हो सकती।
2: अगर फिर डिस्कशन हो रहा है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। जब वो राजीनामा नहीं देंगे चर्चा यहाँ नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाओ।
1: शोरगुल जारी रहने के दरमियान राज्यसभा की कार्रवाई भी कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा में सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता स्टेज 6 पर बिजली प्रोजेक्ट के तहत ज़ेर तामीर सुरंग में हादसे के दौरान जान गंवाने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया और एक मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। इसके बाद सदर नशी सीपी राधा कृष्णन ने मुल्क की पहली अंदरून मुल्क तैयार करदा हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ी के लिए हुकूमत रेलवे अहलकारों और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: मानसून इजलास के मुसलसल तीसरे रोज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नजर बार बार मुलतवी करना पड़ी। रखनांदाजी की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कोई कामकाज नहीं हो सका। हुकूमत की तरफ से बार बार इस यकीन दहानी के बावजूद कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा। आज लोकसभा की कार्रवाई 3 मरतबा और राज्यसभा की कार्रवाई 4 मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों फरीकों की बात सुनी और कहा कि हुकूमत एक खुले जहन के साथ बहस के लिए तैयार है। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से अपील की कि वो कार्रवाई में रखनांदाजी के बजाय एक तफसीली बहस में हिस्सा ले। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे अगर हुकूमत इस बात की यकीन दहानी कराए कि नीट पेपर लीक मामले पर जवाबदेही तय करने के सिलसिले में मुजाहरा कर रहे नौजवानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को एक खत में जनाब वांगचुक ने कल रात अस्पताल आने के लिए दोनों वजरा का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हुकूमत के इकदाम की बदौलत संगीन नौयत के रेल हादसात की तादाद साल 2014-15 के 135 से घटकर इस साल 2026-27 के जून तक सिर्फ 2 रह गई है। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में जनाब वैष्णव ने बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी बुनियादी ढांचे और बेहतर रखरखाव के जरिए रेल सेफ्टी को मुस्तहकम किया गया। जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि सेफ्टी से मुतालिक सरगर्मियों पर अखराजात साल 2013-14 के तकरीबन 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर पीर के रोज पार्लियामेंट की जानिब मार्च कर रहे मुजाहरीन पर किए गए मुबैना ताकत के इस्तेमाल पर मरकज और दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया ने हुकाम को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी समेत पुलिस कार्रवाई से मुतालिक तमाम सबूत को महफूज रखने की हिदायत दी है। मुफादयामा की दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए बेंच ने हुकाम को जवाब सौंपने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। इस मामले की अगली समाअत 11 सितंबर को होगी। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब मुसाफिर खिदमात के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन डीएमआरसी ने हिफाजती वजूहात की बिना पर 17 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया था। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल थे। सिक्किम के नामची जिले में समरदंग में जेर तामीर सुरंग में बचाव टीमों ने मजीद 8 लाशों का पता लगाया है। ताहम सुरंग के अंदर इंतहाई खतरनाक सूरत हाल के सबब इन लाशों को निकाला नहीं जा सका। अहलकारों ने कहा है कि कम दूरी तक दिखाई देने और मीथेन गैस के रिसाव ने बचाव कार्रवाई को ज्यादा मुश्किल बना दिया है। अब तक 13 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि सुरंग के अंदर कुछ अफराद फंसे हुए हैं। सिक्किम हुकूमत और कौमी पनबिजली पावर कारपोरेशन के सीनियर ओहदेदारान मकाम पर सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: एनएचपीसी टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियां आज लगातार तीसरे दिन भी कोशिशों में लगी रही। बचाव कार्रवाई 24 घंटे जारी है, ताहम कम बसारत और मीथेन गैस के रिसाव ने लाशों को निकालने में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 8 लाशें टनल के दहाने से 2 किलोमीटर दूर हैं। इस दौरान सिक्किम हुकूमत ने हादसे में फौत होने वालों की लाशें आज उनके कुंबों को सौंपी। मरकज के अलावा सिक्किम हुकूमत और एनएचपीसी ने मुतासिरा कुंबों के लिए माली मदद का ऐलान किया है। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक मीटिंग हुई, जिसमें मंदिर के इंतजाम, अतियात के निजाम, तकरियों और इंतजामी असलाहत जैसे मुख्तलिफ अहम फैसले किए गए। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की तकररी खाली अहदों को पुर करने और इसकी मजहबी कमेटी की नई सिरे से तश्कील पर तबादला ख्याल किया। ट्रस्ट ने कहा कि खसूसी तहकीकती टीम की हतमी रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई है और मीटिंग के दौरान इस मामले पर बातचीत नहीं हुई। हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान नाजेबा मवाद नशर करने की बिना पर 50 OTT प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया है। लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में इतलात और नशियात के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुर्गन ने बताया कि हुकूमत शिकायतों की बुनियाद पर इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स पर बाकायदगी से कार्रवाई करती है। जनाब मुर्गन ने कहा कि हुकूमत ने डिजिटल मीडिया पर हालात हाजरा और ऑनलाइन मवाद के नाशरीन के लिए इदारा जाती मैकेनिज्म वजह करने के खातिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जवाबित 2021 को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात और वस्ती महाराष्ट्र में कल इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। भारतीय महकमा मौसमियात ने शमाल मशरकी भारत में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इसी तरह के मौसमी हालात की पेशगोई की है। अमरीका ने यमन के हूसी बागियों को उस ऐलान की मजम्मत की है जिसमें हूसियों ने बहर अहमर में सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी करने और तजारती बहरी जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के खिलाफ हूसी बागी ग्रुप की इस धमकी के लिए ईरान को मौरिद इल्जाम ठहराया। चाइना ओपन बैडमिंटन में 2 मरतबा की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु अपने अहम वतन उन्नति हुडा को हराकर खवातीन के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज दोपहर प्री क्वार्टर फाइनल में हुडा को 21-14, 9-21 और 21-10 से शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी आलमी नंबर 11 इंडोनेशिया के अलवी फरहान को 21-17, 5-21 और 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत नजरिए को एक अवामी तहरीक बनाने पर जोर दिया है जिसमें नौजवान एक कलीदी रोल अदा करे। हुकूमत ने ये बात दोहराई है कि वो पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर बामाना बहस के लिए तैयार है। इसने नौजवानों के एहतजाज को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों की नुक्ताचीनी की। अपोजिशन ने दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखनांदाजी की। इसने बहस से पहले तालीम के महकमे के वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट मार्च के दौरान मुजाहरीन पर मुबैना तौर पर ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने से मुतालिक दरखास्तों पर मरकज और पुलिस से जवाब तलब किए हैं। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र

0: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
1: मैंने

मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और माँ थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के

ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी। और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

0: प्यार है।
1: और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहाँ तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ

सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहाँ हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की। लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नयन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना ना गुनगुनाए।

यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज हैं, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: जाना कहां।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
2: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज के फनकार विविध भारती के प्रसारण से, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। तो बने रहे श्रोताओं हमारे साथ अभी से लेकर रात्रि 11 बजे तक ये खूबसूरत कार्यक्रम जिसका नाम है रजनीगंधा।

अभी आपने सुना मोहम्मद रशीद लता मंगेशकर की आवाज़ में एसडी बर्मन के संगीत शैलेंद्र के बोल। फिल्म का नाम था गाइड। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आपने सुना जब प्यार किसी से होता है फिल्म के गाने को मोहम्मद रफ़ी, आशा, लता मंगेशकर की आवाज़ में, म्यूजिक शंकर जयकिशन के और सर हसरत जयपुरी के बोल।

0: कुछ न बोली।
1: नौ दो ग्यारह इस फिल्म के गाने को सुना आपने एस डी वर्मन के संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, किशोर कुमार की आवाज़ में।

तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा। आपने सुना इस गाने को, बात एक रात की फिल्म का, हेमंत कुमार की आवाज़ में, एसटी बर्मन के संगीत, मजूर सुल्तानपुरी के बोल। अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, एसटी बर्मन के संगीत, शैलेंद्र के बोल। फिल्म का नाम है काला बाजार।

श्रोताओं, सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। प्रेम पुजारी के इस गाने को सुना आपने किशोर कुमार की आवाज़ में, स्टीव बर्मन के संगीत और नीरज के बोल।

श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंध। इसी गाने के साथ आज का फिल्म संगीत का सफर यहीं समाप्त होता है। हमें दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 में

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण

0: बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डे ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, the Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi. The minister alleged that some individuals are attempting to use the students and youth as political tool to serve their own political interests.
4: It is deeply unfortunate that some people are trying to use the students and youth of our country as political tools to serve their own political interests. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government is fully committed to fulfilling the aspirations of students and young people and ensuring their welfare. Listening to every concern of students and addressing them is the responsibility of all of us.
3: The Delhi High Court today sought responses from the Centre and Delhi Police on pleas alleging use of excessive force against protesters marching to Parliament on Monday. The court directed the authorities to preserve all relevant records in relation to the police action, including CCTV camera footage and videography. The court gave 4 weeks to the authorities to file their replies. Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy today said the government has earmarked nearly 40,000 crore rupees for the scientific closure of abandoned coal mines, with a target of closing over 147 identified coal mines by 2027-28. Addressing the release of India's first annual report on scientific mine closure, titled Aroh in New Delhi, Mr. Reddy said the government no longer views mine closure as the end of mining activity, but sees it as the beginning of new opportunities for communities and the environment. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met his Canadian counterpart Anita Anand this afternoon on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines. In a social media post, Dr. Jaishankar said India-Canada cooperation has been steadily growing. He said the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the Prime Ministers of both the nations. Dr. Jaishankar also met with his New Zealand counterpart Winston Peters and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. In China Open Badminton, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Changzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Huda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash this afternoon. And that is the end of this news bulletin.
5: श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे हिंदी में अंग्रेजी में समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।